सुप्रभात। एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है। आज बुधवार है, शक संबत 1948, आषाढ़ माह की तिथि 17, तदनुसार 8 जुलाई ईस्वी सन 2026। इस समय प्रातः के 5:59 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और आप समाचारों के लिए आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं, विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र, यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बहरीन सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। श्री जयशंकर ने कल अपनी दो दिन की बहरीन यात्रा समाप्त की। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा और क्राउन प्रिंस तथा प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। ये बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्रा की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में हुई। बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री मिश्रा ने निर्देश दिया कि स्थिति की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मानसून या विलंबित मानसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं, तो घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक वृद्धि होने की उम्मीद है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन 2026 में श्री पुरी ने कहा कि भारत ने राजनयिक जुड़ाव, यथासमय नीतिगत हस्तक्षेप, घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आयात में विविधता के माध्यम से हाल के दशकों में सबसे चुनौतीपूर्ण वैश्विक ऊर्जा संकटों में से एक का सफलतापूर्वक सामना किया। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेन देन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों, उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has called for a stronger India-Indonesia strategic partnership, saying it will contribute not only to the prosperity of the two nations, but also to regional and global peace and stability. Addressing the Indonesian Parliament in Jakarta yesterday, Mr. Modi said, India follows path of development, not expansionism.
1: Bharat vistarvad nahi, vikasvad ki niti par chalta hai, aur isliye hum Bharat mein kehte hain, सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
2: Earlier, Prime Minister Modi held delegation-level talks with his Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta to review the full spectrum of bilateral ties and provide fresh momentum to the comprehensive strategic partnership between the two countries. The two leaders also witnessed the exchange of memoranda of understanding aimed at enhancing collaboration in areas of mutual interest. The Prime Minister's office PMO held a high-level review meeting yesterday to review possible impact of El Nino on various sectors and preparedness measures. The meeting was held under the chairmanship of Principal Secretary to Prime Minister Dr. P.K. Mishra at the Seva Teerth. Secretaries and senior officials of more than 15 ministries were present at the meeting. Dr. Mishra directed that the overall situation should be continuously monitored and the impact of the monsoon or delayed monsoon on vulnerable districts must be assessed in coordination with states so that remedial action can be taken up when necessary. During the meeting, officials of the IMD presented the overall

आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और अब प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान। आज के कलाकार हैं भूपेंद्र सिंह।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। कलाकार थे भूपेंद्र सिंह। और अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत के कार्यक्रम समर्पण में लता मंगेशकर और पंडित भीमसेन जोशी के स्वर में। अभी आपने सुना ये भक्ति गीत, और अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला भक्ति गीत।

पंडित भीमसेन जोशी और लता मंगेशकर के स्वर में गाए इस भक्ति गीत के साथ ही श्रोताओं, हमारा आज का भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण समाप्त होता है।

आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और अब श्रोताओं आइए आपको आज के प्रातःकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में बता दें। 6:45 पर आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। सुबह 7 बजे समय होगा आप सबों का पसंदीदा कार्यक्रम जुहार चाईबासा का। प्रातः 8 बजे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज का प्रसारण 8:15 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। 8:30 पर आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 8:40 पर कार्यक्रम प्रसारित करेंगे लोकगीत का माटी की महक, आज आप सुनेंगे बंगला लोकगीत। सुबह 9 बजे प्रसारित करेंगे कार्यक्रम विविधा। 9:30 पर होगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रस रंजन और सुबह 10 बजे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इसके प्रायोजक होंगे NCERT। 10:30 पर आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का आनंद ले सकेंगे। हमारे सायंकालीन सभा की शुरुआत होगी 5:02 पर। तो श्रोताओं अभी आप जानकारी ले रहे थे आज के प्रातःकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के विषय में।

आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और अब प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं श्यामाश्री दास।

सुनील कुमार दुबे के स्वर में गाए इस गीत के साथ ही श्रोताओं, आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और अब श्रोताओं मैं लेकर हाजिर हूँ आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम जोहार चाईबासा को लेकर। कार्यक्रम जोहार चाईबासा में श्रोताओं आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बरसात की रिमझिम फुहारें, मिट्टी की सौंधी खुशबू और हरियाली से भरा मौसम मन को नई ऊर्जा से भर देता है। आज श्रोताओं हम इस कार्यक्रम में आपको देंगे मॉनसून से संबंधित कुछ सुझाव और कुछ प्यारे गीत। श्रोताओं बारिश की हर बूंद हमें यह सिखाती है कि छोटी छोटी कोशिशें भी जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। तो इसी सुविचार के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का ये कार्यक्रम।

श्रोताओं, अभी आपने सुना मंजिल फिल्म का ये गीत किशोर कुमार का गाया आर डी बर्मन के धुन पर।

श्रोताओं, अभी आपने सुना तलत महमूद का गाया फिल्म लैला मजनू का ये गीत। दोस्तों, मानसून का मौसम केवल मौसम नहीं बल्कि खेती किसानी के लिए भी जीवन रेखा है। वर्षा का पानी भूजल स्तर बढ़ाने और जलाशयों को भरने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जी हाँ, और एक ध्यान रखने की बात है कि बारिश के मौसम में आप उबला या फिल्टर किया हुआ पानी अवश्य पिएं। खुले में बिकने वाले कटे फल और अस्वच्छ भोजन से बचें। और अब सुनते हैं हमारे कार्यक्रम का अगला गीत।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया फिल्म दूसरा आदमी का ये गीत, और अब सुनते हैं ये अपील।
1: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
3: बोले सब ओड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे नका गे हम बोले रुड़ तबन में अले परिवार से मतलब पूरे ये ना
4: वरना मंगलोरा को गांव बरगड़ा आड़की थाना तो वो जंगल गया है तो आउ का कहां बना है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुन पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
5: नाम है रंगबला देवी गाँव बारू हत्तो था तो घर आई में हमरे घर बहुत दुख के बात है तो अखन बात हो जा है
6: मुकुम बुरन सिंह तामसाय अनिता तामसाय भरूपा सेना करना ऐसे दुखुर मिना आज यापा मैं रिया तपा मैं रिया वाह बेटा निका
7: अन्यान तुम दो बुंबई कोड़ा
2: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल

0: भूमि, 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5,00,000 तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4,00,000 तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

इस अंतराल के बाद श्रोताओं कार्यक्रम जोहार चाईबासा में आप सबों का फिर से स्वागत है। और अब श्रोताओं, हमारे आज के इस कार्यक्रम के दूसरे चरण में हम आज श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे उनके उस महान अभिनेता को। आज श्रोताओं, दिलीप कुमार की पुण्यतिथि है। जिन्हें पूरी दुनिया ट्रेजेडी किंग के नाम से जानती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के अमर अभिनेता दिलीप कुमार की। 11 दिसंबर 1922 को पेशावर में जन्मे दिलीप कुमार का वास्तविक नाम यूसुफ खान था और अभिनय की दुनिया में उन्होंने ऐसा मुकाम हासिल किया जो आज भी कलाकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने अपने अभिनय में भावनाओं की गहराई, संवादों की सादगी और किरदारों की सच्चाई को इस तरह जीवंत किया कि दर्शक उन्हें कभी भूल ना पाए। दिलीप कुमार ने लगभग 5 दशकों तक हिंदी सिनेमा को अनेक यादगार फिल्में दी। उनके यादगार फिल्मों में हैं अंदाज, दीदार, देवदास, नया दौर, मुगले आजम, गंगा जमुना, राम और श्याम, क्रांति, शक्ति, कर्मा आज भी भारतीय सिनेमा की धरोहर मानी जाती है। उन्हें अपने शानदार अभिनय के लिए अनेक फिल्मफेयर पुरस्कार प्राप्त हुए। वर्ष 1994 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी अलंकृत किया। श्रोताओं, 7 जुलाई यानी आज के ही दिन 2021 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनकी कला, उनके संवाद और उनकी अदाकारी आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में जीवित है। तो उनके पुण्यतिथि पर हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके अमर योगदान को याद करें और सुने उनके कुछ सदाबहार फिल्मी गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना मोहम्मद रफी का गाया फिल्म गोपिकाएं ये गीत। हमारे आज के जोहार चायबासा के इस कार्यक्रम में हम अभिनेता दिलीप कुमार को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सुनवा रहे हैं ये गीत।

0: थई झाक दिनक दिन थाक तिनक तिन धाक दिनक दिन थाक तिनक तिन धा
1: आंख मिल जाई है सजनिया से तो नाचन लगी है।

श्रोताओं, अभी आपने सुना तलत महमूद का गाया दिलीप कुमार अभिनीत फिल्म देवदास का ये गीत। और अब सुनते हैं, उन्हीं को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, शक्ति फिल्म का ये गीत।

0: श्रोताओं, हमारे आज के जो हार चाय वसा कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं 7 जुलाई अभिनेता दिलीप कुमार के पुण्यतिथि पर ये कुछ विशेष गीत उनके द्वारा अभिनीत।
1: बड़ा कठिन है प्रश्न ये भैया, आए बारंबार इस उम्र में पूछे बीवी क्या करते हो प्यार, मुझसे क्या करते हो प्यार। अरे पूछे मेरी बीवी, डू यू लव मी, डू यू लव मी,
2: तो क्या कहा आपने?
1: अरे बरसों से तो कहता आया आई लव यू, आई लव यू, हर दिन हर पल यही कहूं मैं आई लव यू, सुबह सवेरे काम पे जाऊं आई लव यू।

श्रोताओं, अभी आपने सुना दिलीप कुमार, मोहम्मद अजीज और कविता कृष्ण मूर्ति की आवाज़ों में फिल्म कर्मा का ये गीत। अभी आप सुन रहे थे 7 जुलाई दिलीप कुमार के पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ये गीत। तो इसी के साथ श्रोताओं, हमारा आज का जोहार चायबासा का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और इस समय सुबह के 8 बजने वाले हैं। समाचारों के लिए आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस से जुड़े बैंक खातों में वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में कोलकाता में कई स्थानों पर छापेमारी की। होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों पर हमलों के बाद अमरीका ने ईरान पर हमले किए। ईरानी तेल पर प्रतिबंधों में छूट भी वापस ली। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोयो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत नामित आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। एक रिपोर्ट।
3: दोनों नेताओं ने आतंकवाद और उग्रवाद की रोकथाम और इसका मुकाबला करने में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें आतंकवाद के वित्त पोषण पर अंकुश लगाने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन शोधन विरोधी और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने वाले मानकों के कार्यान्वयन को मजबूत करने, आतंकवाद समूह द्वारा उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग को रोकने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नफरत फैलाने से निपटने के उपाय शामिल है। उन्होंने आतंकवाद विरोधी सहयोग पर समझौता ज्ञापन के शीघ्र संपन्न होने का भी स्वागत की। इस पर जल्दी हस्ताक्षर होने का उम्मीद है। दोनों देश ने आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधी का रोकथाम, साइबर सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा उद्योग, समुद्र सुरक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों नेताओं ने विकसित भारत 2047 विजन और सहयोग बढ़ाने के लिए तीसरे भारत इंडोनेशिया सुरक्षा संवाद का स्वागत किया। इंडोनेशिया के इंडोनेशिया इमास 2045 एजेंडा के बीच समानताओं का भी उल्लेख किया। संदीप बंदास गुप्ता, जकार्ता, इंडोनेशिया।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा और 2047 तक विकसित भारत तथा 2045 तक स्वर्णिम इंडोनेशिया की परिकल्पनाओं के बीच तालमेल का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने व्यापार, निवेश, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया।
0: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स हैं। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्याकार्ता में प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है और दक्षिण पूर्व एशिया की उत्कृष्ट स्थापत्य कलाकृतियों में से एक है। मूल रूप से इस परिसर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे छोटे मंदिर हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री अपनी तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने तीन दिन के दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रवासी भारतीयों की एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री माननीय एंथनी अल्बनीज के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता से दोनों देशों के संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक सहयोग जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की संभावना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2025 में 33 अरब अमरीकी डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। अब दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए दोनों देशों की साझेदारी अब डिजिटल और उभरती प्रौद्योगिकियों पर भी केंद्रित हो रही है। इसका प्रमुख उदाहरण एयरट्रक द्वारा भारत में एआई तैयार डेटा सेंटरों के विकास के लिए 30 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता है। वहीं 4.5 अरब अमरीकी डॉलर की प्रोजेक्ट स्टेरिस उर्वरक परियोजना मेक इन इंडिया और मेक इन ऑस्ट्रेलिया के सफल तालमेल का सशक्त उदाहरण है। मेलबर्न से सुहास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नवीन सक्सेना।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
0: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में ये बैठक सेवा तीर्थ में हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
2: डॉक्टर पीके मिश्रा ने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मॉनसून या विलंबित मॉनसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि पशु चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जाएं। संवेदनशील जिलों में पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता पर भी श्री मिश्रा ने बल दिया। बैठक के दौरान मौसम विभाग के अधिकारियों ने कल तक जून और जुलाई में हुई कुल वर्षा की जानकारी दी। कृषि मंत्रालय के सचिव ने खरीफ मौसम के दौरान अल नीनो के संभावित प्रभाव से निपटने की तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जिलों में स्थित कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए अल नीनो के जोखिमों के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की हैं। संवेदनशील राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड कवरेज के लिए अभियान शुरू किए गए हैं और कृषि वित्तीय सेवा और सहकारिता विभागों को समयबद्ध तरीके से अधिकतम लाभ निश्चित करने का सुझाव दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने लू, उच्च आर्द्रता और डेंगू के प्रकोप की निगरानी के लिए सलाह जारी की है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने चावल, गेहूं और दालों के खुदरा मूल्यों और बफर स्टॉक की पर्याप्तता की स्थिति की जानकारी दी। ग्रामीण विकास विभाग ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन के तहत 1 जुलाई से शुरू किए गए कार्यों की जानकारी दी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से संबंधित वित्तीय लेनदेन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की है। एक रिपोर्ट।
3: प्रवर्तन निदेशालय की शुरुआती जांच के अनुसार संदिग्ध गतिविधियों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के जरिए से 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का हस्तांतरण किया गया। ईडी ने बताया कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच तृणमूल कांग्रेस के खातों से निजी विमानन कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई को लगभग 160 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। निजी कंपनी ने 2023 से इस वर्ष के बीच एक अन्य नवगठित संबद्ध इकाई को 82 करोड़ से अधिक का हस्तांतरण भी किया। ईडी ने कहा कि एम्ब्रियर लेगेसी 600 विमान और अगस्ता 109 SP हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए निजी कंपनी की एक संबद्ध इकाई को बड़ी राशि हस्तांतरित की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन खरीदों के लिए 112 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ईडी ने आरोप लगाया कि अगस्ता हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए कुछ विदेशी धन का भी उपयोग किया गया, जबकि अधिकांश धनराशि सीधे तृणमूल कांग्रेस के खातों से प्राप्त की गई। मामले की जांच जारी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: अमेरिका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में 3 व्यापारिक जहाजों पर ईरान की कार्रवाई के बाद किए गए। अमेरिका ने कहा कि होर्मुज में ईरान का वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए हैं।
4: अमेरिका के एक अधिकारी ने बताया कि अमेरिका की सेना ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय निगरानी प्रणालियों, मिसाइलों और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों को भी निशाना बना रही है। ईरान में बंदरगाह सुविधाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के उपविदेश मंत्री काजिम गरीब आबादी ने कहा कि अमेरिका के ये ताजा हमले समझौते का उल्लंघन है। अमेरिका ने शत्रुता समाप्त करने के लिए हुए अंतरिम समझौते के तहत ईरानी तेल की बिक्री को अधिकृत करने वाला लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि लाइसेंस इसलिए रद्द किया गया क्योंकि होर्मुज में ईरान की कार्यवाही अस्वीकार थी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने लाइसेंस रद्द करने के अमेरिका के कदम की निंदा करते हुए कहा कि यह अंतरिम समझौते का उल्लंघन है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अतिरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सके। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। अंतिम 16 के एक अन्य मैच में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हरा दिया। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में पहुंचने की संभावना व्यक्त की है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में

0: मोहब्बत राय और अनिल मिश्र की विदाई देर से ही सही, पर एक दुरुस्त फैसला है। जो घटित हो चुका है उसका फैसला अब कानून और अदालत को करना है, मगर जो आगत है उसे निष्कलुष रखने का दायित्व ट्रस्ट के कंधों पर ही रहेगा। दैनिक जागरण का शीर्षक है, अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाकों के 38 दोषियों की मौत की सजा बरकरार। गुजरात हाईकोर्ट ने विशेष कोर्ट का फैसला सही ठहराया, उम्र कैद पाए दोषियों को भी राहत नहीं। पंजाब केसरी के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह ने किया 70 लाख पौधारोपण का आगाज, दिल्ली बनेगी और हरी भरी। 300 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत गृह मंत्री ने किया दिल्ली रिज के पुनर्जीवन का शुभारंभ। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, क्रायोजेनिक इंजन का इसरो ने सफल परीक्षण किया, गगनयान में भी होगा इस्तेमाल। परीक्षण का उद्देश्य इंजन की उड़ान के लिए पूरी तरह तैयारी का पता लगाना था। अमर उजाला की सुर्खी है, भारी बारिश, दिल्ली जयपुर हाईवे पर सड़क धंसी, 12 किलोमीटर तक लंबा जाम, दोपहर 11:30 बजे 47.5 डिग्री जैसी तपिश। आसमान से राहत बरसते ही शिमला की तरह सुहानी होती गई दिल्ली की शाम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. India and Indonesia strongly condemn terrorism in all its forms and call for decisive and coordinated international efforts to combat this menace. Prime Minister Narendra Modi becomes first Indian Prime Minister to address Indonesian Parliament, calls for deeper strategic partnership between the two countries. Prime Minister's office reviews El Nino impact, asks central ministries to work with states on preparedness measures. ED conducts searches at multiple locations in Kolkata in connection with financial irregularities involving bank accounts linked to Trinamool Congress. US launches strikes against Iran after attacks on vessels in Strait of Hormuz, also revokes its sanctions relief on Iranian oil. And in football, Argentina and Switzerland enter quarterfinals of FIFA World Cup. India and Indonesia have strongly condemned terrorism in all its forms and called for decisive, coordinated international efforts to combat the threat in accordance with international law. In a joint statement issued after bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta, the two leaders urged action against globally proscribed terrorist and terrorist organizations, including those designated under the UN Security Council's 1267 Sanctions Committee. We have more from a correspondent.
3: The two leaders agreed to deepen cooperation in preventing and countering terrorism and violent extremism conducive to terrorism. The cooperation will include measures to curb terror financing, strengthen implementation of internationally agreed anti-money laundering, and countering the financing of terrorism standards, prevent the misuse of emerging technologies by terrorist groups, and tackle online radicalization and recruitment through digital platforms. Reaffirming a zero-tolerance approach to terrorism, the two sides pledged to continue disrupting terror financing networks and enhance bilateral and multilateral cooperation, including through the United Nations and the Financial Action Taken Force FATF. Recognizing the links between terrorism and transnational organized crime, India and Indonesia agreed to strengthen information sharing and exchange of best practices in line with their domestic laws and international obligations. They also welcomed the early conclusion of Memorandum of Understanding on counter-terrorism cooperation, which is expected to be signed soon. The two countries welcomed the planned third India-Indonesia security dialogue as a platform to expand cooperation in counter-terrorism, transnational crime, cyber security, emerging technologies, defense

0: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. The Prime Minister's Office, PMO, held a high-level review meeting to review possible impact of El Nino on various sectors and preparedness measures. The meeting was held under the chairmanship of Principal Secretary to the Prime Minister, Dr. P.K. Mishra, at the Seva Tirth yesterday. Secretaries and senior officials of more than 15 ministries were present at the meeting. Dr. Mishra directed that the overall situation should be continuously monitored and the impact of the monsoon or delayed monsoon on vulnerable districts must be assessed in coordination with states so that remedial action can be taken up when necessary. He emphasized that ensuring adequate availability of drinking water in vulnerable districts must be a top priority and directed optimal reservoir water utilization and judicious use of available water. We have more from a correspondent.
1: During the meeting, officials of the India Meteorological Department presented the overall rainfall situation in June and July. The Director General of the Met Department updated on the status of monsoon coverage in the country and the possible impact of El Nino. He informed that weak to moderate El Nino is expected in July and August. Secretary Agriculture made a detailed presentation on the preparedness for possible impact of El Nino during the Kharif season. He underlined that weekly meetings of Crop Weather Watch Group along with states are being convened to enable timely decision-making and contingency response. He noted that district agriculture contingency plans have been updated for 262 vulnerable districts and campaigns for Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana and Kisan Credit Card coverage in vulnerable states have also been initiated. During the meeting, the Department of Animal Husbandry and Dairying was asked to assess the availability of dry fodder, green fodder and cattle feed at both macro and micro levels. Department of Drinking Water and Sanitation informed that they are continuously monitoring and the situation as on date is stable. With Anupam Mishra, Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
0: The Enforcement Directorate, ED, has conducted searches at five premises in and around Kolkata in connection with alleged dishonest financial dealings, unlawful collection of money and routing of suspected funds through certain bank accounts of the All India Trinamool Congress, AITC. The searches were carried out at the premises linked to the private firm Carewell Group of companies operating in the aviation sector, its directors and one purported electoral trust. According to the ED's preliminary investigation, more than 150 crore rupees were routed through aviation and travel companies for suspicious purposes. The US military has launched new strikes against Iran hours after three merchant ships were struck in the Strait of Hormuz. In a statement, U.S. Central Command said that American forces have launched strikes to impose heavy costs for targeting and attacking commercial shipping crewed by innocent civilians in an international waterway. Iran's Deputy Foreign Minister Kazem Gharibabadi said that the new attacks by the U.S. are a violation of the agreement. Moreover, United States has also revoked a license that had authorized the sale of Iranian oil as part of the interim deal to end the fighting between the two countries. On to sports and football. Argentina and Switzerland have stormed into the quarterfinals of the FIFA World Cup. We have a report.
2: Switzerland defeated Colombia 4-3 in the penalty shootout in Vancouver to reach the quarterfinals of FIFA World Cup for the first time since 1954. Colombia faltered when Davinson Sanchez smashed his spot kick against the bar and Cucho Hernandez had his effort saved by goalkeeper Gregor Kobel before Ruben Vargas scored to book a quarterfinal date with holders Argentina. The two sides were tied after extra time with no goals. In another round of 16 match, Argentina defeated Egypt 3-2 in Atlanta. Argentina was trailing by two goals till 78th minute when the defending champions pulled off a stunning comeback with Cristiano Romero scoring the first goal at 79 minutes. The equalizer came through Messi in 83 minutes while Enzo Fernandez completed the turnaround with the winner in the extra time. Chirag Jha from Sports Desk.
0: In men's cricket, England defeated India by 125 runs in the third T20 International at Trent Bridge in Nottingham last night, chasing a target of 202 runs set by England. India lost wickets in quick succession and were all out with a paltry score of 76 in 11.4 overs. For England, Josh Tung took four wickets, while Jofra Archer scalped three. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun.
1: Thank you, Abhishek. The wide-ranging talks in Jakarta between PM Modi and Indonesian President Prabowo Subianto is noticed prominently by the dailies Brahmos, Astra, EVMs in focus as India-Indonesia Inc. 14 packs headlines the Tribune. The Indian Express in an editorial piece writes the end of football's superpower dump. The paper elaborates, world football's beloved giant Brazil is sinking in a World Cup where tiny nations like Cape Verde and Curaçao showed that they even can compete and where Germany and Holland went home early while Italy were a no-show. And finally, Ernest Hemingway's novel The Sun Also Rises on Bull runs turn 100. Well, the Indian Express writes that Nobel laureates work places Spanish city Pamplona on the map for millions of people. And with that, it's back to you, Abhishek.
0: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and Indonesia strongly condemn terrorism in all its forms and call for decisive and coordinated international efforts to combat this menace. Prime Minister Narendra Modi becomes the first Indian Prime Minister to address Indonesian Parliament, calls for deeper strategic partnership between the two countries. Prime Minister's office reviews El Nino impact, asks central ministries to work with states on preparedness measures. ED conducts searches at multiple locations in Kolkata in connection with financial irregularities involving bank accounts linked to Trinamool Congress. US launches strikes against Iran after attacks on vessels in Strait of Hormuz, also revokes its sanctions relief on Iranian oil. And in football, Argentina and Switzerland enter quarterfinals of FIFA World Cup. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
3: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम में 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।
4: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नैन्सी कुमारी। पहले मुख्य समाचार। नई दिल्ली में झारखंड सरकार के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आज से आगाज। मुख्यमंत्री देश के सामने रखेंगे राज्य का डिजिटल रोडमैप और पहली एआई नीति का ड्राफ्ट। शराब घोटाले में पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव से ईडी की 9 घंटे तक पूछताछ। केंद्रीय एजेंसी को सौंपे कई महत्वपूर्ण दस्तावेज। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। सेवानिवृत्त शिक्षकों की पारक शिक्षक के रूप में की गई संविदा सेवा भी पेंशन के लिए मान्य। जेपीएससी मुख्य परीक्षा की तिथियों में संशोधन। अब 21 से 23 जुलाई तक होगा आयोजन। जेएसएससी परीक्षा से टकराव के कारण आयोग ने लिया निर्णय। और राज्य में मॉनसून सक्रिय। मौसम विभाग ने धनबाद, बोकारो और हजारीबाग सहित 6 जिलों में जारी किया भारी बारिश का येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज नई दिल्ली में झारखंड का डिजिटल रोडमैप और पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति 2026 का ड्राफ्ट पेश करेंगे। दो दिवसीय नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन सम्मेलन में राज्य को निवेश का प्रमुख केंद्र बनाने, नई टेक्सटाइल और टूरिज्म पॉलिसी के प्रारूपों पर भी देश विदेश के विशेषज्ञों के साथ सीधी चर्चा की जाएगी। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि यह कार्यक्रम राज्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा।
5: जो दिल्ली में जो कार्यक्रम रखा गया हो राज्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा और ये एक सुखद परिणाम भी सामने आएगा। आप थोड़ा वक्त लें, देखें कि कई ऐसे हमाम सकारात्मक परिणाम निकलेगा।
4: राज्य में जंगली जानवरों के हमले में मौत होने पर अब 10 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। राज्य सरकार की नई मुआवजा नीति 29 जून से प्रभावी हो गई है। रांची डीएफओ श्रीकांत वर्मा ने बताया कि इसके तहत गंभीर रूप से घायलों को 3.25 लाख और आंशिक रूप से घायल नागरिकों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
6: मुआवजा का नया संकल्प जारी हुआ है 2026 में, उसमें अनेकों एस्पेक्ट्स में बढ़ोतरी है और ये पूरे राष्ट्र में आप देखेंगे तो वन ऑफ द मॉडल स्टेट कहा जा सकता है जहां इस तरह का मुआवजा का प्रावधान है। था कि रिवॉल्विंग फंड नहीं होता था कि उसमें से आप विड्रॉ करके अब से 1 लाख रुपए तो नगद देना है तो ये कहां से दिया जाए, तो उसकी व्यवस्था कर दी गई है तो अब आसानी होगी।
4: प्रवर्तन निदेशालय ने राज्य के पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव से शराब घोटाले के सिलसिले में करीब 9 घंटे तक पूछताछ की। समन के बाद कल सुबह 11 बजे ईडी कार्यालय पहुंचे उरांव रात 8 बजे वापस लौटे। उनके द्वारा सौंपे गए आवश्यक दस्तावेजों की जांच के बाद ईडी आगे का निर्णय लेगी। झारखंड हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए नियमित नियुक्ति से पहले पारा शिक्षक के रूप में की गई निर्बाध संविदा सेवा को भी पेंशन के लिए मान्य माना है। अदालत ने राज्य सरकार को 8 सप्ताह के भीतर 6% वार्षिक ब्याज के साथ पेंशन व अन्य लाभों के भुगतान का आदेश दिया है। राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में 2.7 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि उग्रवाद प्रभावित इस क्षेत्र में सड़क बनने से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और आदिवासी व पिछड़े वर्ग के लोगों तक स्वास्थ्य व शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं बेहतर ढंग से पहुंच सकेंगी। दुमका के सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर राजीव रंजन शर्मा ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कुलपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार करते हुए सीसीडीसी डॉक्टर अब्दुल सत्तार को कुलसचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। डॉक्टर शर्मा के इस्तीफे की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। राज्य पुलिस ने नागरिकों से गुम या चोरी हुए मोबाइल की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार के CEIR पोर्टल का उपयोग करने की अपील की है। नागरिक पोर्टल पर मोबाइल की जानकारी और पुलिस शिकायत अपलोड कर फोन ब्लॉक करा सकते हैं। फोन मिलने पर इसे इसी पोर्टल से अनब्लॉक भी किया जा सकता है, जिससे इसका दुरुपयोग रुकेगा। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग ने संयुक्त असैनिक सेवा मुख्य परीक्षा की तिथियां बदल दी है। अब यह परीक्षा 21 से 23 जुलाई तक होगी। JSSC परीक्षा से टकराव के कारण यह बदलाव किया गया है। इसके अलावा बैकलॉग मुख्य परीक्षाएं 25 से 27 जुलाई और 1 से 3 अगस्त तक आयोजित की जाएंगी। झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष प्राणेश सोलोमन और ज्योति सिंह मथारू ने गुमला में जन सुनवाई कर अल्पसंख्यक स्कूलों और मदरसों की समस्याएं सुनी। आयोग की टीम ने कल्याण छात्रावासों का निरीक्षण कर मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। आयोग के उपाध्यक्ष प्राणेश सोलोमन ने कहा कि जन सुनवाई में शिक्षकों के रिक्त पदों का मामला प्रमुखता से सामने आया है। उन्होंने जिला शिक्षा विभाग को लंबित मामलों का जल्द समाधान करने का निर्देश दिया है।
7: एक्चुअली अभी हम लोग पूरे राज्य में ज्यादा के हर जिला में माइनॉरिटी के एजुकेशनल स्टेटस का जानकारी ले रहे हैं। उनके अच्छी है कि क्या स्थिति वहाँ पढ़ाई, माइनॉरिटी जो हॉस्टल है उन लोग का क्या स्थिति है। इसी क्रम में हम लोग समीक्षा कर रहे हैं सब जिला में, ताकि हम लोग को राज्य स्तरीय को बैठक हम लोग करना है बहुत जल्द है उसके लिए, ताकि हम रिपोर्ट प्रांश के जानकारी ले सके कि हमारे माइनॉरिटी के स्कूल में क्या संचालन में क्या कर दिक्कत हो रही है।
4: वहीं कटकम साड़ी पुलिस ने गुप्त सूचना पर डांड़ गांव से 25 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 3 तस्करों को दबोचा है। हजारीबाग पुलिस ने गिद्दी थाना क्षेत्र में कुख्यात अपराधी राहुल दुबे गैंग के 2 सदस्यों को लोडेड पिस्टल और स्कॉर्पियो के साथ गिरफ्तार किया है। SP अमन कुमार ने बताया कि पुलिस ने पीछा कर इन्हें पकड़ा।
7: अभी हम लोग पूरे राज्य में ज्यादा के हर जिला में
8: हजारीबाग जिले में राहुल दुबे गैंग के द्वारा कई घटनाएं यहां पर हाल में की जा रही थी, इस पर कार्रवाई करते हुए उसी क्रम में 6-7 की रात्रि को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि 2 अपराधी जो दुबे गैंग के हैं वो मांडू जाने वाले रास्ते में स्कॉर्पियो गाड़ी से मूवमेंट कर रहे हैं। उसको लेकर चेकिंग लगाई गई और जो उतर के उससे भागे उसको पकड़ा गया। इनके पास से हथियार और गोली बरामद की गई।
4: गुमला जिले के पालकोट में अज्ञात अपराधियों ने एक ज्वेलरी दुकान के संचालक मनीष सोनी से हथियार के बल पर करीब 25 से 30 लाख रुपए के आभूषण लूट लिए। विरोध करने पर अपराधियों ने हवाई फायरिंग की और फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच और सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। राज्य में मॉनसून सक्रिय होने से मौसम केंद्र रांची ने आज 6 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। धनबाद, बोकारो और हजारीबाग समेत अन्य प्रभावित इलाकों में बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की आशंका है। प्रशासन ने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। विश्व वॉलीबॉल दिवस के अवसर पर रांची विश्वविद्यालय के सिंथेटिक मैदान में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित और प्रोत्साहित किया गया। खेल समन्वयक डॉक्टर राजेश गुप्ता और राष्ट्रीय खिलाड़ी व प्रशिक्षक विजय वर्मा ने खिलाड़ियों को निरंतर अभ्यास की सलाह दी और उन्हें हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव से ईडी की पूछताछ की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, ईडी ने पूछा, शराब नीति से किसे फायदा हुआ? रामेश्वर उरांव बोले, जानकारी नहीं। प्रभात खबर की सुर्खी है, पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित 7304 पदों पर नियुक्ति के लिए होगी विशेष परीक्षा, जेएसएससी को भेजा गया प्रस्ताव। हिंदुस्तान के शब्द हैं, मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे, आज निवेशकों से करेंगे संवाद। दैनिक जागरण लिखता है, पेंशन के लिए बैंक का चक्कर लगा रहे वृद्ध की मौत, सीएम के आदेश पर जांच शुरू। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में झारखंड सरकार के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आज से आगाज। मुख्यमंत्री देश के सामने रखेंगे राज्य का डिजिटल रोडमैप और पहली एआई नीति का ड्राफ्ट। शराब घोटाले में पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव से ईडी की 9 घंटे तक पूछताछ, केंद्रीय एजेंसी को सौंपे कई महत्वपूर्ण दस्तावेज। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सेवानिवृत्त शिक्षकों की पारा शिक्षक के रूप में की गई संविदा सेवा भी पेंशन के लिए मान्य। जेपीएससी मुख्य परीक्षा की तिथियों में संशोधन, अब 21 से 23 जुलाई तक होगा आयोजन। जेएसएससी परीक्षा से टकराव के कारण आयोग ने लिया निर्णय। और राज्य में मॉनसून सक्रिय, मौसम विभाग ने धनबाद, बोकारो और हजारीबाग सहित 6 जिलों में जारी किया भारी बारिश का येलो अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी
1: आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और अब श्रोताओं प्रस्तुत है कार्यक्रम माटी की महक। माटी की महक में आज आपको सुनवा रहे हैं कुमार शानू का गाया बंगला लोकगीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू के स्वर में बंगला लोकगीत। इसी के साथ बंगला कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और श्रोताओं, इस समय समय है हमारे कार्यक्रम विविधा का।

कार्यक्रम विविधा सुनने वाले सभी श्रोताओं को निशा का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम विविधा में आज हम बात करेंगे आठ जुलाई के विशेष दिवस विश्व एलर्जी दिवस पर, और मानसून के मौसम में हम क्या एहतियात बरतें इस विषय पर।

0: तो श्रोताओं, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं विश्व एलर्जी दिवस पर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो कि आज के समय में लगभग हर परिवार से जुड़ा हुआ है। विश्व एलर्जी दिवस के बारे में हम आज इसी से संबंधित चीज़ों में बात करेंगे। श्रोताओं, प्रत्येक वर्ष 8 जुलाई को विश्व एलर्जी दिवस मनाया जाता है और इस दिवस का उद्देश्य है लोगों को एलर्जी के प्रति जागरूक बनाना, इसके कारणों, लक्षणों, बचाव और समय पर उपचार के बारे में सही जानकारी देना है। आज के बदलते जीवन शैली, बढ़ते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और खान पान की बदलती आदतों के कारण एलर्जी के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम एलर्जी को समझें और इससे बचाव के उपाय को अपनाएं। तो श्रोताओं, सबसे पहले यह जानना जरूरी है हमारे लिए कि आखिर एलर्जी होती है क्या। हमारे शरीर में एक प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली होती है जिसे प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यून सिस्टम कहा जाता है, जिसका काम होता है शरीर को हानिकारक जीवाणुओं, विषाणुओं और अन्य संक्रमणों से बचाना। लेकिन कभी कभी यह प्रतिरक्षा तंत्र धूल, परागकण, कुछ खाद्य पदार्थ, दवाइयाँ या पालतू जानवरों के बाल जैसे सामान्य पदार्थों को भी खतरनाक समझ लेता है और उनके विरुद्ध प्रतिक्रिया करने लगता है। इसी प्रतिक्रिया को एलर्जी कहा जाता है। एलर्जी लोगों को किसी भी उम्र में हो सकती है। बच्चों, युवाओं, महिलाओं, पुरुषों और बुजुर्गों, सभी को इसका सामना करना पड़ सकता है। किसी व्यक्ति को बचपन से एलर्जी हो सकती है तो किसी को जीवन में बाद में भी यह समस्या आ सकती है। तो अब हम जानते हैं कि एलर्जी के क्या प्रमुख कारण हैं। घर की धूल, फूलों के परागकण, फफूंद, पालतू जानवरों के बाल, धुआं, वायु प्रदूषण, कुछ दवाइयाँ और कुछ खाद्य पदार्थ एलर्जी के सामान्य कारण हैं, जैसे कि मूंगफली, अंडा, दूध, सोया, समुद्री भोजन और कुछ सूखे मेवे भी कई लोगों में एलर्जी पैदा कर देते हैं। इसके अलावा मधुमक्खी या ततैया जैसे कीड़ों के डंक से भी गंभीर एलर्जी हो सकती है। एलर्जी के लक्षण भी अलग अलग हो सकते हैं। कई लोगों को लगातार छींक आती है, नाक बहती है या बंद हो जाती है। कुछ लोगों के आँखों में खुजली होती है, लालिमा और पानी आने लगता है और कई लोगों की त्वचा पर लाल चकते, खुजली या सूजन हो जाती है। कुछ मामलों में सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है, सीने में भी जकड़न हो सकती है और खांसी भी हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति को सांस लेने में बहुत अधिक परेशानी हो, चेहरे या गले में सूजन आ जाए, बोलने में कठिनाई हो या अचानक चक्कर आने लगे तो यह गंभीर एलर्जी की स्थिति हो सकती है। ऐसी अवस्था में हमें समय न गंवाते हुए तुरंत निकटतम अस्पताल पहुंचना चाहिए। दोस्तों, आजकल मॉनसून का मौसम चल रहा है और इस मौसम में एलर्जी के मरीजों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। बारिश के कारण वातावरण में नमी बढ़ जाती है जिससे फफूंद और धूल के सूक्ष्म कण तेजी से पनपते हैं। इससे एलर्जी और अस्थमा के रोगियों की परेशानियां बढ़ सकती है। इसलिए घर को साफ और सूखा रखें। भींगे कपड़े को लंबे समय तक कमरे में न रखें और कमरों में हवा का उचित आवागमन बनाए रखें। अब श्रोताओं, सवाल उठता है कि हम एलर्जी से बचाव कैसे करें। तो सबसे पहले हमें यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि हमें एलर्जी किस चीज़ से हो रही है। यदि धूल से एलर्जी है तो हमें घर की नियमित सफाई करनी होगी और सफाई करते समय मास्क का उपयोग अवश्य करना होगा। यदि किसी खाद्य पदार्थ से एलर्जी है तो उसे खाने से बचना होगा और बाहर भोजन करते समय उसके बारे में जानकारी अवश्य लें। धूम्रपान से भी स्वयं बचें और दूसरों के धुएं से भी दूरी बनाए रखें। स्वच्छ वातावरण रखें, पौष्टिक भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं और नियमित व्यायाम करें। यदि डॉक्टर ने कोई दवा दी है तो उसे समय पर लें और बिना सलाह के दवा बंद न करें। बच्चों में भी एलर्जी के लक्षणों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। श्रोताओं, यदि बच्चे को बार बार छींक आती है, त्वचा पर दाने निकल आते हैं या सांस लेने में परेशानी होती है तो बाल रोग विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लेनी चाहिए। इसी प्रकार बुजुर्गों में भी एलर्जी का प्रभाव अधिक गंभीर हो सकता है, इसलिए उनका विशेष ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। और श्रोताओं, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि एलर्जी और सामान्य सर्दी जुकाम में अंतर होता है। यदि छींक, नाक बहना या आँखों में खुजली बार बार होती है और मौसम बदलने या किसी विशेष चीज़ के संपर्क में आने पर यह बढ़ जाती है तो यह एलर्जी का संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में स्वयं इलाज करने के बजाय हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो श्रोताओं, विश्व एलर्जी दिवस हमें यह भी याद दिलाता है कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। थोड़ी सी सावधानी हमें बड़ी से बड़ी परेशानी से बचा सकती है। यदि हम स्वच्छता अपनाएं, प्रदूषण कम करने में अपना योगदान दें और समय पर चिकित्सा सलाह लें तो एलर्जी के प्रभाव से को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो इस विश्व एलर्जी दिवस पर हम सभी यह संकल्प लें कि हम स्वयं भी एलर्जी के प्रति जागरूक रहेंगे, अपने परिवार, मित्रों तथा समाज को भी इस बारे में सही जानकारी प्रदान करेंगे। स्वस्थ जीवन की शुरुआत जागरूकता से होती है श्रोताओं, और जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है।
1: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
3: बोले सब ओड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे नाकागी आम बोले रुड़ तबन में अले परिवार से मतलब पूरे ये ना
4: वरना मंगलोरा को गांव बारगड़ा आड़की थाना तो वो जंगल गया है तो आउ का कहाँ बना है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
5: नाम है रंगबला देवी कहाँ बारे भत्तो तो घर आए ने हमरे घर बहुत दुख के बात है तो अखन बात हो जा है
6: नितम बुरन सिंह तमसाय अनिता तमसाय भरूपा सेना करना ऐसे दुखुर में ना आ गया पापा मैं रियल पापा मैं रियल वाह बेटा निका
7: अन्या नितम दो मुंबई कोड़ा
8: ᱟᱞᱮ ᱟᱭᱟ ᱱᱩᱛᱩᱢ ᱛᱮ ᱤᱱᱟᱹᱢ ᱟᱹᱯᱤᱞ ᱞᱮᱫᱟ ᱱᱟ
2: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि, 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निःशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में

0: और इस अंतराल के बाद श्रोताओं आइए हम बात करें। मॉनसून के मौसम में हम क्या एहतियात बरतें? श्रोताओं मॉनसून के मौसम में हमें कुछ विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कि हम कई बीमारियों और दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। इसके लिए हमें स्वच्छ और सुरक्षित पानी पीनी चाहिए, हमेशा उबला हुआ या फिल्टर किया हुआ पानी पीना चाहिए और अपने भोजन पर विशेष ध्यान देनी चाहिए। ताज़ा और गर्म भोजन करनी चाहिए। खुले में बिकने वाले कटे फल, बासी भोजन और अस्वच्छ खाद्य पदार्थों से हमें बचना चाहिए और सबसे पहले अपने हाथों की सफाई रखनी चाहिए। खाने से पहले और बाहर से आने के बाद साबुन से हमें अपनी अच्छी तरह हाथ को धोना चाहिए। और इस मौसम में तो श्रोताओं हमें मच्छरों से विशेष रूप से बचना चाहिए। अपने घर के आसपास पानी जमा ना होने देना चाहिए। मच्छरदानी या रिपेलेंट का उपयोग करना चाहिए ताकि हम डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से बच सकें। बारिश में भीगने के बाद जल्द से जल्द हमें सूखे कपड़े पहनने चाहिए और यदि हमारे जूते या मोजे गीले हो गए हैं तो हमें उन्हें तुरंत बदल लेनी चाहिए। दोस्तों अगर इस मौसम में हमें फिसलन भरी सड़कों पर वाहन धीरे चलानी चाहिए, जल भराव वाले रास्तों से बचना चाहिए और यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। बिजली कड़कने पर हमें खुले मैदान, ऊंचे पहाड़ों, बिजली के खंभों और धातु की वस्तुओं से दूर रहनी चाहिए। सुरक्षित इमारत के भीतर हमें अपनी आश्रय लेनी चाहिए और इस मौसम में बच्चों और बुजुर्गों का तो विशेष ध्यान रखना चाहिए, उन्हें भीगने से बचाना चाहिए और यदि बुखार, दस्त, खांसी या सांस लेने में तकलीफ हो तो हमें तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और एक विशेष बात श्रोताओं, हमें इस समय वर्षा जल का संरक्षण अवश्य करनी चाहिए। जहाँ तक संभव हो हमें वर्षा जल का संचयन करनी चाहिए, इससे भविष्य में पानी की उपलब्धता को बढ़ाने में हमें मदद मिल सकती है। और मौसम की जानकारी लेती रहनी चाहिए। भारी वर्षा या आंधी तूफान की चेतावनी मिलने पर अनावश्यक यात्रा से बचना चाहिए और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन अवश्य करना चाहिए। बारिश का मौसम तो खुशियां लेकर आता है लेकिन थोड़ी सी सावधानी बहुत ही जरूरी है। हमें स्वच्छता अपनानी होगी जिससे कि हम सुरक्षित रह सकें और मानसून का आनंद जिम्मेदारी के साथ उठाएं। और अब सुनते हैं ये संदेश।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: अब गरीबों की जाय बन गई है।
1: अच्छे उपचार के लिए
2: और इस अंतराल के बाद श्रोताओं कार्यक्रम विविधा में सुनवा रहे हैं आपको फिल्म मशाल का ये गीत किशोर कुमार का गाया।

आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और अब श्रोताओं हम लेकर हाजिर हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसरंजन। कार्यक्रम रसरंजन का पहला गीत श्रोताओं हमने लिया है अरिजीत सिंह का और पलक मुच्छल का गाया फिल्म आशिकी 2 का ये गीत।

0: अब गरीबों की जाय बन गई है।
1: अच्छे उपचार के लिए अब नहीं रहेगा कोई लाचार। देश भर में 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं। अब 5 लाख के मुफ्त इलाज के हकदार। अब तक 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मुफ्त उपचार के लाभ दिए जा चुके हैं और स्वाभिमान और सेहत की सौगात का ये सिलसिला जारी है।
2: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी घर बैठे अपना आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रस रंजन, और सुनवा रहे हैं आपको हम कार्यक्रम का अगला गीत के और वसुंधरा की आवाज़ों में फिल्म मैं हूं ना। इससे इसके गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ये गीत और आपको सुनवा रहे हैं हमारे कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है प्रेम और सुनते हैं नलिन दवे और अलका याग्निक की आवाज़ों में।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना एआर रहमान श्रीनिवास और साथियों का गाया जावेद अख्तर के बोल एआर रहमान के धुन पर। सुन रहे थे लगान फिल्म का ये गीत।
1: मिस सीमा
2: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
2: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा,
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: पुलिस।
5: श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का फिल्म गीतों का कार्यक्रम रसरंजन समाप्त होता है।

आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इसके प्रायोजक है NCERT।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमदत्ता और डिंपल देवांगन जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी।
3: वाह क्या बात है, जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी। आगे लिखते हैं,
2: योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग जरूर करें।
3: वाह ये भी एक बड़ी खूबसूरत कविता बन गई। योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग करें। बहुत सुंदर विचार भेजा आपने, धन्यवाद स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: गाँव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेड़था बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
3: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
2: ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
3: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय के साथ साथ बेबी किट्टू ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी सादर नमस्कार।
2: हम उमंग कार्यक्रम के नियमित श्रोता हैं। सोमवार से शुक्रवार तक एक एक जानकारी सुनते हैं, समीक्षा भी भेजते हैं। गुजरे सप्ताह आपने 15 जून को केवल नाम पढ़ा लेकिन समीक्षा नहीं पढ़ी।
3: आपके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि आगे से हम जरूर इस बात का खास ख्याल रखेंगे
2: जी।
3: अगला संदेश हमें मिला है राजा जी नगर बेंगलोर से NR प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का।
2: आप सबके संदेशों के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए मैं।
3: श्रोताओं इन दिनों हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों के रोचक संसार की
2: जी।
3: कल हमने जाना था कि पेड़ पौधे आपस में किस प्रकार से संचार करते हैं। आज हम जानेंगे पेड़ों के बारे में एक और रोचक बात
2: जी।
3: तो विमलेश जी आपने कल बातचीत में प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बोस के बारे में कुछ बताया था
2: जी। अजीत जी मैं याद कर रही थी उनके बचपन की एक घटना को। ऐसा कहते हैं कि जब वे बच्चे थे तो एक शाम वे गेंद से खेल रहे थे, गेंद पास की झाड़ियों में फंस गई थी।
3: बालक जगदीश चंद्र बोस ने एक डंडा लिया और लगे झाड़ी को हिलाने
2: जी।
3: वे बहुत प्रयास करते रहे लेकिन गेंद झाड़ी में उलझी रही
2: जी।
3: शाम ढलने लगी थी तभी उनकी माँ ने उन्हें बुलाया और कहा, बेटा पौधों को तंग ना करो, ये उनके सोने का समय है।
2: श्रोताओ यही वो समय था जब बालक जगदीश चंद्र बोस के मन में वैज्ञानिक चेतना जागी। तो श्रोताओ आज हम चर्चा करेंगे कि क्या पेड़ पौधे भी सोते हैं।
3: श्रोताओ इसका उत्तर है जी हाँ, लेकिन हमारी तरह नहीं। वैज्ञानिकों ने शोध करके पाया है कि रात में पेड़ों की गतिविधियां धीमी हो जाती हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की गति बहुत कम हो जाती है।
2: पानी और पोषक तत्वों का प्रवाह भी दिन के मुकाबले कम हो जाता है। पेड़ों की स्कैनिंग से ये भी पाया गया है रात के समय कुछ पेड़ों की शाखाएं और पत्तियां 5 से 10 सेंटीमीटर तक नीचे झुक जाती हैं और सूर्योदय के बाद फिर से ऊपर उठ जाती हैं।
3: अरे वाह ये तो बड़ी रोचक बात है। यही कारण है कि ये कहा जाता है कि पेड़ भी सोते हैं। विमलेश जी आजकल सुना जाने लगा है कि पेड़ों पर रात को तीव्र प्रकाश वाले बल्ब नहीं जलाने चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है?
2: अजीत जी ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रात में पेड़ों पर बल्ब नहीं जलाने चाहिए।
3: क्यों?
2: इसके कई कारण हैं। पहली बात, इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं, तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता
3: जी। विमलेश जी श्रोताओ एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियों के झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर ही निर्भर करती है, जबकि कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है।
2: एक और बात, कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीटों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है
3: जी।
2: सजावट या सुरक्षा कारणों से भी कभी कभार सीमित समय के लिए बत्तियां जलाई जा सकती हैं, लेकिन अच्छा यही है कि जहां तक हो सके उन्हें प्राकृतिक पर्यावरण में ही रहने दिया जाए
3: जी। तो श्रोताओ ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी, आशा है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आई है तो लिख भेजिए अपना संदेश। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए?
3: श्रोताओ आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप सीआईटी एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं।
3: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है खेल संध्या।
2: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसे एक गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। गीत में बच्चे विशेषकर भारत के पारंपरिक खेलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें खेलने कूदने में कितना आनंद आता है।
3: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
4: संध्या को हम खेलने जाते,
3: मित्रों संग आनंद मनाते,
4: मित्रों संग आनंद मनाते,
3: कभी दौड़ना और उछलना,
4: कभी दौड़ना और उछलना,
3: कभी गेंद के खेल खेलना,
4: कभी गेंद के खेल खेलना,
3: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
4: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
3: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
4: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
3: गिल्ली डंडा सबको भाता,
4: गिल्ली डंडा सबको भाता,
3: सतोलिया भी मजा दिलाता,
4: सतोलिया भी मजा दिलाता,
3: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
4: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
3: या हंस हंस के बातें करना,
4: या हंस हंस के बातें करना,
3: जब अंधेरा होने लगता,
4: जब अंधेरा होने लगता,
3: सबको कुछ डर लगने लगता,
4: सबको कुछ डर लगने लगता,
3: तब हम घर को वापस आते,
4: तब हम घर को वापस आते,
3: कल खेलेंगे यह कह जाते,
4: कल खेलेंगे यह कह जाते।
3: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है, जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आपने सुना ये प्यारा कार्यक्रम।

0: कहते हैं अरबों वर्ष पहले पृथ्वी पर जमीन का एक विशाल टुकड़ा था। किसी कारणवश बड़ा भयंकर धमाका हुआ। और जमीन के टुकड़े अलग अलग छिटक गए। उसी से बने द्वीप और महाद्वीप।
1: ऐसा ही एक महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया।

0: ये भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसके पश्चिम और दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में प्रशांत महासागर है और उत्तर में टिमोर और अराफुरा सागर है।
1: क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया भारत से दुगने से भी अधिक है, लेकिन भारत की जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से लगभग 6 गुना अधिक है।

0: ऑस्ट्रेलिया का अधिकतर भाग सूखा और गर्म है। हमारे देश की गंगा नदी में जितना जल है, ऑस्ट्रेलिया की सारी नदियों में कुल मिलाकर उसका आधा जल भी नहीं है।
1: एक बात और, दक्षिण गोलार्ध में होने के कारण ऑस्ट्रेलिया के मौसम उत्तरी गोलार्ध में स्थित देशों से उल्टे होते हैं। उदाहरण के लिए, जब भारत में गर्मियां होती हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जाड़ा होता है, और जब भारत में जाड़ा होता है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का मौसम आ जाता है।
0: दुनिया के इस सबसे छोटे महाद्वीप की खोज सन 1770 में एक अंग्रेज नाविक कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। इसका मतलब ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की खोज से पहले वहां लोग नहीं रहते थे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी तो पाषाण युग से रहते चले आ रहे हैं। और शायद तुम्हें ये जानकर हैरानी हो कि उनमें से कुछ के जीने के तरीके में आज भी कोई अंतर नहीं आया।
1: मतलब ये कि आज भी ये शिकार करके अपना पेट पालते हैं। इन्होंने न खेती करना सीखा न पशु पालना। पशु के नाम पर डिंगो नाम का एक कुत्ता पालते हैं, जो शिकार के समय भी बराबर इनके साथ रहता है।
0: शिकार करने के लिए ये लोग आज भी पत्थर और लकड़ी के हथियारों का प्रयोग करते हैं। इनका एक हथियार है वो मेरा, जिसकी मदद से ये अपने भाले को 130 मीटर की दूरी तक फेंक सकते हैं।
1: एक और हथियार होता है बूमरैंग, जो घुमावदार होता है। इस हथियार की विशेषता ये है कि अगर शिकारी इसे चतुराई से फेंके और किसी कारणवश वह निशाने पर न लगे तो शिकारी के पास वापस आ जाता है।
0: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी सभी तरह के पशु पक्षियों का शिकार करते हैं, जैसे एम्यू पक्षी, सांप, छिपकली, कछुआ, कंगारू आदि।
1: कंगारू, इस शब्द की एक रोचक कहानी है। अंग्रेजों ने जब पहली बार इस विचित्र जीव को देखा तो आदिवासियों से इसका नाम पूछा। आदिवासी अंग्रेजी तो समझते नहीं थे, बस इतना समझ पाए कि गोरे लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं। उन्होंने अपनी भाषा में कहा, कंगारू यानी तुम क्या जानना चाहते हो? अंग्रेज समझे कि कंगारू इस विचित्र जीव का नाम है, बस तभी से उसका नाम कंगारू पड़ गया।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों के बारे में इतना जान लेने के बाद ये जानने की भी इच्छा होती है कि शताब्दियां बीत जाने पर भी जिन लोगों की जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आया, वो देखने में कैसे लगते हैं?
1: इनका रंग गहरा होता है।

0: कद सामान्य, शरीर छरहरा लेकिन गठा हुआ, आंखें छोटी और भीतर को धसी हुई, नाक चौड़ी और चपटी, जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ और बाल घुंघराले।
1: हमारी दृष्टि से भले ही ये लोग पिछड़े हों, लेकिन शारीरिक और बौद्धिक दृष्टि से ये पीछे नहीं। इनकी भाषाएं काफी विकसित हैं और लगभग 500 बोलियां प्रचलित हैं। हाँ, ये बात और है कि इनके यहाँ पढ़ाई लिखाई की कोई व्यवस्था नहीं।
0: तुम सोच रहे होगे कि क्या मजे की बात है, आदिवासी बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ता, न होमवर्क करना पड़ता है और न ही परीक्षा देनी पड़ती है। बस सारा दिन मौज मस्ती करो, खेलो कूदो।
1: हाँ, ये तो है। आदिवासी बच्चों ने अपने मनोरंजन के लिए तरह तरह के खेल बना रखे हैं।
0: ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों का पारिवारिक संगठन बहुत मजबूत होता है। ये सब कुछ मिल बांट कर खाते हैं और प्रेम से रहते हैं। इनके यहाँ छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं होता, सभी बराबर माने जाते हैं। हाँ, बड़े बूढ़ों और अनुभवी लोगों का आदर अवश्य किया जाता है।
1: इन्हीं बड़े बूढ़ों पर पवित्र स्थलों की जिम्मेदारी होती है। यही लोग धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं और नौजवानों को अपने रीति रिवाजों के बारे में बताते हैं। ऐसे अवसरों पर नृत्य और संगीत अवश्य होता है।
0: हाँ, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। स्त्री पुरुष अपने शरीर पर सफेद मिट्टी और गेरू से टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचते हैं, आकृतियां बनाते हैं, माथे पर रस्सी की पट्टियां बांधते हैं और उनमें पक्षियों के रंग बिरंगे पंख खोंस लेते हैं, और फिर होता है सामूहिक नृत्य।
1: ऑस्ट्रेलिया के ये सीधे साधे आदिवासी हंसते खेलते अपना जीवन बसर कर रहे थे, लेकिन फिर अंग्रेजों को इस अद्भुत महाद्वीप का पता चल गया। और उन्होंने वहां अपनी बस्तियां बसानी शुरू कर दी।
0: अंग्रेजों के अलावा अन्य यूरोपीय लोग भी यहां आए। पहले पहल अंग्रेज समुद्र तट पर आकर बसे, फिर उन्होंने अंदर की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे अंग्रेज आगे बढ़े, वैसे वैसे आदिवासी अंदर के दुर्गम क्षेत्रों में सिमटते गए। बेचारे क्या करते, अपने सीधे साधे हथियारों से अंग्रेजों का मुकाबला थोड़े ही कर सकते थे।
1: अंग्रेजों ने आदिवासी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और वहां खेती बाड़ी शुरू कर दी। कहीं कहीं आदिवासियों ने अपना क्षेत्र खाली करने से इनकार किया तो अंग्रेजों ने छल कपट से काम लिया। ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न नगर इसका जीता जागता उदाहरण है। इस नगर को बसाने के लिए अंग्रेजों ने आदिवासियों से 40,000 हेक्टेयर जमीन ली, और जानते हो उसके बदले में उन्हें क्या दिया?
0: 100 कंबल, 50 चाकू, 50 कुल्हाड़ियां, 40 कैंचियां, 50 शीशे, 20 जोड़ी कपड़े और 2 टन आटा।
1: ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी छोर पर एक छोटा सा द्वीप है, तस्मानिया। ये भी ऑस्ट्रेलिया का एक हिस्सा है। यहाँ के आदिवासियों को भी अंग्रेजों ने उसी तरह धकेलना शुरू किया। अंग्रेज उन्हें खाना कपड़ा तो देते थे, लेकिन बेचारे अंग्रेजों की उतरन पहनकर भी ठंड से नहीं बच पाए। सन 1847 तक इनकी संख्या 2000 से घटकर केवल 47 रह गई, और सन 1869 तक आते आते आखिरी आदिवासी ने भी दम तोड़ दिया। इस तरह पूरी की पूरी एक जाति लुप्त हो गई।
0: आज पशु पक्षियों की दुर्लभ जातियों के संरक्षण को बहुत महत्व दिया जा रहा है, उनके शिकार पर रोक लगा दी गई है। उनके लिए अभयारण्य बनाए जा रहे हैं, लेकिन तस्मानिया के आदिवासियों के बारे में तब किसी ने भी नहीं सोचा।
1: ऑस्ट्रेलिया के इन आदिवासियों की दशा में काफी सुधार हुआ है। उन्हें अब समानता के अधिकार मिल गए हैं। वो वोट दे सकते हैं, अपने प्रतिनिधि को देश की संसद में भेज सकते हैं।
0: यही नहीं, आदिवासियों को भूमि के अधिकार भी मिले हैं। इनके लिए कुछ आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं जहां किसी और का कोई दखल नहीं। ये लोग अपनी मर्जी से जैसे चाहें रह सकते हैं।
1: उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में अर्नहैम लैंड नाम का एक ऐसा ही आरक्षित क्षेत्र है। इसमें ककाटो नाम का एक राष्ट्रीय पार्क भी बनाया गया है। सन 1988 में इस राष्ट्रीय पार्क की फिल्म बनाने के लिए एक अमरीकी दंपति वहां जाकर महीनों रहे थे।
2: हम लोग आपके इस ककाटो पार्क की फिल्म बनाने आए हैं, और उसके लिए पूरे परिवेश को अच्छी तरह जानना समझना बहुत जरूरी है।
3: तब तो आप भी हम गागुजू आदिवासियों जैसे ही हैं। हम लोग अपने आप को प्रकृति का एक हिस्सा मानते हैं।
4: लेकिन मिस्टर नीजी, मनुष्य तो अपने को प्रकृति का मालिक मानता है।
3: नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, नहीं तो वन देवी नाराज हो जाएंगी। वन देवी ने समुद्र से निकलकर जमीन बनाई, पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए, मनुष्य को जन्म दिया, और फिर वो भी इन्हीं में समा गई।
2: अच्छा, तो ये सब वन देवी ने किया?
3: यही नहीं, हमारी मिमी देवी ने हमें शिकार करना सिखाया और चित्र बनाना सिखाया।
4: कैसे चित्र?
3: जीव जंतुओं के चित्र, आदमी के चित्र।
2: क्या आप हमें ऐसे कुछ चित्र दिखा सकते हैं?
3: क्यों नहीं, अभी चलिए।
2: चलिए।
3: आई
2: देखो वेलिंडा, ये अजगर का चित्र।
4: अरे, इसमें तो अजगर की हड्डियों का ढांचा तक दिख रहा है, जैसे ये कोई एक्सरे फोटो हो।
2: और ये देखो, ये गुफा की दीवार पर गेरू से बनी ये मछली।
4: इधर ये कछुए, मेंढक, कंगारू और ये प्लेटिपस के चित्र भी हैं। और ये देखो, आदिवासी का ये चित्र।
2: मिस्टर नीट जी, क्या आप लोग अब भी ऐसे चित्र बनाते हैं?
3: गुफाओं में तो नहीं, हाँ पेड़ों की छाल पर जरूर बनाते हैं। आप कल हमारे कबीले में आइए, मैं आपको अपने भाई से मिलवाऊंगा, वो बहुत अच्छे चित्र बनाता है।
2: ठीक है, कल सुबह हम वहां आएंगे, अभी इन चित्रों की फिल्म तो उतार लें।
3: हाँ।
2: गुड मॉर्निंग मिस्टर नीट जी।
3: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए आइए आइए।
2: हमारे आने से आपको कोई असुविधा तो नहीं हुई?
3: जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। ये मेरा भाई है, इल्किर।
2: अच्छा अच्छा।
3: ये आपकी भाषा नहीं बोल सकता, लेकिन आपको चित्र दिखाएगा। कल इसने ये छाल उतारी थी चित्र बनाने के लिए, आप इसे चित्र बनाते देखना चाहते हैं?
4: ये तो बहुत अच्छा होगा, फिर हम उसकी फिल्म भी उतार सकते हैं।
3: जी।
2: अरे वाह, ये तो बड़ी तेजी से हाथ चला रहे हैं। देखो वेलिंडा, इनकी कोई गलती भी नहीं हुई, और देखो ना, कुछ मिटाना भी नहीं पड़ा।
4: वाकई कमाल है।
3: अभ्यास से गलतियां नहीं होती, हमारे बनाए चित्र तो अब दुनिया भर में बिकते हैं।
2: सचमुच?
4: स्टेन, एक चित्र हम भी खरीद लें?
2: हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। वो अजगर वाला चित्र बड़ा आकर्षक है।
3: लीजिए, ये आपका हुआ।
2: इसकी कीमत?
3: कीमत नहीं लूंगा, हम गगुज्जू आदिवासियों की तरफ से आपको भेंट है।
4: सच?
2: धन्यवाद।
0: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी अच्छे चित्रकार तो हैं ही, आज उन्होंने अन्य क्षेत्रों में भी अपना स्थान बना लिया है। वो देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे हैं।
1: लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें ये आधुनिकीकरण पचता नहीं, वो अपनी जीवन पद्धति नहीं बदलना चाहते, और क्योंकि अब उन्हें भूमि के अधिकार मिल गए हैं, इसलिए वो अपने क्षेत्र में अपने ढंग से जी सकते हैं। एक तरह से अच्छा भी है, आज हम चाहें तो पाषाण युग की जीवन शैली को प्रत्यक्ष देख तो सकते हैं।
0: ऑस्ट्रेलिया
5: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार।
6: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
7: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इसके प्रायोजक थे NCERT। आकाशवाणी का ये चाईबासा केंद्र है और अब आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम।

0: ऋतुश्री नमस्कार, जोहार साथियों, और मीता आपको भी हमारा नमस्कार
1: नमस्कार ऋतु, और हमारे श्रोताओं को भी मीता का प्यार भरा नमस्कार जोहार।

0: और मिता जोहर रांची में अब वक्त है सुविचार का।
1: बिल्कुल
0: तो
1: रितु, ऐसा है कि कई बार देखती होगी कि हम लोग ट्रैफिक पे कहीं रुके होते हैं
0: हाँ
1: तो बहुत से लोग चिड़चिड़ करते हैं,
0: बिल्कुल
1: कुछ एक हॉर्न बजाने लगते
0: आज
1: हैं।
0: मैं जब आ रही थी तो मैंने यही देखा कि एक जो हमारे पीछे जो गाड़ी थी उसमें वो मोबाइल चला रहे थे और पीछे उनकी वजह से काफी वो स्लो चला रहे थे और बहुत जाम लग रहा था। लेकिन जब लोगों ने उनको हॉर्न देने शुरू किया तो वो इतना इरिटेट होकर सबको घूर घूर के देखने लगे, जैसे लगा कि
1: कि गलती
0: एकदम
1: दूसरों की
0: दूसरों की है।
1: है। वही वही बात है
0: तो
1: कि
0: इसे
1: हम
0: कहते हैं कि क्रोध करना बहुत आसान होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अपनी गलती को अगर देख लें तो शायद आप क्रोध की जगह विनम्र हो जाएं।
0: बिल्कुल
1: वैसे क्रोध करना अच्छी बात नहीं, मैं वही बात कह रही थी कि ट्रैफिक पर अगर रुकना भी पड़ जाता है तो लोग गुस्सा हो जाते हैं।
0: हाँ
1: अगर थोड़ी देर को दुकानदार ने सामान देने में देरी कर दी तो लोग गुस्सा हो जाते
0: हाँ
1: हैं। छोटी छोटी बातों पर जब गुस्सा करते हैं तो उसका हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है, अगर वो एक बार ये जान लें तो शायद गुस्सा कभी ना करें।
0: बिल्कुल। और ऐसे भी कहते हैं ना कि आवेश में जो भी प्रतिक्रिया हम देते हैं ना वो गलत ही
1: गलत ही
0: होता है
1: होती है
0: और वो दूसरों को
1: क्योंकि
0: तकलीफ
1: आप सोच
0: देती
1: नहीं
0: है।
1: सकते उस समय, आप बस प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं, उसका परिणाम आप सोच लें तो शायद वैसी प्रतिक्रिया भी ना
0: नहीं
1: दे।
0: दे हाँ तो उसके लिए हमें करना ये चाहिए मीता कि हमें अगर ऐसी परिस्थिति में हम आ गए तो हमें एक क्षण सोचना चाहिए।
1: सोचना चाहिए, ये पुरानी बात है कि आप 10 तक गिने, जब भी आपको
0: गिनती
1: गुस्सा
0: करना
1: आए तो आप 10 तक गिने, तब तक शायद आप कारण को समझ जाए और शायद आपका गुस्सा छुमंतर हो जाए।
0: हाँ। और कहते हैं ना कि जो गुस्सा करता है उसकी अग्नि में सबसे पहले वही जलता है।
1: पहले वही जलता है।
0: तो
1: और गुस्से में कई बार हम ऐसी कड़वी बातें लोगों को कह देते हैं जो उनके दिल पर बहुत गहरा असर छोड़ती है। कई बार उनकी
0: और
1: मनस्थिति खराब हो जाती है, कई बार आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं।
0: हाँ और उनकी वो इतने आहत होते हैं ना कि कई दिनों तक या कई समय बहुत लंबे समय
1: वही
0: तक
1: वही बोले कि
0: ये
1: उनकी
0: बातें उनके
1: मनस्थिति
0: मन
1: खराब
0: में
1: हो
0: रह
1: जाती
0: जाती है।
1: है।
0: हाँ
1: और जब आप
0: तो
1: किसी के लिए बुरा बोलेंगे तो जाहिर सी बात है कि उधर से जो वाइब्स आएगी वो अच्छी नहीं होगी और
0: हाँ
1: आपको नुकसान देगी।
0: हाँ
1: यानी कि आप क्रोध करके अपना नुकसान खुद तो किए, आपके शरीर पर उसका असर पड़ा, सामने वाले को दुख पहुंचाए तो उसकी बद्दुआएं भी आपने ले ली।
0: बिल्कुल। तो ये हम सबको समझना होगा मित्र कि क्रोध का समाधान केवल दमन नहीं बल्कि ठहराव के साथ सोचना और फिर उस पर अपनी प्रतिक्रिया
1: बिल्कुल,
0: देना है।
1: हमारी प्रतिक्रिया ये होगी कि हम अपने श्रोताओं को कुछ हल्का फुल्का गीत सुना दें।
0: बिल्कुल।

0: रितु, मौसम का मिजाज जो है कैसा लग रहा है आपको?
1: देखिए, मौसम का मिजाज तो कभी धूप कभी बारिश
0: नहीं। इधर तो 3-4 दिन से घनघोर बारिश हो रही थी और अब कुछ दौर थमा सा लग रहा है, लेकिन फिर भी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। आज राज्य में और 6 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया गया है। धनबाद, बोकारो और हजारीबाग समेत अन्य इलाकों पर बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की आशंका है। प्रशासन ने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है और
1: ये भी बता दें कि पिछले 24 घंटे में रामगढ़ में सबसे अधिक 96.3 और रांची में 45 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। और इधर झारखंड में बारिश का दौर थमा, कल से चढ़ेगा पारा, 11 से फिर अच्छी बारिश की संभावना बन रही है।
0: मॉनसून सक्रिय रहेगा लेकिन हर जिले में बारिश नहीं होगी ऐसा मौसम विज्ञान ने कहा है।
1: और अमिता ये भी बता दें कि एक राहत भरी बात यह है कि राज्य में 8 दिनों में 101 मिलीमीटर बारिश हो गई, जो हम सोच रहे थे कि बारिश
0: की स्थिति
1: आ रही है, तो उससे उस पे हम कुछ अब कह सकते हैं कि सूखे की स्थिति तो नहीं आएगी। और जो खेत धान के लिए तैयार होते हैं उसमें कुछ अब तैयारी शुरू की जाएगी किसानों की तरफ से।
0: किसानों को थोड़ी खुशी मिल सकती है। राहत की बात है कि बारिश ने अपना काम कर दिया है और भी ज्यादा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात।

0: किसानों
1: और...
0: के लिए, लेकिन कम से कम इतना है कि सूखे की
1: संभावना अब कम हो गई है। और वैसे बता दें कि राजधानी समेत झारखंड में पिछले 8 दिनों में 101.4 मिलीमीटर बारिश हुई। ये इस दौरान होने वाली बारिश से करीब 1.5 गुना अधिक है। इतनी अच्छी बारिश होने के बाद भी राज्य में अभी भी तकरीबन आधे से अधिक जिलों में 50% से कम बारिश हुई है। तो अभी बारिश का और इंतजार तो है ही।
0: हाँ, ये तो हमारे राज्य की बात हुई ऋतु। वैसे अगर पूरे देश की बात करें तो बहुत से जगह हैं जहाँ पर बाढ़ का रूप ले चुका है बारिश।
1: हाँ।
0: और जो वायनाड में है वहाँ भूस्खलन भी हुआ है। झारखंड में भी के भी कुछ लोग वहां थे जिन्हें क्षति हुई है।
1: हाँ।
0: और जो सूरत है वो आधा अभी डूब चुका है। मानसून मतलब अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। महाराष्ट्र में तो कहर बरपा रहा है और दक्षिण गुजरात में भी लगातार बारिश हो रही है। सूरत में मंगलवार को बहुत बारिश हुई, 36 घंटे में 18 इंच पानी बरसा। और मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को भी यानी आज भी गुजरात और सौराष्ट्र में भारी बारिश की संभावना है। इस बीच केरल की बात तो हम कर ही चुके हैं कि 10 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है और वहां भी बाढ़ की स्थिति है। सुरंग के प्रवेश द्वार पर भी कुछ मिट्टी के ढेर जमा हो गए। इस वजह से अस्त व्यस्तता तो बनी हुई है।
1: हाँ, मतलब हमारे यहाँ जो हमने भवन निर्माण अस्त व्यस्त तरीकों से कर दिया है ना, उसकी वजह से जल जमाव की जो स्थिति बनती है वो बहुत नुकसान पहुंचा
0: नुकसान हो जाता है। और बाढ़ की स्थिति, हल्की बारिश में भी बाढ़ की स्थिति बन जाती है।
1: हाँ,
0: तो ये
1: हाँ,
0: नहीं कह सकते
1: हाँ,
0: कि बारिश बहुत ज्यादा हुई तभी ये जल जमाव ये सब। तो
1: और आने जाने वालों को बहुत मुश्किल होती है, स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को उस जल जमाव में जाना, ये काफी परेशानी की बात है। लेकिन ऐसा अमिता की बारिश के बीच निगम ने अलर्ट हेल्पलाइन नंबर जारी किया जिस पर आप इस तरह के जल जमाव की सूचना दे सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो आप इनका जो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है 1800-5701-235 पर आप ये सूचना दे सकते हैं। आप टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर एक बार फिर सुन लें,
0: 1800-5701-235 पर आप सूचना दे सकते हैं। हर एक नागरिक की जिम्मेवारी बढ़ जाती
1: हाँ,
0: है वो
1: हाँ,
0: सरकार तभी अच्छा काम कर सकती है जब हम भी जागरूक रहे।
1: हाँ, बिल्कुल। और अगर आप इन नंबर पे सूचना देंगे तो क्विक रेस्पॉन्स टीम पहुंचकर वो जल जमाव की स्थिति को खत्म करेगी,
0: निकासी कराएगी।
1: हाँ।
0: और अभी मानसून जो है वो कल भी देश भर में छाने की संभावना है ऋतु।
1: हाँ।
0: और इससे उत्तर भारत और पहाड़ी राज्यों में बारिश का एक नया ही सीजन शुरू हो जाएगा।
1: हाँ।
0: तो संभल के रहे हमारे पूरे देशवासी जो भी हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं।
1: हाँ।
0: वो खुद से तो अलर्ट रहेंगे ही, लेकिन हम उनसे गुजारिश करते हैं कि बारिश के इस मौसम में अपनी और अपनों का ख्याल रखें। आप बारिश से भी बचें, बारिश से होने वाले नुकसान से बचें,
1: और जब हम इन नुकसानों से बचेंगे तो हम फिर बारिश का आनंद
0: ले सकते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम बहुत
1: सुहाना
0: मौसम
1: बहुत होता अच्छा है, होता है। बिल्कुल।
0: हाँ। इसमें अगर आप थोड़ी बेफिक्री रखें और परिस्थितियां अनुकूल हो तो
1: हाँ,
0: आप काफी एंजॉय
1: कर सकते हैं।
0: तो हम एक गीत तो सुन ही सकते हैं,
1: क्यों नहीं।

0: मेघा रे मेघा, सचमुच हमारे श्रोताओं को यह गीत पसंद आया होगा ऋतु, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। और हम अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और पलटते हैं पन्ने इतिहास की, क्या कहते हैं?
1: हाँ हाँ बिल्कुल, तो हर रोज की तरह आज के इतिहास में क्या कुछ खास है इसकी जानकारी अब हम अपने दोस्तों को देंगे, है ना?
0: बिल्कुल।
1: तो देखिए 8 जुलाई की जो बहुत महत्वपूर्ण घटना है वो ये है कि 1497 में वास्को डिगामा ने यूरोप से भारत की प्रथम जल यात्रा आरंभ की थी।
0: और ग्रेगरी कैलेंडर के अनुसार 8 जुलाई वर्ष का 179वां यानी 90वां दिन है, साल में अभी 176 दिन शेष है।
1: हाँ, और 1858 में ग्वालियर के किले के पतन के बाद लॉर्ड कैनिंग ने शांति की घोषणा की थी।
0: 1918 में भारतीय संविधान में सुधार के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रपट प्रकाशित की गई।
1: और 1954 में सतलज नदी पर निर्मित भाखरा नांगल पनबिजली परियोजना देश को समर्पित की गई थी।
0: 1975 में म्यांमार के बगा में आए भूकंप में हजारों मंदिर ध्वस्त हो गए और भारी जान माल की क्षति हुई थी।
1: 1994 में शिमाकी मुकाई जापान की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनी।
0: 1999 में पापुआ न्यू गिनी प्रधानमंत्री बिल स्कोट का इस्तीफा हुआ था।
1: और ये भी बता दें कि 2002 में दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत क्रिकेटरों के लिए कोटा प्रणाली समाप्त कर दी गई थी।
0: 2003 में सूडान में हुए विमान हादसे में 115 लोग मारे गए।
1: 2005 में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर समूह 8 के देशों में सहमति बनी थी।
0: 2008 में पेरिस की सरकार ने बांग्लादेश की विवादाग्रस्त लेखिका तस्लीमा नसरीन को मानद नागरिकता देने का प्रस्ताव किया था।
1: और 2012 में असम में भयावह बाढ़ ने विश्व प्रसिद्ध कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के 13 गैंडों समेत 500 से अधिक वन्य प्राणियों को ले लिया था।
0: अब हम बता दें हमारे श्रोताओं को कि आज के दिन 1972 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सौरभ गांगुली का जन्म हुआ था।
1: और 1991 में अनीता कुंडू जो भारत की प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं, इनका जन्म भी आज के दिन ही हुआ था।
0: 1949 में गेगोंग अपांग जो अरुणाचल प्रदेश से भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, उनका जन्म हुआ था।
1: 1980 में चेतन आनंद भारत के प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इनका जन्म आज के दिन ही हुआ था। और ये भी बता दें कि 1949 में माफ कीजिएगा 1946 में गिरिजा व्यास राष्ट्रीय महिला आयोग की 2 कार्यकाल तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं, इनका जन्म आज के दिन ही हुआ था।
0: 1937 में 8 जुलाई को गिरिराज किशोर जो हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार सशक्त कथाकार नाटक और आलोचक हैं, उनका जन्म हुआ था।
1: और 1914 में ज्योति बसु भारतीय मार्क्सवादी राजनीतिज्ञ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे, इनका जन्म भी आज के दिन ही हुआ था।
0: 1912 में आज ही के दिन बनारसी दास जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनका जन्म हुआ था।
1: और 1909 में विष्णु डे ज्ञानपीठ पुरस्कार 1971 में इन्हें मिला था, इससे सम्मानित ये बंगला साहित्यकार थे। 1898 में पीएस कुमारस्वामी राजा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ थे, इनका जन्म आज के दिन हुआ था। और ये भी बता दें मीता कि 1958 में नीतू सिंह जो हिंदी चलचित्र अभिनेत्री हैं, ये काफी फेमस अभिनेत्री हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इनका हिट फिल्में इन्होंने दी हैं।
1: इनका जन्म भी,
0: इनकी सबसे सफल जोड़ी ऋषि कपूर के साथ रही जो उनके जीवन साथी भी बने आगे चलकर। तो क्यों
1: इन, हाँ बिल्कुल गाना सुनेंगे। और ये काफी भावपूर्ण भूमिकाएं भी की और चुलबुली
0: बिल्कुल
1: नायिका भी रहेंगे।
0: काफी अच्छी एक्ट्रेस रही हैं वो, मतलब उनके अभिनय में एक सहजता थी।
1: हाँ,
0: बाल अभिनेत्री के रूप में भी उनकी कई फिल्में हिट हुई, वारिस, पवित्र पापी और रिक्शा वाला के साथ, मतलब इस फिल्म के साथ एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में उन्होंने अपनी शुरुआत की। 1973 से 1983 तक मुख्य नायिका की भूमिका में लगभग 50 में वो दिखाई दी।
1: हाँ, और इन्होंने फिल्म 2 कलियां जो काफी हिट फिल्म थी उसे डेब्यू किया था एक बाल कलाकार के रूप में।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो चलिए मीता सुनते हैं एक चुलबुला सा गाना जो इन पे फिल्माया गया था।
0: बिल्कुल बिल्कुल।

0: रितु, जीवन में कुछ अच्छी बातें होती हैं तो कुछ दुखदाई भी होती हैं, मानती हैं ना?
1: बिल्कुल। तो इतिहास में अब उनकी बातें जो आज के दिन इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो ये बता दें कि 2021 में वीरभद्र सिंह, जो हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका निधन आज के दिन ही हुआ था। और 2018 में M.M. जैकब, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ थे, इनका निधन आज के दिन ही हुआ था। 2007 में भारत के 11वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह का निधन आज के दिन ही हुआ था। और ये भी बता दें कि 2003 में सुभाष मुखोपाध्याय, भारत के बांग्ला कवि और साहित्यकारों में से एक थे, इनका निधन आज के दिन ही हुआ था।
0: और ऋतु, जगदीप जिनका जन्म 29 मार्च 1939 को सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी के रूप में हुआ था, वो एक महान भारतीय हास्य अभिनेता थे। उनका निधन आज ही के दिन हुआ था। उन्हें फिल्म शो में सुरमा भोपाली के अपने किरदार के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। 400 से अधिक फिल्मों में काम करने वाले अपने करियर में उन्होंने अंदाज अपना अपना और ब्रह्मचारी जैसी क्लासिक फिल्मों में भी अपने हास्य से चार चांद लगा दिए थे। आइए सुनते हैं, इन पर फिल्माया गया फिल्म भाभी का ये गीत।

0: और जोहरा जी में अब हम बातें करेंगे स्वास्थ्य की।
1: बिल्कुल, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है रितुश्री।
0: हाँ, और देखिए आजकल क्या है ना कि हमारी जो बदलती जीवन शैली है ना मिता,
1: बिल्कुल
0: वो हमारे स्वास्थ्य पे बहुत गहरा प्रभाव डाल रही है।
1: और अगर बीमारियों पर नियंत्रण रखना है, बेहतर स्वास्थ्य पाना है, तो आपको जीवन शैली को संतुलित रखना ही होगा। और कुछ आदतें हैं जो बीमारियों को जन्म देती हैं ऋतु।
0: हाँ हाँ, जैसे हमारी कई गलत आदतें कई बीमारियों की वजह बनती हैं या उन्हें फिर गंभीर बना देती है। और अच्छी बात यह है कि समय रहते अगर हम अपने आदतों में बदलाव कर देना तो जीवन की राह, अच्छी जीवन की राह अपनाई जा सकती है।
1: और स्वास्थ्य में जो है सकारात्मक सुधार हो सकता है अगर आप अपनी आदतों को सुधार लें। कुछ आम बीमारियां और उनसे जो जुड़ी आदतें हैं वो हम कुछ इस पर चर्चा कर सकते हैं ऋतु। जैसे कि मधुमेह है, अब रात को देर से भोजन करने से रक्त शर्करा का स्तर असंतुलित हो जाता है, जिससे शरीर में इंसुलिन का प्रभाव घटता है। इससे शुगर का नियंत्रण करना कठिन हो जाता है। बेहतर होगा कि रात का खाना 8-9 बजे तक खा लें, हल्का खाना ही खाएं, खाने के बाद कुछ देर तक जरूर टहलें।
0: बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है मिता। और एक जो हमारे जीवन शैली से जुड़ी बीमारी है वो माइग्रेन, जो भोजन छोड़ने माइग्रेन के लक्षणों को बढ़ा सकता है। समय पर पोषण न मिलने से ब्लड शुगर का स्तर गिरता है और सरदर्द बढ़ सकता है। नियमित और संतुलित भोजन माइग्रेन को काबू रखने में सहायक होता है। और माइग्रेन के दर्द से, माइग्रेन के पेन से आजकल आम लोग ग्रसित होते जा रहे हैं।
1: बहुत, अरे बच्चे भी शिकायत करने
0: बच्चे
1: लगे
0: भी शिकायत
1: हैं।
0: करते
1: बच्चे अक्सर कहेंगे इधर दर्द हो रहा, उधर दर्द हो रहा। कारण तो बहुत कुछ होता है। उनका मोबाइल पर बहुत ज्यादा समय देना भी एक वजह हो सकता है। और अगर हम हृदय रोग की बात करें ऋतु, तो शारीरिक निष्क्रियता दिल की बीमारियों का बड़ा कारण है। नियमित व्यायाम ना करने से मोटापा, उच्च रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। रोजाना कम से कम 30 मिनट का हल्का या मध्यम व्यायाम आप जरूर करें। आप सैर भी कर सकते हैं अपने मुताबिक,
0: अपने
1: जो भी समझ में आए,
0: जो अच्छी बातें हैं उसको अपने दिनचर्या में आप अपने मुताबिक ढाल लें और
1: शारीरिक रूप से बस गतिशील रहे।
0: और एक बात ये भी बताते हैं मिता कि ऑस्टियोपोरोसिस, ये जो बीमारी है ना ये आजकल बहुत आम होती जा रही है। इससे ये होता क्या है कि
1: क्योंकि ये धूप से होने मतलब
0: ये विटामिन डी की कमी से हड्डियों में आने वाली कमजोरी की वजह से होती है। तो धूप से जो पूरी तरह जो बचना शरीर में विटामिन डी की कमी को बढ़ाता है, जिससे हड्डियां कमजोर होती है। रोज सुबह की शुरुआती धूप में 15 मिनट समय बिताएं और कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थों को अपने आहार में शामिल करें।
1: होता ये है कि सुंदरता की वजह से भी सोचते हैं कि नहीं धूप में निकलेंगे कम हो जाएगा, लेकिन शारीरिक जो नुकसान हो रहा है उस पर ध्यान नहीं दे पाते।
0: और हर समय हम घर के अंदर रहते हैं, एसी चला के रहते हैं, तो
1: घर से बाहर निकले तो छाता गाड़ी, तो फिर आपको धूप लगी कहाँ। और देर से उठना भी एक वजह हो जाती है,
0: बहुत बड़ी वजह है।
1: सुबह उठेंगे तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा टहलेंगे, प्रकृति का नजारा लेंगे, तो धूप का थोड़ा बहुत आपके ऊपर असर आएगा
0: ही।
1: लेकिन आप देर तक सोए रहेंगे तो तेज धूप तो वैसे भी नुकसानदेह होता है। धूप तो फायदेमंद सुबह की ही होती है। तो आप अगर देर से उठेंगे और तीखी धूप में चले जाएंगे तो आपको सनबर्न होगी। तब तो फायदे की जगह नुकसान होगा।
0: और ऐसे बोलते हैं मिता कि पेट की समस्याएं भी आजकल आम होती जा रही हैं।
1: बिल्कुल, और अभी तो बारिश का मौसम है।
0: जैसे कि हम होता क्या है कि हम पानी पर्याप्त नहीं पीते हैं, उससे कब्ज और एसिडिटी, ऐसी समस्याएं होती हैं। तो दिन भर में हमें कम से कम 8-10 ग्लास पानी जरूर पीना चाहिए। इससे पाचन क्रिया ठीक बनी रहेगी और उत्सर्जन जो शरीर का होता है वो आसानी से हो पाएगा।
1: आजकल लीवर रोग भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। और इसका कारण तो आप भी जान रही हैं, बाहर के खाने, अत्यधिक तेल मसाले और प्रोसेस्ड फूड लीवर पर अतिरिक्त बोझ डाल देते हैं। इनसे परहेज करें, ताजा फल सब्जियों को प्राथमिकता दें। वैसे हम तो कहते हैं श्रोताओं कि अगर आप फलों को अपने जीवन में ज्यादा महत्व दें, अपने खान पान में ज्यादा अगर उपयोग में लाएं फल, तो आपको बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। आप तेल तो कम खाएंगे ही और फलों का जो अपना ये शुगर जो है वो फायदेमंद भी होता है। और कई ऐसे फल हैं जो आप शुगर के पेशेंट भी खा सकते हैं।
0: तो और देखिए आजकल शारीरिक के साथ साथ हम मानसिक बीमारियों के भी शिकार हो रहे हैं।
1: डिमेंशिया भी एक बहुत देखने को मिल रहा है आजकल। मतलब पहले तो बूढ़ों की बीमारी इसे कहा जाता था, लेकिन अब यंग भी चपेट में आ रहे हैं।
0: हम हमेशा हर चीज रख के इधर उधर भूल जाना और छोटी छोटी बातों का भूल जाना, ये डिमेंशिया के शुरुआती लक्षण है।
1: मानसिक निष्क्रियता
0: और लंबे समय तक टीवी देखना
1: आपकी कार्य क्षमता पर प्रभाव डालता है। और
0: अब तो स्क्रीन टाइम, हम इतना स्क्रीन टाइम बिताते हैं कि ये ऐसा होना लाजमी है,
1: लाजमी है। स्क्रीन टाइम की वजह से अनिद्रा भी हो रही है और कम सोने की वजह से जो नींद को प्रभावित कर रही है, और मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, उसके बाद एक एक्साइटमेंट होता है, एक ऐसा रासायनिक बदलाव आता है हमारे कि नींद को सुदूर चली जाती है, फिर आप रातों को जागने लगते हैं और फिर वो
0: आपके शरीर का पूरा सिस्टम बिगाड़ के रख देता है। तो अनिद्रा का शिकार भी आजकल हम होते जा रहे हैं, ये
1: चिंता भी हो रही है,
0: चिंता भी हो रही है।
1: ये भी मोबाइल,
0: जब आप रात को जगेंगे तो आपको तरह तरह की नकारात्मक विचार आपके मन में आएंगे जिससे आपकी चिंताएं बढ़ेंगी। तो ये ऐसा ही होता है मिता की, ये भी हमारी जीवन शैली का एक हिस्सा बनता जा रहा है।
1: तो आप श्रोताओं अपने आपको एक बार ध्यान से देखें कि कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं, कहाँ आपकी आदतें बिगड़ रही हैं, कहाँ आपकी आदतों में सुधार की जरूरत है। और कहते हैं ना कि आप अपना सुधार स्वयं कर सकते हैं, आप दूसरे को नहीं सुधार सकते। तो आप अपने में अगर सुधार लाएंगे तो आप अपना भला करेंगे, और जब आपको लोग देखेंगे, आपको लोग फॉलो करेंगे तो उनका भी भला हो जाएगा। आप अपना एग्जाम्पल खुद बनिए, आप लोगों के सामने अपने आप को एग्जाम्पल के रूप में रखिए कि देखिए भैया हमने ये किया तो इसके ये फायदे नजर आए। और जब अच्छे फायदे सबको दिखेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनकी भी दिनचर्या सुधरेगी, उनके भी आदतें सुधरेगी, उनकी भी लाइफ स्टाइल बदलेगी।
0: हाँ, बस छोटी छोटी बातों का हमें ख्याल रखना है, और अगर जो है
1: तो हंसते काटना है तो बस सुधर जाइए आप। और ऋतु हमें एक प्यारा सा गीत सुनवाएंगी।

0: और देखिए मीता, हंसते हंसते रास्ते तभी कटेंगे जब हम स्वस्थ रहेंगे, और जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हमें घूमने का मन तो करेगा।
1: बिल्कुल, हम मैं वहीं पर आ रही थी अभी ऋतु, कि हंसते हंसते रास्ते कटने के लिए घर से निकलना होता है।
0: हाँ,
1: तो जब आप किसी रास्ते पे चलिएगा तभी तो किसी मंजिल तक पहुंचिएगा।
0: हाँ हाँ, तो आज हम अपने श्रोताओं को कहाँ लिए चल रहे हैं घुमाने के लिए?
1: वैसे तो जगह बहुत सारी है ऋतु, हमारे अपने झारखंड में हम ये गर्व से कह सकते हैं कि हमारा झारखंड प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, नदियों झीलों तालाबों से भरपूर है। लेकिन कहते हैं ना कि अपना
0: यहाँ घूमने के बाद हमें कहीं बाहर भी निकलना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: तो ऐसा ही एक जगह महाराष्ट्र में है जिसे हम कोलाड के नाम से जानते हैं,
1: और महाराष्ट्र के ये ऋषिकेश के रूप में मशहूर है।
0: मशहूर है हाँ, क्योंकि यहाँ पानी का रोमांच है,
1: मानसून के समय और भी खूबसूरत हो जाती है ये जगह। राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध है कोलाड, अपने झरने हरी घास के मैदानों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ आप रैपलिंग, कैपिंग, कायकिंग जैसी गतिविधियां

0: सकते हैं। और ये कुंडलिका नदी है उन वो भी लोगों के लिए बड़ा आकर्षण है।
1: हाँ, और यहाँ राफ्टिंग करने का अपना ही मजा है। और यहाँ साथ ही साथ मिता कुछ किले और बांध भी हैं। कुल मिलाकर कोलाड परिवार और दोस्तों के साथ छुट्टियां बिताने के लिए एक आदर्श जगह है।
0: तो कब और कैसे जाएं ये हम अपने श्रोताओं को जरूर बताना चाहेंगे। हाँ। तो अगर आप वाटर राफ्टिंग का आनंद लेने के लिए यहाँ जाना चाहते हैं तो जून से अक्टूबर तक मानसून के दौरान आप जाएं, यानी कि ये महीना तो बिल्कुल आपके फेवर में है।
1: हाँ।
0: इन महीनों में नदी में पानी का स्तर ऊंचा होता है जिससे राफ्टिंग आनंददायक हो जाती है। और जहां तक यहां पहुंचने की बात है तो ऋतु कैसे जाएं बताएंगे आप?
1: तो जैसे आप ट्रेन से मुंबई पहुंचिए और यहां से पैसेंजर ट्रेन से रोहा पहुंचिए। यहां से कोलाड जो है वो 7 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर यहां से कोलाड बोटिंग प्वाइंट के लिए ऑटो ले लें। और मिता यहाँ ठहरने के लिए भी अच्छी अच्छी जगह है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, लग्जरी होटल है, जो रिसोर्ट भी है यहाँ पे।
1: हाँ।
0: जो आपको प्राकृतिक वातावरण भी देंगे और टेंट और कोंकणी शैली में बने कॉटेज भी मिल जाएंगे।
1: हाँ, जहाँ आप बहुत आनंद पूर्वक रहेंगे
0: प्रकृति के बीच में मिलेगा।
1: हाँ।
0: तो आप जा किस ले रहे हैं प्रकृति के बीच रहने के लिए?
1: हाँ।
0: तो और जो ऋतु खास बात यह है कि इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए भी यहाँ कुछ किले हैं।
1: हाँ, हाँ।
0: जिन्हें आप देख सकते हैं, जैसे कि सुधागढ़ किला, वचित गढ़ किला, रायगढ़ किला, मुरुद जंजीरा किला आदि। इसके अलावा तमहिनी घाट का फांसड वन्य जीव अभ्यारण भी आप जा सकते हैं।
1: हाँ, और कोलाड जैसे दूर दराज गांव में सूरज ढलने के बाद चीजें बेहद शांत हो जाती हैं। और ऐसे में अगर आप नाव से यात्रा करेंगे ना तो इसका एक अलग ही रोमांच होता है।
0: आपने तो बिल्कुल अरमान जगा दिए हैं ऋतु।
1: हाँ।
0: अब तो लग रहा है कि कब हम भी अपने परिवार के साथ यहाँ का ट्रिप प्लान करें।
1: हाँ, तो यहाँ जाइएगा तो आपको कोंकणी अंदाज की खाने की शैली आपको मिलेगी,
0: अगर आप मांसाहारी हैं तब।
1: तब हाँ, और ऐसे भी खाने का यहाँ दिक्कत नहीं है, कई जगह आपको अच्छी अच्छी थालियाँ मिलती हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो आप यहाँ एक बार घुमाइए। और
0: वैसे अगर आप कहीं और घूमने जाना चाहते हैं तो आप हमें भी जरूर बताइए। वैसे ये गाना भी सुन लीजिए आप।

0: और रितु, आज ये फुटबॉल के सबसे बड़े मंच पर दिग्गज फुटबॉलर रोनाल्डो का सफर आंसुओं के साथ खत्म हो गया। फीफा वर्ल्ड के प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। 41 वर्षीय रोनाल्डो का यह 6वां वर्ल्ड कप था। हार के बाद रोनाल्डो बेहद भावुक हो गए। उन्होंने कहा, मैं दुखी हूं, पर मैंने अपना सब कुछ दिया है और मैं साफ जमीर के साथ विदा ले रहा हूं। हालांकि रोनाल्डो ने साफ किया है कि नेशनल टीम में खेलने के लिए वो तैयार हैं।
1: बिल्कुल, तो इस वर्ल्ड कप में 17 शॉट्स लिए और एक भी गोल का मौका नहीं बना पाए। 60 वर्षों के वर्ल्ड कप इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जो कोई खिलाड़ी 17 शॉट्स लेने के बाद भी गोल का मौका नहीं बना पाया हो।
0: बिल्कुल,
1: तो चलिए रोनाल्डो को हम भी विदाई देते हैं और इनके आगे के जीवन के लिए इन्हें शुभकामनाएं
0: देते हैं और अपने श्रोताओं से भी हम यहीं पर विदा लेना चाहेंगे।
1: तो जोहार रांची से अपने श्रोताओं को हम कहते हैं
0: जोहार, नमस्कार।

अभी हम सुन रहे थे हमारा दैनिक प्रसारण चौहार रांची, आकाशवाणी के रांची केंद्र से हम बोल रहे हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण।

अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: स्वयं ही घट पड़े भारतीय सेना।
1: आकाशवाणी के रांची केंद्र से आइए अब सुनते हैं आपके पसंदीदा फिल्मी नगमों का कार्यक्रम आपकी पसंद। आपकी पसंद की ये पहली फरमाइश औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश। आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमड़खेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत ग्वांडकर राही, श्रीमती सरिता ग्वांडकर, प्रिंस एकांश ग्वांडकर। बदलापुर मुंबई से सिद्धांत ग्वांडकर, प्रणीता ग्वांडकर, अर्जुन ग्वांडकर। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश ग्वांडकर, सुमित ग्वांडकर और कुमारी ध्वनि ग्वांडकर परी। आप सबों ने सुना चाहा है किशोर कुमार की आवाज में फिल्म कल आज और कल का ये गाना।

और अब इन श्रोताओं की फरमाइश आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और निवान शर्मा, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मिका, बलविंदर विरक, जैतेक विरक और मिका विरक, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश रॉय, श्रीमती उषा रॉय, अमित कुमार राय और हैप्पी रॉय, दुबिहा निवादा गाजीपुर से प्रतीक रॉय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय, शेरपुर कलां गाजीपुर से अवधेश रॉय, श्रीमती प्रीति रॉय और नवनीत रॉय। आप सबों ने सुनना चाहा है लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज में फिल्म तेरी कसम का ये गाना।

श्रोता सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा फिल्मी नगमों का कार्यक्रम आपकी पसंद। आइए सुनिए इनकी फरमाइश। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और छावेंद्र कुमार वर्मा। महादेवघाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रयांश ठाकुर। आप सबों ने सुना चाहा है फिल्म प्यार का।

जदुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख और फिरोज आलम और चांदनी नाज, बड़ा बॉम्बे सुपाई साइन से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा, प्रकाश तांती, श्याम देव नायक और ललिता प्रधान, चक्रधरपुर ग्राम गेलिया लोहर से कोमल बेसरा, बासंती बनमाली बेसरा और सिद्ध कुमारी, जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, सिराजपुर गणेशपुर से हिना कौसर, मोहम्मद वकील राही, फिरोज आलम और नाज प्रवीण। आप सबों ने सुनना चाहा है फिल्म दो रास्ते का ये गाना मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में।

लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, रिंगनी से दिनेश वर्मा, भिलाई से मुकेश शर्मा और दतरेंगी से भागवत वर्मा,

0: बहनों नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में, जहां हम बात करते हैं आपके घर, आपके जीवन और आपसे जुड़ी हर छोटी बड़ी बातों की, जो आपके जीवन को और भी सुंदर, सुरक्षित और खुशहाल बनाती है। और कार्यक्रम के आज के सफर में आपके साथ हैं हम तो सखियां, मैं रानी
1: और मैं वंदना। स्वीकार कीजिए बहनों मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है कि आप सभी बहनें स्वस्थ होंगी, प्रसन्न होंगी और अपने परिवार के साथ इस रिमझिम बारिश के खूबसूरत मौसम का आनंद भी उठा रही होंगी।
0: बिल्कुल सही कहा वंदना, बारिश की रिमझिम फुहारें जब धरती को छूती हैं तो सिर्फ धरती ही नहीं महकती, महक उठती है यादें, रिश्ते और घर आंगन की रौनक भी।
1: हाँ, बरसता पानी, मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू और चारों ओर फैली हुई हरियाली और मन में ताजगी का एक अनोखा एहसास। बारिश का मौसम तो सचमुच अपने साथ ढेर सारी खुशियां लेकर आता है।
0: लेकिन बहनों, इसी खूबसूरत मौसम के साथ कुछ जरूरी जिम्मेदारियां भी जुड़ जाती हैं कि हम अपने घर की देखभाल कैसे करें और अपने परिवार को इस मौसम में सुरक्षित कैसे रखें।
1: हाँ बहनों, बारिश का मौसम जितना मन को सुकून देता है उतना ही ये घर के लिए चुनौतियां भी लेकर आता है। कहीं दीवारों पर नमी, कहीं फर्श पर फिसलन, तो कहीं रसोई और सामान में सीलन की समस्या, साथ ही गंदगी और मच्छरों की समस्या।
0: हाँ बिल्कुल, और अगर समय रहते इन पर ध्यान ना दिया जाए तो ये छोटी छोटी समस्याएं ही बड़ी परेशानी का रूप ले सकती हैं और हमारी बहनें अनावश्यक रूप से परेशान हो सकती हैं वंदना।
1: हाँ लेकिन बहनों, ऐसा तो हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, क्योंकि हमें पता है कि घर सिर्फ चार दीवारों का नाम नहीं होता, ये हमारी सुरक्षा है और हमारी मेहनत का परिणाम है,
0: हमारे अपनों के प्यार से बुना हुआ हमारे सपनों का सुंदर संसार है। और जब मौसम बदलता है तो घर की देखभाल का तरीका भी बदलना चाहिए।
1: जरूर,
0: थोड़ी सी समझदारी, थोड़ी सी सावधानी और सही उपायों के साथ बारिश में भी आप अपने घर को सुरक्षित, स्वच्छ और सुंदर बनाए रख सकती हैं बहनों।
1: जरूर, और इसके लिए सबसे जरूरी बात है बहनों कि अपने घर की नियमित साफ सफाई का ध्यान रखना, खासकर इस मौसम में जब नमी और सीलन की समस्या बढ़ जाती है, तब थोड़ी अतिरिक्त देखभाल भी जरूरी हो जाती है।
0: हाँ, अक्सर हम सोचते हैं बहनों कि वीकेंड पर एक साथ सफाई कर लेंगे, लेकिन सच तो ये है कि रोज थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर सफाई करने से काम आसान भी हो जाता है और घर भी हमेशा साफ रहता है। क्यों वंदना?
1: एकदम सही कहा रानी तुमने। चलिए अब बात करते हैं कि घर की छत और दीवारों की यदि कहीं से पानी के रिसने की आशंका हो तो समय रहते उसकी मरम्मत हमें करनी चाहिए और छोटी सी लापरवाही जो है वो आगे चलकर बड़ी समस्या बन जाती है।
0: बिल्कुल, घर में नमी और सीलन से बचने के लिए खिड़कियां समय समय पर खोलें ताकि ताजी हवा के साथ साथ रोशनी का आवागमन भी बना रहे। पता है वंदना, इससे न केवल घर का माहौल हल्का और सुखद बनता है बल्कि बैक्टीरिया और फंगस से भी बचाव होता है।
1: एकदम सही कहा रानी कि जब भी अच्छी धूप निकले तो कपड़ों के साथ साथ गद्दों और तकियों को भी हमें धूप में देना चाहिए, इससे उनमें जो नमी होती है या बदबू होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है।
0: हाँ, और बरसात में मच्छरों और कीड़े मकोड़ों का प्रकोप भी बढ़ जाता है, तो इनसे बचने के लिए घर के आसपास या फिर गमलों में भी पानी जमा ना होने दें, पानी की टंकियों को ढक कर रखें और घर के आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें।
1: हाँ रानी, तो चलिए अब बात करते हैं कि घर के उस हिस्से की जहाँ से पूरे परिवार की सेहत जुड़ी होती है, यानी कि हमारी रसोई। बारिश के मौसम में रसोई की साफ सफाई पर थोड़ा अधिक हमें ध्यान देना जरूरी हो जाता है।
0: बिल्कुल, क्योंकि नमी के कारण खाने पीने की चीजें जल्दी खराब हो सकती हैं, इसलिए अनाज, दालें और मसालों को हमेशा साफ, सूखे और अच्छी तरह बंद एयर टाइट डिब्बों में ही रखें बहनों, ताकि उनमें नमी ना पहुंचे और वे लंबे समय तक सुरक्षित रहें।
1: हाँ, और इसके साथ खाने पीने की चीजों को हमें ढक कर रखना चाहिए और कोशिश करें कि परिवार को ताजा और गर्म भोजन ही परोसे। रसोई के सिंक, किचन स्लैब और डस्टबिन की भी रोज हमें अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए ताकि नमी के कारण वहाँ बैक्टीरिया और दुर्गंध न पनपे।
0: बिल्कुल सही कहा वंदना, बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल करते समय भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है बहनों। इस समय हाथ सूखे रखें, गीले हाथों से कभी भी स्विच या प्लग को ना छुएं, किसी भी बिजली के तार या उपकरण में खराबी हो तो उसे तुरंत ठीक कराएं। याद रखिए बहनों, हमारी थोड़ी सी सावधानी ही हमें बड़ी परेशानियों से बचा सकती है।
1: घर में कहीं भी पानी जमा ना होने दे। बरसात में अक्सर फर्श गीला और फिसलन भरा हो जाता है, जो बच्चों, बुजुर्गों और आपके लिए भी जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए फर्श की नियमित सफाई कर उसे सूखा रखें और मुख्य दरवाजे पर बेकिंग डोरमेट बिछाएं जो रबड़ का आता है,
0: हाँ हाँ,
1: ताकि फिसलन ना हो।
0: बिल्कुल, इससे बाहर का पानी और गंदगी घर के अंदर कम आएगी बहनों, और फिसलने का खतरा भी काफी कम हो जाएगा। और वहीं पता है वंदना, लकड़ी के फर्नीचर मानसून के दौरान हवा में नमी बढ़ने से सबसे जल्दी प्रभावित होते हैं, इसलिए फर्नीचर को भी नियमित रूप से सूखे कपड़े से पोछे ताकि उस पर नमी जम ना पाए।
1: एकदम सही कहा रानी। और इन सब के अलावे हमें इन सब बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, खासकर कि व्यक्तिगत स्वच्छता का।
0: हाँ बिल्कुल
1: बहनों, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगी तभी तो पूरे घर की देखभाल हम अच्छे तरह से कर पाएंगे।
0: हाँ बिल्कुल, याद रखिए बहनों, एक स्वच्छ घर, स्वस्थ परिवार और एक मुस्कुराती हुई गृहिणी, यही खुशहाल जीवन की सबसे सुंदर पहचान है। और इसी सुंदर सोच और मुस्कान के साथ वंदना, अब सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: तो चलिए बहनों, आपका फिर से स्वागत है हमारे कार्यक्रम विलक्ष्मी में।
2: और बहनों, घर की देखभाल जितनी जरूरी है उतना ही जरूरी होता है अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, क्योंकि बदलते मौसम में जरा सी लापरवाही कई समस्याओं को न्योता दे सकती है। और इन्हीं बातों को और बेहतर ढंग से समझने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए भेंट वार्ता, बदलते मौसम में कैसे रखें सेहत का ख्याल। इस विषय पर हमें जानकारी दे रही हैं पुष्पांजलि जगाती और इनसे बातचीत कर रही हैं आपकी रेडियो सखी वंदना राय।
3: बदलता हुआ मौसम वह समय होता है जब एक मौसम से दूसरे मौसम में परिवर्तन होता है, जैसे कि गर्मी से बारिश या बारिश से सर्दी। इस दौरान तापमान, नमी और वातावरण में बदलाव के कारण हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है और बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। तो चलिए आज हम इसी के बारे में जानकारी करेंगे कि बदलते हुए मौसम में हमें अपने सेहत का ध्यान कैसे रखना चाहिए, और इसके बारे में हमें बताएंगे पुष्पांजलि जगाती। तो पुष्पांजलि जी, सबसे पहले आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो पुष्पांजलि जी, सबसे पहले आप हम बहनों को बताएं कि बदलते हुए मौसम का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है।
4: बदलते मौसम के कारण तापमान और नमी में अचानक उतार चढ़ाव होता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकता है। इससे वायरल संक्रमण जैसे सर्दी, जुकाम, फ्लू, एलर्जी और अस्थमा के दौरे का खतरा बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ लोगों को जोड़ों के दर्द और मानसिक तनाव का भी अनुभव होता है। श्वसन संबंधी समस्याएं भी होती हैं। मौसम के बदलने से हवा में नमी और प्रदूषण का स्तर बदलता है, जिससे सांस लेने में तकलीफ और अस्थमा जैसी बीमारियां ट्रिगर हो सकती हैं। वायरल संक्रमण की वजह से फ्लू भी होता है। तापमान की तेजी से बदलने पर शरीर जल्दी ढल नहीं पाता, जिससे गले में खराश, खांसी और बुखार जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। त्वचा में एलर्जी, अचानक गर्मी या नमी बढ़ने से त्वचा पर रैशेस, खुजली और एक्जिमा की समस्या बढ़ जाती है। हृदय और रक्तचाप, अत्यधिक ठंड या गर्मी से ब्लड प्रेशर में अचानक बदलाव आ सकता है, जिससे हृदय रोगियों पर दबाव पड़ता है। मानसिक स्वास्थ्य, मौसम परिवर्तन विशेषकर धूप की कमी से मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित होता है, जिससे कुछ लोग अवसाद या मौसमी भावात्मक विकार का शिकार हो जाते हैं।
3: मौसम बदलने पर सबसे अधिक कौन सी बीमारियां होने का खतरा होता है, और मौसम बदलने पर हमें अपने खान पान में क्या बदलाव करना चाहिए।
4: बदलते मौसम के कारण शरीर को नए तापमान के अनुसार ढलने

0: आंखों में जलन, छींक आना और अस्थमा के मरीजों की सांस फूलने की समस्या बढ़ जाती है। बदलते मौसम में तापमान और नमी के उतार चढ़ाव से वायरल फीवर आम हो जाता है। इसके साथ ही यदि मौसम में बारिश शामिल हो तो मच्छरों के पनपने से डेंगू और मलेरिया के प्रकोप भी बढ़ जाते हैं। मौसम के संक्रमण के दौरान भोजन जल्दी दूषित होता है और इसके कारण डिहाइड्रेशन, पेट दर्द, दस्त और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। बदलते मौसम में विशेषकर गर्मी से बरसात शरीर को नए तापमान के अनुसार ढलने में समय लगता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप सबसे अधिक सर्दी, जुकाम, वायरल बुखार, फ्लू, मौसमी एलर्जी और पेट के संक्रमण जैसे डायरिया और फूड पॉइजनिंग होते हैं। अचानक तापमान बदलने के कारण राइनो वायरस और इन्फ्लुएंजा जैसे वायरस आसानी से फैलते हैं। इसके मुख्य लक्षणों में नाक बहना, गले में खराश, हल्का बुखार और थकान शामिल है। मौसम बदलने पर हवा में परागकण, धूल के कण और फफूंद बढ़ जाते हैं। इसके प्रभाव से आंखों में जलन, छींक आना और अस्थमा के मरीजों की सांस फूलने की समस्या बढ़ जाती है। बदलते मौसम में तापमान और नमी के उतार चढ़ाव से वायरल फीवर आम हो जाता है। इसके साथ ही यदि मौसम में बारिश शामिल हो तो मच्छरों के पनपने से डेंगू और मलेरिया के प्रकोप भी बढ़ जाते हैं। मौसम के संक्रमण के दौरान भोजन जल्दी दूषित होता है और इसके कारण डिहाइड्रेशन, पेट दर्द, दस्त और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं।
1: बदलते हुए मौसम में हमें बच्चों और बुजुर्गों को कौन सी विशेष सावधानियां रखनी चाहिए और क्या हमें इस मौसम पर नियमित व्यायाम करना आवश्यक है और क्यों?
0: बदलते मौसम में विशेषकर गर्मी से बरसात या ठंड में बदलाव में बुजुर्गों और बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। उन्हें संक्रमण से बचाने के लिए खान पान में शुद्धता, नियमित हाइड्रेशन और तापमान के अनुसार सही कपड़ों का चुनाव जैसा विशेष सावधानियां रखनी चाहिए। खान पान और हाइड्रेशन में भरपूर पानी पिए, शरीर में पानी की कमी न होने दें। बच्चों और बुजुर्गों को सादे पानी के अलावा नारियल पानी, नींबू पानी और ORS देते रहें। बाहर के खाना खाने से बचें। बदलते मौसम में पेट खराब होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। सड़क किनारे का खाना, कटा हुआ फल और बासी भोजन करने से बचें। जी हाँ, मौसम के परिवर्तन के दौरान नियमित व्यायाम करना भी जरूरी होता है। यह बदलते तापमान और नमी के कारण शरीर को होने वाले नुकसान जैसे कि जोड़ों में अकड़न या सुस्ती से बचाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। बदलते मौसम में लोग अक्सर सर्दी, खांसी या वायरल संक्रमण की चपेट में आ जाते हैं। नियमित रूप से व्यायाम करने में शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है, जिससे मैक्सिमम हेल्थ केयर के अनुसार रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। व्यायाम करने से ऊर्जा और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। मौसमी बदलाव से कई बार आलस, थकान या मनोदशा प्रभावित होती है। द वेलनेस कॉर्नर के अनुसार व्यायाम करने में शरीर में एंडोर्फिन, खुशी देने वाला हार्मोन का स्तर बढ़ता है।
1: इस मौसम में नींद का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्या घरेलू उपाय से हम अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने में सफल हो सकते हैं?
0: बदलते मौसम में तापमान, दिन की लंबाई और प्राकृतिक रोशनी में बदलाव होता है, जो शरीर की आंतरिक घड़ी, सर्कैडियन रिदम और मेलाटोनिन, नींद का हार्मोन को प्रभावित करते हैं। इससे नींद की अवधि, गुणवत्ता और समग्र स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। विभिन्न मौसमों के अनुसार नींद और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव जो होते हैं वो इस तरह है, जैसे कि गर्मी का मौसम, अत्यधिक गर्मी और उमस से शरीर का तापमान कम नहीं होता, जिससे नींद में बार बार खलल पड़ता है और अनिद्रा की समस्या हो सकती है। देर तक धूप रहने से हार्मोन का संतुलन बिगड़ सकता है। बारिश और नमी में

0: इस मौसम में धूप की कमी के कारण शरीर में सुस्ती और थकान महसूस हो सकती है। इन सबसे बचने के उपाय में जो है, सोने के लिए कमरे का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रखें। मौसमी अनिद्रा को समझने के लिए स्लीप वेलनेस पर लेख पढ़ें। सर्दियों में कम धूप से निपटने और नींद के पैटर्न में सुधार के लिए प्रीमियर मेडिकल से सलाह लें। गर्मियों में सोने में होने वाली दिक्कत और स्लीपिंग डिसऑर्डर को दूर करने के तरीकों के लिए आर्लिंगटन के हृदय रोग क्लिनिक की जानकारी देखें। यदि बदलाव के कारण लगातार नींद में दिक्कत हो रही है तो विशेषज्ञ से परामर्श जरूर लें। सर्दी या खांसी और भी वायरल संक्रमण से बचने के लिए अपने हाथों को साबुन पानी से 20 सेकंड तक बार बार धोएं। चेहरे या मुंह को छूने से बचें। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर मास्क पहने और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रखने के लिए पौष्टिक आहार व पर्याप्त नींद लें। बीमारी और संक्रमण से बचाव व राहत के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता करनी भी जरूरी है, जैसे कि घर आने के बाद और भोजन करने से पहले हाथों को अच्छे से साफ करें। यदि साबुन पानी उपलब्ध ना हो तो कम से कम 60% अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। बदलते मौसम में हमारे पाचन और रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होती है। स्वस्थ रहने के लिए हमेशा ताजा, हल्का और सुपाच्य भोजन करें। अपनी डाइट में अदरक, जीरा, हल्दी जैसे मसालों के साथ मौसमी फल और सूप शामिल करें। ठंडे पानी की जगह गुनगुना पानी पिएं और बाहर के तले भुने खाने से बचें। बरसात और नमी के मौसम में पाचन क्रिया कमजोर हो जाती है, इसलिए मूंग की दाल, खिचड़ी, उबली हुई सब्जियां जैसे लौकी, तोरई और पपीता जैसे आसानी से पचने वाले फल खाएं। सर्दियों के मौसम में शरीर को गर्म और ऊर्जावान रखने के लिए बाजरा, मक्का, मौसमी हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, तेल और नट्स जैसे बादाम, अखरोट को अपने आहार में शामिल करें। इसके अलावा अदरक और तुलसी वाली चाय या काढ़ा इम्यूनिटी बढ़ाता है।
1: और आखिरी में एक सवाल कि हमें इस मौसम में डॉक्टर से सलाह कब लेना चाहिए?
0: अगर आपको 2 से 3 दिन से ज्यादा तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द या बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। डॉक्टर से परामर्श करना तब और भी जरूरी हो जाता है जब खांसी, गले में खराश या बलगम लगातार बढ़ता जाए और घर के बने नुस्खों जैसे कि काढ़ा, भाप आदि से भी राहत न मिले।
1: तो पुष्पांजलि जी, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहनों, अभी आप सुन रही थी भेंटवार्ता, बदलते मौसम में कैसे रखें सेहत का ख्याल, इस विषय पर। और भेंटवार्ताकार थी पुष्पांजलि जगाती और जिनसे बातचीत कर रही थी आपकी रेडियो सखी वंदना राय। और वंदना, अब आगे क्या इरादा है?
3: चलिए सुनते हैं, जानकारी करते हैं कि हर मौसम की अपनी एक खास खुशबू होती है, स्वाद होता है। गर्मियों में आम की मिठास, सर्दियों में गाजर के हलवे की महक और बारिश के मौसम में आती है अदरक वाली चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े की याद।
2: बात तो बिल्कुल पते की है वंदना, क्योंकि जब आसमान से बूंदे बरसती हैं तो खिड़की के पास बैठकर बारिश देखना, वो भी हाथों में अदरक इलायची वाली चाय और गर्मा गर्म कुरकुरे पकौड़ों के साथ, तो फिर मौसम का आनंद तो भाई कई गुना बढ़ जाता है।
3: एकदम सही कहा, बारिश का मौसम और पकौड़ों का रिश्ता तो काफी पुराना होता है। इस मौसम में पकौड़े सिर्फ एक व्यंजन नहीं होते बल्कि एक प्यारी सी परंपरा बन जाती है। और इसी स्वाद भरी परंपरा को ध्यान में रखते हुए आज हम बहनों के लिए लेकर आए हैं अलग अलग तरह के स्वादिष्ट पकौड़ों की जानकारी, जो बारिश के इस मौसम को भी और खास बना देंगे। लेकिन इसकी जानकारी हम करेंगे इस सुंदर से गाने के बाद में।
2: जी।

0: हाँ तो बहनों, इस सुंदर गीत से पहले हम जानकारी कर रहे थे कि इस बारिश के मौसम और पकोड़ों के बारे में। तो चलिए जानते हैं तरह तरह के पकोड़े बनाने की विधि के बारे में। तो पकोड़े बनाने के लिए हमें सबसे पहले जरूरी होता है बेसन का, और अच्छा और स्वादिष्ट घोल उसका बनाना चाहिए, क्योंकि अगर घोल सही तैयार हो जाए तो पकौड़े भी बनते हैं स्वादिष्ट और एकदम कुरकुरे।
1: बिल्कुल। और इसके लिए सबसे पहले एक बर्तन में बेसन लें, उसमें स्वादानुसार नमक, थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन, हरी मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया मिला ले। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए ऐसा घोल तैयार करें जो न बहुत पतला हो और न बहुत गाढ़ा।
0: हाँ, अब इस घोल को हम कुछ मिनट के लिए रख देंगे ताकि बेसन अच्छी तरह से फूल जाए। जब तैयार है पकौड़ों का स्वादिष्ट घोल, अब इस एक ही घोल से हम बना सकते हैं कई तरह के स्वादिष्ट पकौड़े, जैसे कि प्याज के पकौड़े। बारिश की पहली पसंद है प्याज के पकौड़े। प्याज के पतले पतले स्लाइस में हम उसे काट लेंगे और इस घोल में मिला देंगे और गर्म तेल में तलेंगे, वो भी एकदम धीमी धीमी आंच पर, सुनहरे और कुरकुरे होने तक।
1: हाँ, और इसी तरह आप आलू के पकौड़े भी तैयार कर सकती हैं बहनों, जिसका स्वाद बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आता है। अगर आप स्वाद के साथ सेहत चाहती हैं तो पालक पकौड़े, पनीर के पकौड़े भी एक बेहतरीन विकल्प हैं।
0: फूलगोभी के पकोड़े, बैंगन के पकोड़े, ये भी हम बना सकते हैं। अगर आपको तीखा पसंद है तो मसालेदार मिर्च के पकोड़े भी बारिश की शाम को और मजेदार बना देते हैं।
1: हाँ, और जब बात हो झटपट बनने वाले नाश्ते की, तो ब्रेड पकोड़े सबसे आसान विकल्प हैं और स्वादिष्ट भी। मसालेदार आलू की फिलिंग के साथ आप इसे तैयार कर सकती हैं बहनों।
0: हाँ, और वही मूंग दाल के पकौड़े स्वाद के साथ पौष्टिकता भी देते हैं बहनों। इसके लिए सबसे पहले मूंग दाल को कुछ देर हम भिगो कर रखेंगे और फिर इसे अदरक और हरी मिर्च के साथ दरदरा पीस लेंगे।
1: हाँ, अब इस मिश्रण में स्वादानुसार नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हरा धनिया मिलाकर गर्म तेल में मध्यम आंच पर छोटे छोटे पकौड़े डालकर सुनहरे और कुरकुरे होने तक तल लें। क्यों वंदना?
0: एकदम सही बात है। तो इतने सुंदर सुंदर पकौड़े आप घर में बना सकती हैं, खा सकती हैं और अपने घर वालों को खिला सकती हैं और बारिश का मजा भी ले सकती हैं। तो रानी, अब तो हमारे जाने का समय हो गया है।
1: हाँ हाँ,
0: तो अगले कार्यक्रम में फिर हम बहनों के साथ भेंट करेंगे,
1: बातें करेंगे। और जाने से पहले बहनों, आपको बता दें कि आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति

0: गौरव कुमार पांडे की अब अपनी सखियों रानी
1: और वंदना को दे विदा।
0: नमस्कार।
2: गृह लक्ष्मी।

0: मैंने सुन रही थी अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी। आज की गृहलक्ष्मी संपन्न हुई। आकाशवाणी के रांची केंद्र से हम बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में हम सुनेंगे फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम। फिल्म संगीत के कार्यक्रम के पहले सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: स्वयं ही घट पड़े भारतीय सेना।
1: और आइए अब सुने फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम। सबसे पहले सुनते हैं फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल हैं और इन बोलों को सुर में पिरोया है राहुल देव परमन ने।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार को एक बार फिर सुनते हैं फिल्म दो चोर में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और राहुल देव बर्मन का संगीत।

आइए सुने लता मंगेशकर के साथ मुकेश को फिल्म चुपके चुपके में। आनंद बख्शी के बोल हैं और सचिन देव बर्मन का संगीत।

अब जो गीत हम आपको सुनवाएंगे उसे संगीत से सवारा है रोशन ने, बोलो को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, और इस गीत को हमने लिया है फिल्म आरती से।

आप आए बाहर आई। इस फिल्म का गीत अब हम सुनेंगे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: फिल्म संगीत संपन्न हुआ।
1: समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इंडोनेशिया के योग्यकार्ता स्थित प्रामानन मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उनके लिए विशेष महत्व रखता है और इसके विकास की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उन्हीं पर है। श्री मोदी ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इन परियोजनाओं में योगदान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
2: यहाँ पर आकर के करीब करीब 1200 साल पुराना ब्रह्मा विष्णु महेश इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार

0: और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ।
1: प्रधानमंत्री तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। भारत वस्तु समझौते से संबंधित 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति की नई दिल्ली में बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना है। संयुक्त समिति की बैठक और उससे जुड़ी बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 10 जुलाई तक जारी रहेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि संयुक्त समिति ने उप समितियों को उनके संबंधित कार्यक्षेत्र के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन दिया और उनसे लंबित मुद्दों को शीघ्र अंतिम रूप देने को कहा है। इन बैठकों से भारत और आसियान के बीच सहयोग और आपसी समझौता मजबूत होगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा ओडिशा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल ओडिशा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर के शोपिया के चानापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव बरामद हुआ और उसकी पहचान की जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बातचीत की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। केरलम सरकार ने वायनाड भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की दो टीम भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद हैं। 5 लोग अब भी लापता हैं और तलाशी अभियान जारी है। इस बीच केरलम में 11 जिलों में तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड जिले में बारिश की तीव्रता में कमी आई है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह बारिश हुई। होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर ताजा हवाई हमले किए। अमेरिका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा है कि हमलों में ईरानी वायु रक्षा प्रणाली, कमान और नियंत्रण केंद्रों, तटीय रडार स्थलों, जहाजरोधी मिसाइल प्रणालियों और होर्मुज जलडमरू मध्य तथा उसके आसपास स्थित इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की 60 से अधिक नौकाओं को निशाना बनाया गया। ईरान ने हमलों की पुष्टि करते हुए कहा है कि बंदर अब्बास, केशम और सिरिक में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज 0.8% की गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi today said that he considers it his good fortune to have had repeated opportunities to connect with Lord Shiva at various sacred sites. Addressing at the Prambanan Temple in Yogyakarta, Indonesia, the Prime Minister said he was born in Vadnagar, home to Hatkeshwar Mahadev, and that the Somnath Jyotirling in Gujarat, the first among the 12 Jyotirlings, holds special significance with him having direct responsibility for its development. Mr. Modi also noted that his parliamentary constituency, that is Kashi, Varanasi, is home to Kashi Vishwanath Mahadev, whose blessings, he said, have always guided him. Referring to the redevelopment of the Kedarnath Temple and the Mahakaleshwar Temple in Ujjain, the Prime Minister said he had the privilege of contributing to these projects. He added that his visit to the Prambanan temple had also given him the opportunity to initiate renovation efforts, describing it as a matter of great fortune.
0: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
2: The Prime Minister has since departed for Australia. In the second leg of his three-nation tour, Prime Minister Modi will reach Melbourne today on a three-day visit where he will participate in the third India-Australia annual summit with the Australian Prime Minister Anthony Albanese. Mr. Modi will also participate in the India-Australia CEOs Forum where he will address a gathering of top business leaders from both the countries. Mr. Modi will also address a large gathering of the Indian diaspora. The Enforcement Directorate is conducting search operations at five premises in Delhi, NCR, in connection with the ongoing investigations into three cases involving cheating of home buyers through subvention schemes. The investigation conducted by CBI revealed that the builders have cheated the home buyers and investors in the name of subvention schemes. It is further revealed that the builders floated no EMI till possession schemes whereby the home buyers availed housing loans and booked flats. However, even after the lapse of several years, possession of the flats has not been delivered to them, causing wrongful loss to the home buyers. Union Home Minister Amit Shah today spoke to Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis regarding the heavy rainfall and flood-like situation in the state. During the conversation, Mr. Shah assured the Chief Minister of all possible assistance from the central government to support the Maharashtra government in dealing with the situation. Several parts of Maharashtra have been affected by heavy rainfall over the past few days. In Jammu and Kashmir, police today said that one terrorist has been killed in an encounter with security forces in Chanapura area of Shopian. Police said that the operation was conducted jointly with Army and the CRPF. Talking to Akashwani News, Inspector General of Police V.K. Birdi said a body has been found with arms and ammunition at the spot and the identity is being ascertained. Iran has launched retaliatory strikes on U.S. military installations following the U.S. attacks on its Hormuzgan province and the port city of Mashhad. According to Iranian media, the Islamic Revolutionary Guard Corps, Navy and Aerospace Forces carried out a joint missile mission while Bahrain's Ministry of Interior has urged residents to take shelter after warning sirens sounded across the country. Earlier, the U.S. carried out a fresh round of airstrikes on Iran, targeting more than 80 locations in response to Iran's latest attacks on commercial ships passing through the Strait of Hormuz. In football, Switzerland beat Colombia 4-3 in a penalty shootout in Vancouver to reach the quarterfinals of FIFA World Cup for the first time since 1954. In another round of 16 match, Argentina defeated Egypt 3-2 in Atalanta to enter the quarterfinals of the tournament. With this win, Argentina will play against Switzerland in the quarterfinals. And that is the end of this news bulletin.
3: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नैन्सी कुमारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने शुरू की प्रगति परियोजना, झारखंड समेत 8 राज्यों के 20 लाख किसानों को मिलेगा सीधा लाभ। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ आज रांची को देंगे बड़ी सौगात, 2 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत रांची जिले की 3.5 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में 3 महीने की राशि एक मुश्त हस्तांतरित। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट को डीवीसी के स्थापना दिवस पर मिले 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ उत्पादन स्टेशन और ग्रीन प्लांट ऑफ द ईयर से सम्मानित। और जमशेदपुर के चर्चित डीडी बार हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मैनेजर समेत 3 और आरोपी हथियार के साथ गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने झारखंड, बिहार और

0: पश्चिम बंगाल समेत 8 राज्यों में प्रगति परियोजना की शुरुआत की है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य देश के 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है।
1: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान, उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके, छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं, जो एक गाँव में काम करते हैं और गाँव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
0: रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ आज रांची में 2 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। वे आज मधुकम में 1,87,00,000 रुपए की लागत से बनने वाली आरसीसी नाली और सड़क कालीकरण का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा हाथमा में 34,00,000 रुपए की लागत से आयुष्मान आरोग्य मंदिर की आधारशिला रखेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नई दिल्ली में आज से आयोजित 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन सम्मेलन को राज्य में निवेश बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इस पहल से देश विदेश के बड़े निवेशकों को आकर्षित करने और युवाओं के लिए रोजगार सृजन में मदद मिलेगी।
2: हम लोगों ने तो देखा है हाथी उड़ाने वाली सरकार भी, हम लोगों ने देखा है नौकरियों देने के नाम पर करोड़ों करोड़ों की लूट हुई और नौकरियां मिलती थी एटीएम में गार्ड। तो पहली बार एक ईमानदार सरकार पिछले 6-6.5 वर्षों में और जिस सोच के साथ माननीय हेमंत जी आगे बढ़ रहे हैं, निसंदेह झारखंड राज्य अग्रणी राज्य, जो अगुआ राज्य है, विकसित राज्य है, उस श्रेणी में अग्रिम पंक्ति में होंगे।
0: वहीं भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने पलटवार करते हुए कहा कि ध्वस्त कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के बीच सरकार दिल्ली में सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट कर रही है।
3: यहाँ के स्थानीय आदिवासी मूलवासियों को रोजगार मिले, लेकिन मुख्यमंत्री जी इससे पहले डावोस, स्वीडन, स्पेन और इंग्लैंड की यात्रा कर आए थे, करोड़ रुपए फूके गए थे उस यात्रा में, 1,00,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आने की बात हुई थी। तो मुख्यमंत्री जी को इस समिट के पहले, जो इनकी पहले की यात्रा है जिसमें करीब 20 करोड़ रुपया फूका गया है, उसका श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि क्या क्या इन्वेस्टमेंट आया।
0: रांची जिले की 3,66,000 से अधिक महिला लाभुकों के बैंक खातों में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 3 महीने की राशि एक मुश्त भेज दी गई है। आधार आधारित डीबीटी के माध्यम से प्रत्येक लाभुक को 7,500 रुपये मिले हैं। इस मद में कुल 274 करोड़ रुपए से अधिक का पारदर्शी भुगतान किया गया है। दामोदर वैली कॉरपोरेशन के 79वें स्थापना दिवस पर कोडरमा थर्मल पावर प्लांट को सर्वश्रेष्ठ उत्पादन स्टेशन और ग्रीन प्लांट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम में परियोजना प्रमुख संजय कुमार ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रांची में MRMR 2.0 अभियान के तहत राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने तसर उत्पादन की नवीन तकनीकों, डिजिटल मॉनिटरिंग और गुणवत्ता सुधार पर विचार विमर्श किया। आकाशवाणी के ताज़ातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। धनबाद के केंदुआडीह में भू धसान और गैस रिसाव को लेकर जिला प्रशासन ने बड़ी बैठक की है। उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि बंद पड़ी धनबाद बोकारो मुख्य सड़क को खोलने से पहले BCCL, IIT और सिम्फर की निगरानी में वैज्ञानिक जांच कराएगा।
4: घटना है ये भूदशान की या गैस निकलने की, ये बहुत पुरानी घटना है, 1980 से बता रहे हैं, लगातार हो रही है, तो डेंजर जोन तो है, तो इसमें कोई मिडिल पाथ निकलना चाहिए। तो हम लोग यही निर्णय लिए हैं कि जो टेक्निकल एजेंसीज हैं, DGMS, ITISM है, सिम्फर है, उनके भी एक्सपर्ट थे, तो उन लोगों ने सब ने मिलकर एक ओपिनियन दिया है कि हम लोग एक SOP देंगे, जिस SOP के तहत BCCL और जिला प्रशासन मिलकर उस जगह को चेक करेगा।
0: जमशेदपुर के चर्चित डीडी बार हत्याकांड में पुलिस ने मैनेजर समेत 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है और एक नाबालिग को निरुद्ध किया है। SSP एहतिशाम वकारे

0: राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,35,300 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,38,000 रुपये प्रति किलो है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अलनीनो के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्र की अध्यक्षता में यह बैठक सेवा तीर्थ में हुई। हमारी संवाददाता ने बताया कि बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
1: डॉक्टर पीके मिश्रा ने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मॉनसून या विलंबित मॉनसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि पशु चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जाएं। संवेदनशील जिलों में पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता पर भी श्री मिश्रा ने बल दिया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जिलों में स्थित कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए अल नीनो के जोखिमों के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की हैं। संवेदनशील राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड कवरेज के लिए अभियान शुरू किए गए हैं और कृषि वित्तीय सेवा और सहकारिता विभागों को समयबद्ध तरीके से अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने का सुझाव दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने लू, उच्च आर्द्रता और डेंगू के प्रकोप की निगरानी के लिए सलाह जारी की है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: हॉकी इंडिया के महासचिव और हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह ने कल राज्य के खेल मंत्री सुदिव्य कुमार से मुलाकात की। खेल मंत्री के आवास पर हुई इस बैठक में झारखंड में हॉकी के विकास और स्थानीय खिलाड़ियों को बेहतर विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर चर्चा की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने शुरू की प्रगति परियोजना, झारखंड समेत 8 राज्यों के 20 लाख किसानों को मिलेगा सीधा लाभ। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ आज रांची को देंगे बड़ी सौगात, 2 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत रांची जिले के 3.5 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में 3 महीने की राशि एक मुश्त हस्तांतरित। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट को DVC के स्थापना दिवस पर मिले 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ उत्पादन स्टेशन और ग्रीन प्लांट ऑफ द ईयर से सम्मानित। और जमशेदपुर के चर्चित डीडी बार हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, मैनेजर समेत 3 और आरोपी हथियार के साथ गिरफ्तार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा।
2: मीडियम वेव 546.45 MHz यानी 549 KHz और FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।

आइए सुनिए उपशास्त्रीय संगीत का हमारा कार्यक्रम अनुरंजनी। आज की अनुरंजनी में हम सुनेंगे शोभा गुट्टू को। सबसे पहले सुनते हैं राग मिश्र खमाज में ये ठुमरी, बोल है अब कैसे थरुं धीर।

0: शोभा गुट्टू की आवाज में अभी हम सुन रहे थे ये दादरा।
1: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें। HIV से संक्रमित हो तो नवजात शिशु को HIV का संक्रमण हो सकता है, इसलिए गर्भावस्था के पहले 3 माह के अंदर मां की HIV जांच अपने निकटतम सरकारी अस्पताल में अवश्य कराएं, ताकि शिशु को HIV के संक्रमण से बचाया जा सके। जांच जितनी जल्दी, सुरक्षा उतनी पक्की। अधिक जानकारी के लिए नाको टोल फ्री नंबर 1-0-9-7 पर संपर्क करें या नाको एड्स ऐप डाउनलोड करें। झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
1: इन संदेशों को पहले हम सुन रहे थे उपशास्त्रीय संगीत का हमारा कार्यक्रम अनुरंजनी। आज की अनुरंजनी संपन्न हुई। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।

आइए सुनिए सुगम संगीत। आज के सुगम संगीत में हम सुनेंगे गजल मिताली सिंह और भूपेंद्र सिंह की आवाज में।

0: विशेष महत्व रखता है और इसके विकास की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उन्हीं पर है। श्री मोदी ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इन परियोजनाओं में योगदान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
1: एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। यहाँ के जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है, वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं। ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत भी अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है।
0: भारत और इंडोनेशिया ने उच्च शिक्षा में सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल घोषणा की कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु इंडोनेशिया में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के लिए अब रवाना हो गए हैं। इस यात्रा का उद्देश्य प्रवासी समुदाय पर विशेष ध्यान देते हुए दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूती प्रदान करना है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मेलबर्न स्थित प्रख्यात फार्मासिस्ट और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सदस्य दीपक संघवी ने द्विपक्षीय संबंधों के बारे में अपने विचार साझा किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज से केरलम के कोची में आज सवेरे शुरू हुआ। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा मंत्रालय में सचिव अनिल मलिक सहित अन्य मंत्री सम्मेलन के मुख्य सत्र में शामिल हुए। मुख्य सत्र के दौरान संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। सम्मेलन में भाग ले रहे मंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सिलसिले में आयोजित एक प्रदर्शनी का दौरा करेंगे और शिक्षा मंत्री जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व आधारित विकास में भारत की उपलब्धियों को दर्शाने वाली प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं। भारत वस्तु समझौते से संबंधित 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति की नई दिल्ली में बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना है। संयुक्त समिति की बैठक और उससे जुड़ी बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 10 जुलाई तक जारी रहेंगी। इन बैठकों से भारत और आसियान के बीच सहयोग और आपसी समझौता होगा। वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय नवाचार चुनौती हथकरघा हैकाथॉन 2026 का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य देश के हथकरघा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए प्रौद्योगिकी डिजाइन और उद्यमशीलता का उपयोग करना तथा सतत समाधान प्रदान करना है। इस पहल का आयोजन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। ऑनलाइन पंजीकरण 20 जुलाई तक खुले हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा उड़ीसा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल उड़ीसा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। प्राधिकार पत्र वर्ष 2026 के भारतीय ध्वज वाले मत्स्य पोतों द्वारा खुले समुद्र में मत्स्य संसाधनों के सतत दोहन संबंधी दिशा देशों के तहत एक अनिवार्य प्रावधान है। प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली एनसीआर में 5 परिसरों पर तलाशी अभियान चला रहा है। ये छापेमारी सब्सिडी पर मकान खरीदारों को ठगने के 3 मामलों की चल रही जांच के सिलसिले में चलाया जा रहा है। इससे पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई जांच में पता चला है कि बिल्डरों ने सब्सिडी योजनाओं के नाम पर मकान खरीदारों और निवेशकों को धोखा दिया है। इससे ये भी पता चला है कि बिल्डरों ने पोजेशन तक कोई ईएमआई नहीं योजना शुरू की है, जिनके तहत घर खरीदारों ने आवास ऋण लेकर फ्लैट बुक किए। हालांकि कई साल बीत जाने के बाद भी उन्हें फ्लैटों का पोजीशन नहीं दिया गया है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के बरोईपुर में दुष्कर्म और हत्या मामले का मुख्य आरोपी प्रभास मंडल मुठभेड़ में मारा गया है। मंगलवार और बुधवार की रात लगभग 12:45 पर घटना के नाटकीय रूपांतरण के दौरान प्रभास ने पुलिस अधिकारी की बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की और एक राउंड गोली चलाई। मुठभेड़ में प्रभास गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में मृत घोषित किया गया। इस मामले में गिरफ्तार 3 अन्य आरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया के चनापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों

0: और गोला बारूद के साथ एक शव बरामद हुआ और उसकी पहचान की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पत्रकारों से बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष अप्रैल में ही अल नीनो की चुनौती से निपटने की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने ये भी बताया कि अल नीनो निगरानी प्रकोष्ठ और नोडल अधिकारियों के माध्यम से बुवाई, फसल और बाजार की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। श्री चौहान ने कहा कि मॉनसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन, कपास और अन्य फसलों की बुवाई प्रभावित हुई है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज तेज बारिश, बाढ़ जैसी स्थिति और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बात की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। गृहमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से राज्य में तेज बारिश और जलभराव से उत्पन्न स्थिति के बारे में भी बातचीत की और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस बीच केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने वायनाड आपदा के संबंध में उनसे फोन पर बात की। श्री सतीशन ने कहा कि श्री शाह ने स्थिति का जायजा लिया और राहत और पुनर्वास प्रयासों के लिए केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। केरलम के मुख्यमंत्री ने बताया कि गृहमंत्री ने घटना की उच्च स्तरीय जांच की भी आवश्यकता पर बल दिया है। केरलम सरकार ने वायनाड भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीम अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद है। 5 लोग अभी भी लापता हैं और तलाशी अभियान जारी है। लद्दाख में स्थानीय मौसम विभाग ने नालों में तेज और अचानक जलधाराओं के खतरे और बाढ़ की आशंका की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने सिक्किम को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 के एक खंड को 11 से 13 जुलाई तक अस्थायी रूप से एक दिन में 5 घंटे के लिए बंद करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड NHIDCL ने आपातकालीन मरम्मत कार्य और वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 20वें माइल बरदांग स्थित NH10 के एक हिस्से को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। ये मार्ग 11 से 13 जुलाई तक प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 10 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद रहेगा। यह बंदी चल रहे आपातकालीन मरम्मत कार्य के कारण आवश्यक है। अधिकारियों ने इस दौरान यातायात जाम और सुरक्षा संबंधी जोखिम की आशंका जताई है। यात्रियों के असुविधा कम करने के लिए NHIDCL ने वाहन चालकों के लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था भी की है। मानुष प्रतिम शर्मा के साथ मोइनक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गांतोक।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने होर्मुज गान प्रांत और माशहर बंदरगाह पर अमरीकी हमलों के जवाब में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। ईरानी मीडिया के अनुसार इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने मिसाइल और ड्रोन हमले करते हुए अमरीका के 85 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें बहरीन स्थित सलमान बंदरगाह और अमरीका के 5वें बेड़े का मुख्यालय तथा कुवैत में अली अल सलेम वायुसेना अड्डा शामिल है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान के बुशहर प्रांत में अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया गया। इस बीच बहरीन के गृह मंत्रालय ने चेतावनी सायरन बजने पर लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। इससे पहले होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर फिर हवाई हमले किए। ईरान की केंद्रीय सैन्य कमान ने इसे आक्रामकता और आतंकवाद का कृत्य बताते हुए जवाबी हमले की चेतावनी दी है। ईरान ने यह भी कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही किसी को इस पर नियंत्रण करने दिया जाएगा। इस बीच अमेरिका ने अंतरिम समझौते के तहत ईरान को दी गई तेल बेचने की छूट रद्द कर दी है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमरीकी हमले और कार्रवाई द्विपक्षीय समझौतों का गंभीर उल्लंघन है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: और अब मौसम का भी रुख कर लेते हैं। मौसम विभाग ने देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा और बिजली चमकने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख

0: हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2 से 3 दिन में उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष भागों सहित पूरे देश में आगे बढ़ने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के निचले इलाके, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भागों में आज मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है, जिससे गर्मी से राहत मिली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.8% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 590 अंक फिसलकर 77,591 पर, जबकि निफ्टी 185 अंक गिरकर 24,213 पर था। और अब खेलों में, अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अंतरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सका। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। वहीं क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया है। इसके अंतर्गत तीर्थयात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक तीर्थयात्री सीमा लागू रहेगी। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे अग्रिम पंजीकरण कराएं और यात्रा केवल अपने परमिट में तय तिथि पर ही करें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्याकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा सम्पन्न। तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम में 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। थोड़ी ही देर में हम सुनेंगे फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम जय भारती।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: ಸ್ವಯಂ ಈ ಕಟ್ಪಡೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ.
1: फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत के कार्यक्रम जय भारती में आपका बहुत बहुत स्वागत है. सबसे पहले सुनते हैं फिल्म अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों का ये गाना, उदित नारायण, अलका याग्निक, सोनू निगम और कैलाश खेर की आवाज में. बोलो को लिखा है समीर ने, धुन तैयार की है अनु मलिक ने.

और आइए अब सुनते हैं फिल्म अभिमान का ये गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। मजरूह के बोल हैं, संगीत है सचिन देव बर्मन का।

किशोर कुमार की आवाज में अभी हम सुन रहे थे फिल्म मिली का ये गाना, योगेश के बोल थे और सचिन देव बर्मन का संगीत। आइए सुनिए फिल्म पत्थर के सनम में मोहम्मद रफी को।

0: इस गीत के साथ ही अब आज का फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम जय भारती संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए एक साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया।
2: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स हैं। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है।
1: जिले में उपायुक्त दीपक दुबे ने जिला अंतर्गत संचालित सर्वजन पेंशन योजना तथा मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों की प्रगति पर चल रहे सत्यापन कार्य की समीक्षा की। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि 3 दिनों के भीतर सत्यापन कार्य पूरा कर प्रतिवेदन समर्पित करें ताकि विभागीय निर्देशों के अनुरूप पात्र लाभुकों को पेंशन का भुगतान शीघ्र सुनिश्चित किया जा सके। दुमका के सिद्धो कान्हो मुर्मू विश्वविद्यालय के 43 कॉलेजों में स्नातक नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन का आज आखिरी दिन है। अब तक 34,000 से अधिक अभ्यर्थी चांसलर पोर्टल पर प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। 11 जुलाई को चयनित विद्यार्थियों की पहली मेधा सूची जारी की जाएगी। दुमका जिले में इस वर्ष कम वर्षा और अल नीनो के प्रभाव की आशंका को देखते हुए विशेष मिलेट जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत मोटे अनाज की खेती करने वाले किसानों को प्रति एकड़ 3,000 रूपये प्रोत्साहन राशि दी जानी है। यह राशि अधिकतम 5 एकड़ और न्यूनतम 10 डिसमिल जमीन में खेती के लिए दी जाएगी। अभियान की शुरुआत दुमका सदर प्रखंड की बेहरा आप पंचायत से की गई है। दामोदर घाटी निगम के 79वें स्थापना दिवस पर कोडरमा थर्मल पावर प्लांट को सर्वश्रेष्ठ उत्पादन स्टेशन और ग्रीन प्लांट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम में परियोजना प्रमुख संजय कुमार ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के सांसद संजय सेठ ने आज विधायक नवीन जायसवाल और महापौर रोशनी खलखो के साथ रांची के रातू रोड स्थित ओटीसी ग्राउंड के निकट आधुनिक ट्रैफिक पुलिस पोस्ट का लोकार्पण किया। इस दौरान नवनिर्मित ट्रैफिक पुलिस पोस्ट की चाबी पुलिस पदाधिकारियों को सौंपी गई। बोकारो जिले की पुलिस ने साइबर अपराध को अंजाम देने वाले 2 गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरफ्तार गिरोह के पास से कई सिम कार्ड, मोबाइल सहित अन्य सामान बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि ये अपराधी बैंक अधिकारी बनकर क्रेडिट कार्ड के नाम पर लोगों को पैसा ठगने का काम करते थे।
3: साइबर क्राइम से संबंधित प्रतिबिंब ऐप द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार साइबर टीम और मेरा तकनीकी शाखा DSP CCR के नेतृत्व में छापेमारी किया गया है। छापेमारी के क्रम में 2 संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया है। उससे पूछताछ के बाद साइबर क्राइम से संबंधित कई सारे डॉक्यूमेंट और मोबाइल बरामद किया गया है।
1: रामगढ़ जिले के भुरकुंडा थाना क्षेत्र में पुलिस को अवैध हथियार निर्माण के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने हथियार बनाने के उपकरण और अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए हैं। पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा प्रखंड स्थित जेट के टोला गांव में एक विवाहित महिला की हत्या कर दी गई। मामले की सूचना पर अमड़ापाड़ा थाना प्रभारी अनूप रोशन भेंगरा दलबल के साथ पहुंचे। उन्होंने बताया कि पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जांच करेगी। और हॉकी इंडिया के महासचिव और हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह ने कल राज्य के खेल मंत्री सुदेव कुमार से मुलाकात की। खेल मंत्री के आवास पर हुई इस बैठक में झारखंड में हॉकी के विकास और स्थानीय खिलाड़ियों को बेहतर विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुने एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी।
0: वाह क्या बात है, जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी। आगे लिखते हैं,
2: योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग जरूर करें।
0: वाह ये भी एक बड़ी खूबसूरत कविता बन गई। योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग करें। बहुत सुंदर विचार भेजा आपने, धन्यवाद स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: गाँव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेड़था बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र

0: इंद्रदास मानिकपुरी, मिलऊदास, जयदास, देवेशदास, धनवंतीन बाई और मोतीमबाई मानिकपुरी।
1: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
0: ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
1: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय के साथ साथ बेबी किट्टू ने लिखा है। आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी सादर नमस्कार।
0: हम उमंग कार्यक्रम के नियमित श्रोता हैं। सोमवार से शुक्रवार तक एक एक जानकारी सुनते हैं, समीक्षा भी भेजते हैं। गुजरे सप्ताह आपने 15 जून को केवल नाम पढ़ा लेकिन समीक्षा नहीं पढ़ी।
1: आपके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि आगे से हम जरूर इस बात का खास ख्याल रखेंगे
0: जी।
1: अगला संदेश हमें मिला है राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का।
0: आप सबके संदेशों के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए मैं।
1: श्रोताओ, इन दिनों हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों के रोचक संसार की
0: जी।
1: कल हमने जाना था कि पेड़ पौधे आपस में किस प्रकार से संचार करते हैं। आज हम जानेंगे पेड़ों के बारे में एक और रोचक बात
0: जी।
1: तो विमलेश जी, आपने कल बातचीत में प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बोस के बारे में कुछ बताया था
0: जी। अजीत जी, मैं याद कर रही थी उनके बचपन की एक घटना को। ऐसा कहते हैं कि जब वे बच्चे थे तो एक शाम वे गेंद से खेल रहे थे, गेंद पास की झाड़ियों में फंस गई थी।
1: बालक जगदीश चंद्र बोस ने एक डंडा लिया और लगे झाड़ी को हिलाने
0: जी।
1: वे बहुत प्रयास करते रहे लेकिन गेंद झाड़ी में उलझी रही
0: जी।
1: शाम ढलने लगी थी, तभी उनकी माँ ने उन्हें बुलाया और कहा, बेटा पौधों को तंग ना करो, ये उनके सोने का समय है।
0: श्रोताओ, यही वो समय था जब बालक जगदीश चंद्र बोस के मन में वैज्ञानिक चेतना जागी। तो श्रोताओ, आज हम चर्चा करेंगे कि क्या पेड़ पौधे भी सोते हैं।
1: श्रोताओ, इसका उत्तर है जी हाँ, लेकिन हमारी तरह नहीं। वैज्ञानिकों ने शोध करके पाया है कि रात में पेड़ों की गतिविधियां धीमी हो जाती हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की गति बहुत कम हो जाती है।
0: पानी और पोषक तत्वों का प्रवाह भी दिन के मुकाबले कम हो जाता है। पेड़ों की स्कैनिंग से ये भी पाया गया है, रात के समय कुछ पेड़ों की शाखाएं और पत्तियां 5 से 10 सेंटीमीटर तक नीचे झुक जाती हैं और सूर्योदय के बाद फिर से ऊपर उठ जाती हैं।
1: अरे वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है। यही कारण है कि ये कहा जाता है कि पेड़ भी सोते हैं। विमलेश जी, आजकल सुना जाने लगा है कि पेड़ों पर रात को तीव्र प्रकाश वाले बल्ब नहीं जलाने चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है?
0: जी जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रात में पेड़ों पर बल्ब नहीं जलाने चाहिए।
1: क्यों?
0: इसके कई कारण हैं। पहली बात, इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं। तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता।
1: जी विमलेश जी, श्रोताओ एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियों के झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर ही निर्भर करती है, जबकि कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है।
0: एक और बात, कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीटों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है
1: जी।
0: सजावट या सुरक्षा कारणों से भी कभी कभार सीमित समय के लिए बत्तियां जलाई जा सकती हैं। लेकिन अच्छा यही है कि जहां तक हो सके उन्हें प्राकृतिक पर्यावरण में ही रहने दिया जाए
1: जी। तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी। आशा है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आई है तो लिख भेजिए अपना संदेश। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से हमारा प्रश्न है, पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए?
1: श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800-440-559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है खेल संध्या।
0: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है जिसे एक गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। गीत में बच्चे विशेषकर भारत के पारंपरिक खेलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें खेलने कूदने में कितना आनंद आता है।
1: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
1: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों संग आनंद मनाते। जाते।
1: कभी दौड़ना और उछलना,
2: कभी दौड़ना और उछलना,
1: कभी गेंद के खेल खेलना,
2: कभी गेंद के खेल खेलना,
1: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
2: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
1: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
2: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
1: गिल्ली डंडा सबको भाता,
2: गिल्ली डंडा सबको भाता,
1: सतोलिया भी मजा दिलाता,
2: सतोलिया भी मजा दिलाता,
1: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
2: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
1: या हंस हंस के बातें करना,
2: या हंस हंस के बातें करना,
1: जब अंधेरा होने लगता,
2: जब अंधेरा होने लगता,
1: सबको कुछ डर लगने लगता,
2: सबको कुछ डर लगने लगता,
1: तब हम घर को वापस आते,
2: तब हम घर को वापस आते,
1: कल खेलेंगे यह कह जाते,
2: कल खेलेंगे यह कह जाते।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत, अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है, जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आपने सुना ये प्यारा कार्यक्रम।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।
1: इस कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों और उनकी परंपराओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने आज भी अपनी संस्कृति को बनाए रखा है।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।

0: कहते हैं अरबों वर्ष पहले पृथ्वी पर जमीन का एक विशाल टुकड़ा था। किसी कारणवश बड़ा भयंकर धमाका हुआ। जमीन के टुकड़े अलग अलग छिटक गए। उसी से बने द्वीप और महाद्वीप।
1: ऐसा ही एक महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया।

0: ये भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसके पश्चिम और दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में प्रशांत महासागर है और उत्तर में टिमोर और अराफुरा सागर है।
1: क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया भारत से दुगने से भी अधिक है, लेकिन भारत की जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से लगभग 6 गुना

0: ऑस्ट्रेलिया का अधिकतर भाग सूखा और गर्म है। हमारे देश की गंगा नदी में जितना जल है, ऑस्ट्रेलिया की सारी नदियों में कुल मिलाकर उसका आधा जल भी नहीं है।
1: एक बात और, दक्षिण गोलार्ध में होने के कारण ऑस्ट्रेलिया के मौसम उत्तरी गोलार्ध में

0: चले आ रहे हैं और शायद तुम्हें ये जानकर हैरानी हो कि उनमें से कुछ के जीने के तरीके में आज भी कोई अंतर नहीं आया।
1: मतलब ये कि आज भी ये शिकार करके अपना पेट पालते हैं। इन्होंने न खेती करना सीखा न पशु पालना। पशु के नाम पर डिंगो नाम का एक कुत्ता पालते हैं जो शिकार के समय भी बराबर इनके साथ रहता है।
0: शिकार करने के लिए ये लोग आज भी पत्थर और लकड़ी के हथियारों का प्रयोग करते हैं। इनका एक हथियार है वो मेरा, जिसकी मदद से ये अपने भाले को 130 मीटर की दूरी तक फेंक सकते हैं।
1: एक और हथियार होता है बूमरैंग, जो घुमावदार होता है। इस हथियार की विशेषता ये है कि अगर शिकारी इसे चतुराई से फेंके और किसी कारणवश वो निशाने पर न लगे तो शिकारी के पास वापस आ जाता है।
0: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी सभी तरह के पशु पक्षियों का शिकार करते हैं, जैसे एम्यू पक्षी, सांप, छिपकली, कछुआ, कंगारू आदि।
1: कंगारू, इस शब्द की एक रोचक कहानी है। अंग्रेजों ने जब पहली बार इस विचित्र जीव को देखा तो आदिवासियों से इसका नाम पूछा। आदिवासी अंग्रेजी तो समझते नहीं थे, बस इतना समझ पाए कि गोरे लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं। उन्होंने अपनी भाषा में कहा, कंगारू यानी तुम क्या जानना चाहते हो? अंग्रेज समझे कि कंगारू इस विचित्र जीव का नाम है, बस तभी से उसका नाम कंगारू पड़ गया।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों के बारे में इतना जान लेने के बाद ये जानने की भी इच्छा होती है कि शताब्दियां बीत जाने पर भी जिन लोगों की जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आया वो देखने में कैसे लगते हैं।
1: इनका रंग गहरा होता है, कद सामान्य, शरीर छरहरा लेकिन गठा हुआ, आंखें छोटी और भीतर को धंसी हुई, नाक चौड़ी और चपटी, जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ और बाल घुंघराले।
0: हमारी दृष्टि से भले ही ये लोग पिछड़े हों, लेकिन शारीरिक और बौद्धिक दृष्टि से ये पीछे नहीं। इनकी भाषाएं काफी विकसित हैं और लगभग 500 बोलियां प्रचलित हैं। हाँ, ये बात और है कि इनके यहाँ पढ़ाई लिखाई की कोई व्यवस्था नहीं।
1: तुम सोच रहे होगे कि क्या मजे की बात है, आदिवासी बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ता, न होमवर्क करना पड़ता है और न ही परीक्षा देनी पड़ती है। बस सारा दिन मौज मस्ती करो, खेलो कूदो।
0: हाँ, ये तो है। आदिवासी बच्चों ने अपने मनोरंजन के लिए तरह तरह के खेल बना रखे हैं।
1: ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों का पारिवारिक संगठन बहुत मजबूत होता है। ये सब कुछ मिल बांट कर खाते हैं और प्रेम से रहते हैं। इनके यहाँ छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं होता, सभी बराबर माने जाते हैं। हाँ, बड़े बूढ़ों और अनुभवी लोगों का आदर अवश्य किया जाता है।
0: इन्हीं बड़े बूढ़ों पर पवित्र स्थलों की जिम्मेदारी होती है। यही लोग धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं और नौजवानों को अपने रीति रिवाजों के बारे में बताते हैं। ऐसे अवसरों पर नृत्य और संगीत अवश्य होता है।
1: हाँ, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। स्त्री पुरुष अपने शरीर पर सफेद मिट्टी और गेरू से टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचते हैं, आकृतियां बनाते हैं, माथे पर रस्सी की पट्टियां बांधते हैं और उनमें पक्षियों के रंग बिरंगे पंख खोस लेते हैं, और फिर होता है सामूहिक नृत्य।
0: ऑस्ट्रेलिया के ये सीधे साधे आदिवासी हंसते खेलते अपना जीवन बसर कर रहे थे, लेकिन फिर अंग्रेजों को इस अद्भुत महाद्वीप का पता चल गया

0: और उन्होंने वहां अपनी बस्तियां बसानी शुरू कर दी।
1: अंग्रेजों के अलावा अन्य यूरोपीय लोग भी यहां आए। पहले पहल अंग्रेज समुद्र तट पर आकर बसे, फिर उन्होंने अंदर की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे अंग्रेज आगे बढ़े, वैसे वैसे आदिवासी अंदर के दुर्गम क्षेत्रों में सिमटते गए। बेचारे क्या करते, अपने सीधे साधे हथियारों से अंग्रेजों का मुकाबला थोड़े ही कर सकते थे।
0: अंग्रेजों ने आदिवासी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और वहां खेती बाड़ी शुरू कर दी। कहीं कहीं आदिवासियों ने अपना क्षेत्र खाली करने से इनकार किया तो अंग्रेजों ने छल कपट से काम लिया। ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न नगर इसका जीता जागता उदाहरण है। इस नगर को बसाने के लिए अंग्रेजों ने आदिवासियों से 40,000 हेक्टेयर जमीन ली, और जानते हो उसके बदले में उन्हें क्या दिया?
1: 100 कंबल, 50 चाकू, 50 कुल्हाड़ियां, 40 कैंचियां, 50 शीशे, 20 जोड़ी कपड़े और 2 टन आटा।
0: ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी छोर पर एक छोटा सा द्वीप है, तस्मानिया। ये भी ऑस्ट्रेलिया का एक हिस्सा है। यहाँ के आदिवासियों को भी अंग्रेजों ने उसी तरह धकेलना शुरू किया। अंग्रेज उन्हें खाना कपड़ा तो देते थे, लेकिन बेचारे अंग्रेजों की उतरन पहनकर भी ठंड से नहीं बच पाए। सन 1847 तक इनकी संख्या 2000 से घटकर केवल 47 रह गई, और सन 1869 तक आते आते आखिरी आदिवासी ने भी दम तोड़ दिया। इस तरह पूरी की पूरी एक जाति लुप्त हो गई।
1: आज पशु पक्षियों की दुर्लभ जातियों के संरक्षण को बहुत महत्व दिया जा रहा है। उनके शिकार पर रोक लगा दी गई है, उनके लिए अभयारण्य बनाए जा रहे हैं। लेकिन तस्मानिया के आदिवासियों के बारे में तब किसी ने भी नहीं सोचा।
0: ऑस्ट्रेलिया के इन आदिवासियों की दशा में काफी सुधार हुआ है। उन्हें अब समानता के अधिकार मिल गए हैं। वो वोट दे सकते हैं, अपने प्रतिनिधि को देश की संसद में भेज सकते हैं।
1: यही नहीं, आदिवासियों को भूमि के अधिकार भी मिले हैं। इनके लिए कुछ आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं जहां किसी और का कोई दखल नहीं। ये लोग अपनी मर्जी से जैसे चाहें रह सकते हैं।
0: उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में अर्नहैम लैंड नाम का एक ऐसा ही आरक्षित क्षेत्र है। इसमें ककाटू नाम का एक राष्ट्रीय पार्क भी बनाया गया है। सन 1988 में इस राष्ट्रीय पार्क की फिल्म बनाने के लिए एक अमरीकी दंपति वहां जाकर महीनों रहे थे।
2: हम लोग आपके इस ककाटू पार्क की फिल्म बनाने आए हैं, और उसके लिए पूरे परिवेश को अच्छी तरह जानना समझना बहुत जरूरी है।
3: तब तो आप भी हम गागुजू आदिवासियों जैसे ही हैं। हम लोग अपने आप को प्रकृति का एक हिस्सा मानते हैं।
4: लेकिन मिस्टर नीजी, मनुष्य तो अपने को प्रकृति का मालिक मानता है।
3: नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, नहीं तो वन देवी नाराज हो जाएंगी। वन देवी ने समुद्र से निकलकर जमीन बनाई, पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए, मनुष्य को जन्म दिया, और फिर वो भी इन्हीं में समा गई।
2: अच्छा, तो ये सब वन देवी ने किया?
3: यही नहीं, हमारी मिमी देवी ने हमें शिकार करना सिखाया और चित्र बनाना सिखाया।
4: कैसे चित्र?
3: जीव जंतुओं के चित्र, आदमी के चित्र।
2: क्या आप हमें ऐसे कुछ चित्र दिखा सकते हैं?
3: क्यों नहीं, अभी चलिए।
2: चलिए
3: आइए।
2: देखो वेरिंडा, ये अजगर का चित्र।
4: अरे, इसमें तो अजगर की हड्डियों का ढांचा तक दिख रहा है, जैसे ये कोई एक्सरे फोटो हो।
2: और ये देखो, ये गुफा की दीवार पर गेरू से बनी ये मछली।
4: इधर ये कछुए, मेंढक, कंगारू और ये प्लेटिपस के चित्र भी हैं। और ये देखो, आदिवासी का ये चित्र।
2: मिस्टर नीर जी, क्या आप लोग अब भी ऐसे चित्र बनाते हैं?
3: गुफाओं में तो नहीं, हाँ पेड़ों की छाल पर जरूर बनाते हैं। आप कल हमारे कबीले में आइए, मैं आपको अपने भाई से मिलवाऊंगा।

0: बहुत अच्छे चित्र बनाता है।
1: ठीक है, कल सुबह हम वहां आएंगे। अभी इन चित्रों की फिल्म तो उतार लें।
0: गुड मॉर्निंग मिस्टर नीट जी।
2: गुड मॉर्निंग। आइए आइए आइए।
1: हमारे आने से आपको कोई असुविधा तो नहीं हुई?
2: जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। ये मेरा भाई है इल्किर।
1: अच्छा अच्छा।
2: ये आपकी भाषा नहीं बोल सकता, लेकिन आपको चित्र दिखाएगा। कल इसने ये छाल उतारी थी चित्र बनाने के लिए। आप इसे चित्र बनाते देखना चाहते हैं?
3: ये तो बहुत अच्छा होगा, फिर हम उसकी फिल्म भी उतार सकते हैं।
2: जी।
1: अरे वाह, ये तो बड़ी तेजी से हाथ चला रहे हैं। देखो वेलिंडा, इनकी कोई गलती भी नहीं हुई, और देखो ना, कुछ मिटाना भी नहीं पड़ा।
3: वाकई कमाल है।
2: अभ्यास से गलतियां नहीं होती। हमारे बनाए चित्र तो अब दुनिया भर में बिकते हैं।
1: सचमुच?
3: स्टेन, एक चित्र हम भी खरीद लें?
1: हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। वो अजगर वाला चित्र बड़ा आकर्षक है।
2: लीजिए, ये आपका हुआ।
1: इसकी कीमत?
2: कीमत नहीं लूंगा, हम गगुज्जू आदिवासियों की तरफ से आपको भेंट है।
1: धन्यवाद।
4: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी अच्छे चित्रकार तो हैं ही, आज उन्होंने अन्य क्षेत्रों में भी अपना स्थान बना लिया है। वो देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे हैं।
5: लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें ये आधुनिकीकरण पचता नहीं। वो अपनी जीवन पद्धति नहीं बदलना चाहते, और क्योंकि अब उन्हें भूमि के अधिकार मिल गए हैं, इसलिए वो अपने क्षेत्र में अपने ढंग से जी सकते हैं। एक तरह से अच्छा भी है। आज हम चाहें तो पाषाण युग की जीवन शैली को प्रत्यक्ष देख तो सकते हैं।
6: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
7: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
6: नमस्कार।
8: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग अभी हम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए सुनिए फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम रांची मेलोडीज़।

अगला गाना है फिल्म तीसरी मंजिल से, आवाजें हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की, बोलो को लिखा है मजरू ने, धुन तैयार किया राहुल देव परमन ने।

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में फिल्म मेरे हमसफर का ये गाना। आनंद बख्शी के बोल थे और कल्याण जी आनंद जी का संगीत। आइए सुनिए मन्ना डे की आवाज में फिल्म देख कविरा रोया का ये गाना। राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं और मदन मोहन का संगीत।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी हम सुन रहे थे साहिर की रचना को। इस गाने को सुरों में पिरोया था रोशन ने, धुन तैयार की थी रोशन ने और फिल्म का नाम था बहू बेगम। आइए सुने फिल्म मेरे हमदम मेरे दोस्त का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में। बुलू को लिखा है मजरू ने, धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: लता मंगेशकर के गाए इस गाने के साथ ही अब आज का हमारा रांची मेलोडीज फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब प्रादेशिक मुख्य समाचार होंगे।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। रांची सांसद संजय सेठ ने आज विधायक नवीन जायसवाल और महापौर रोशनी खलखो के साथ रांची के रातू रोड स्थित ओटीसी ग्राउंड के निकट आधुनिक ट्रैफिक पुलिस पोस्ट का लोकार्पण किया। इस दौरान नवनिर्मित ट्रैफिक पोस्ट की चाबी पुलिस पदाधिकारियों को सौंपी गई। बोकारो जिले के पुलिस ने साइबर अपराध को अंजाम देने वाले दो गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरफ्तार गिरोह के पास से कई सिम कार्ड, मोबाइल सहित अन्य सामान बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि ये अपराधी बैंक अधिकारी बनकर क्रेडिट कार्ड के नाम पर लोगों को पैसा ठगने का काम करते थे। दुमका के सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के 43 कॉलेजों में स्नातक नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन का आज आखिरी दिन है। 11 जुलाई को चयनित विद्यार्थियों की पहली मेधा सूची जारी की जाएगी। साहिबगंज जिले में उपायुक्त दीपक दुबे ने जिला अंतर्गत संचालित सर्वजन पेंशन योजना तथा मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों की प्रगति पर चल रहे सत्यापन कार्य की समीक्षा की। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि 3 दिनों के भीतर सत्यापन कार्य पूरा कर प्रतिवेदन समर्पित करें, ताकि विभागीय निर्देशों के अनुरूप पात्र लाभुकों को पेंशन का भुगतान शीघ्र किया जा सके। दामोदर घाटी निगम के 79वें स्थापना दिवस पर कोडरमा थर्मल पावर प्लांट को सर्वश्रेष्ठ उत्पादन स्टेशन और ग्रीन प्लांट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और रामगढ़ जिले के भुरकुंडा थाना क्षेत्र में पुलिस को अवैध हथियार निर्माण के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हथियार बनाने के उपकरण और अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए हैं। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: आइए सुने कार्यक्रम बढ़ते कदम। आज हम सुनेंगे झारखंड में एमएसएमई के माध्यम से नए उद्योगों की हो रही शुरुआत और हो रहा रोजगार सृजन। भेंटवार्ता होगी एमएसएमई का लाभ ले रहे लाभार्थियों से। भेंटवार्ताकार हैं आशुतोष कुमार और वीरेंद्र रावत, भेंटकर्ता कमलेश कुमार मिश्रा। प्रस्तुति है प्रभु शरण की।
1: सभी का बहुत बहुत स्वागत है, मैं हूं आपके साथ कमलेश कुमार मिश्र। उम्मीद करता हूं कि आप सकारात्मक सोच के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे और बहुत ही ये खूबसूरत जिंदगी है। बस जरूरी ये है कि हम किस तरीके से, अपने किन कामों से, अपने किस सोच से, कैसी शुरुआत से हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। कार्यक्रम बढ़ते कदम भी वही काम करता है। सरकार के उन सकारात्मक सोच को शामिल करता है, सरकार के उन योजनाओं को शामिल करता है जिनसे हम और आप एक कदम आगे बढ़ते हैं, अपने जिंदगी को बेहतर बनाते हैं और आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं। आज के कार्यक्रम में हम एमएसएमई की बात करने वाले हैं। आज के कार्यक्रम में हम एमएसएमई के साथ आज किस तरीके से झारखंड में बहुत सारे उद्योग आ रहे हैं, आज किस तरीके से बहुत सारे स्टार्टअप्स हो रहे हैं, आज किस तरीके से छोटे सपने बड़े बन रहे हैं, हम उसकी बात करेंगे। हम बात करेंगे आपके सपनों की, हम बात करेंगे आपके एक नई शुरुआत। कार्यक्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे सपना खलको से, और नाम भी इनका सपना है और आज ये अपने सपने को पूरा कर रही है एमएसएमई के माध्यम से। सपना ने अपने मेहनत से हैंडीक्राफ्ट्स की शुरुआत की है और अपने शौक को पैशन में बदला और इस पैशन को पूरा करने में एमएसएमई ने साथ दिया। इन्हें बहुत सारे टूल्स दिए, इन्हें बहुत सारे मशीन्स दिए और आज सपना खुद का अपना काम कर रही है। बाहर से इन्हें ऑर्डर्स मिलते हैं और लोग इनके बारे में पूछते हैं। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं सपना, कार्यक्रम बढ़ते कदम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हैं सपना आप?
2: ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं?
1: बिल्कुल ठीक हूँ। सपना ये बताएं, कितना अच्छा लगता है जब आज आप जिस चीज के लिए सोची, जिसके लिए मेहनत की, आज उसे आपने एक मुकाम दिया है?
2: बहुत ही अच्छा लगता है सर, सबको ये सम्मान देते हैं, मुझे बुलाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है।
1: सपना हम ये बात करें कि कैसे आप एमएसएमई से जुड़ी, कहाँ पे आप गई, विभाग में कैसे मिली, क्या फॉर्म भरी, उससे पहले थोड़ा आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। सपना,
2: इसकी शुरुआत सर हम लोग की शौक से, हम लोग जो घड़ा में पेंटिंग करके, ऐसे टूटा फूटा घड़ा रहता था उसमें हमने पेंटिंग करके शुरुआत की, जिसके द्वारा हमें डे नीलम नगर निगम के द्वारा बुलाया गया, फिर हमारा काम देखा गया, फिर हमें भी एक समूह ग्रुप बनाने के लिए बोला गया जिसमें हमारे घर आके उन्होंने खुद ही ग्रुप बना के रजिस्टर किया। उनके बाद ऐसे धीरे धीरे उन्होंने हमें स्टॉल देना शुरू किया, जैसे कि वेंडर स्टॉल होता है टाइप से उन्होंने हमें स्टॉल लगाने का मौका दिया जिससे हम अपना प्रोडक्ट लोगों तक पहुँचा सके।
1: अच्छा, जो मेला वगैरह लगता है उस मेला में आपको स्टॉल्स भी दिए जाने लगे?
2: हाँ बिल्कुल सर, जैसे कि आपका खादी मेला हो गया, सरस मेला हो गया, ये वेंडर मार्केट देख रहे हैं वहाँ भी थर्ड फ्लोर में आपका स्टॉल लगता है, वो सिर्फ आपका नगर निगम के द्वारा ही, नगर निगम की लेडीज लोग के लिए ही रहता है, वो जो आपका महिला समूह बनाती है उन्हीं के लिए वो स्पेशल वेंडर स्टॉल लगाया जाता है ताकि वो अपना प्रोडक्ट, जो भी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है वो सब वहाँ पे वो बेच सके।
1: तो आप क्या क्या आर्ट बनाती है हैंडीक्राफ्ट्स में सपना?
2: सर हम डोकरा, सोहरई, फिर अभी भेल पेंटिंग है वो भी थोड़ा सीख रहे हैं, तो इसी तरह जितना भी कल्चर से जुड़ा हुआ पेंटिंग हो गया, फिर हैंडीक्राफ्ट मटेरियल अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आपका पुरखों से चलता आ रहा है, उस टाइप का हम लोग अभी रिसर्च कर रहे हैं।
1: तो सपना आप ये बताएं कि वो सपना जो आप बता रही हैं कि चार बहन ऐसे ही घर पे एक छोटी सी शुरुआत आप लोग किए, तो वो सपना कैसे उनको, वो अपने काम को बढ़ा पाई, कैसे वो एमएसएमई से जुड़ी?
2: सर एमएसएमई से तो एक मैम थी, वो हम पहले तो हमें ट्राइब इंडिया से जोड़ा उन्होंने काम देकर कि आप लोग पेंटिंग करते हैं, तो इसी तरह जोड़ा गया, तो फिर उन्होंने बताया कि एमएसएमई के द्वारा ट्रेनिंग प्रोवाइड होता है, तो उन्होंने हमें फॉर्म भराया, लेकिन वो पेंटिंग का नहीं था, वो फ्रेमिंग का था क्योंकि पेंटिंग हम लोग ऑलरेडी करते थे, तो इसलिए उन्होंने फ्रेमिंग का हमें 25 दिन का कोर्स होता है उसमें हम लोग से फॉर्म भरा के 25 दिन का कोर्स कराया, उसमें उन्होंने स्टेपन भी दिया। उसी तरह हम लोग ने अच्छा से काम किया तो लास्ट में हमने सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया, फिर टूल किट भी प्रोवाइड कराया।
1: यानी आपको ट्रेनिंग भी दी गई, आपको सर्टिफिकेट भी दिया गया और उसके बाद टूल्स भी दिए गए।
2: हाँ, टूल्स भी दिए गए सारे, तो जितना भी मेंबर थे सारे को।
1: अब आप पहले तो बताएं कि ट्रेनिंग आपकी कहाँ पे हुई और किस तरह, कितना कितना अच्छा अनुभव रहा आपका ट्रेनिंग का?
2: ट्रेनिंग हमारे एरिया हीनो में ही हुआ। जैसे कि आपका कुछ एरिया वाइज या एनजीओ के माध्यम से वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, तो उसी तरह एनजीओ हमारा हीनो में एक है, उन्हीं का संतोष बीएड कॉलेज करके उन्हीं का एक एनजीओ है यहाँ हीनो में। तो वो 25 दिन का हमें रूम अपना शेयर दिए, वहां से हमने ट्रेनिंग किया और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा, जिसमें हम लोग सीखे तो थोड़ा हिम्मत आया और भी आगे बढ़ने का कि हम लोग लेडीज लोग हम लोग फ्रेमिंग कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। फिर सर सब आए, मैम आई, धन्यवाद देंगे सबसे ज्यादा एतन मैम को।
1: तो ट्रेनिंग हुआ आपका, उसका सर्टिफिकेट मिला, आपको टूल्स में क्या क्या दिया गया सपना?
2: टूल्स में सर जितना भी हम लोग ट्रेनिंग किए, हैम्पर हो गया, आपका कटर हो गया, कैंची हो गया, जितना भी फ्रेमिंग का सामान आता है वो सारा पूरा एक बॉक्स करके हमें दिया गया।
1: यानी एक तो एक हैंड आपका खुद का पेंटिंग का था जो आप शुरुआत से कर रही थी, और आपको एमएसएमई से ये सहयोग मिला कि अब आप पेंटिंग तो कर ले रही हैं लेकिन फ्रेमिंग महंगा आता है, चीजें महंगी आती, तो आपको वो एमएसएमई के माध्यम से सारे टूल किट्स मिल गए। कितना एक बदलाव आया सपना आपके काम में जब आप एमएसएमई से कनेक्ट हुई, फ्रेमिंग सीखी, ट्रेनिंग ली, फिर ये टूल आपको मिले, ये सारे किट आपको मिले, क्या क्या बदलाव आया इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: बदलाव तो सबसे पहले से हमारा जो हम दूसरे के यहाँ से फ्रेमिंग करा के देते थे वो कॉस्टिंग बच गया, फिर प्रेस टाइमिंग बच गया कि हम लोग जाके दूसरे के यहाँ जाने में एक टाइम निकाल के वहाँ फ्रेमिंग कराने जाओ, फिर उसको दूसरे दिन लेने जाओ, तो ये हमारा जो टाइमिंग है वो टाइमिंग प्लस जो हमारा ट्रैवल है वो भी बचा, से एक कॉस्टिंग हम लोग का क्रिएट हुआ कि हम दूसरे को सस्ते दाम में भी दे सके और महंगे दाम में भी दे सके, इस तरह हमें अनुभव हुआ और बहुत कुछ सीखे हम लोग मार्केट में कि किस तरह से फ्रेमिंग करना चाहिए, कैसे देना, कहाँ पे कौन सा फ्रेमिंग चलता है, ये सब का थोड़ा अनुभव मिला।
1: कितना एक बदलाव आपकी जिंदगी में है, क्योंकि मुझे जहाँ तक मालूम है पहले आप दूसरी जगह जाके करती थी या छोटे से रूम में करती थी, और अब आपने अलग जगह ही ले लिया जहाँ पे अब आप काम कर रही हैं।
2: बहुत ही बड़ा एहसास है, ये तो बयां भी नहीं कर सकते सर।
1: नहीं, ये एक बदलाव आ गया आपका कि पहले बहुत छोटे से जगह पे कर रही थी, अब आपने स्पेशली एक जगह किराए पे लिया काम करने के लिए।
2: किराए पे भी लिया सर और लोगों को काम भी दिया। मैं खुद अकेले 4 बहन करती थी, लेकिन धीरे धीरे लास्ट 2014 में 2024 में वो लोग सारे अपने अपने सर्कल पे वो लोग चली गई, क्योंकि सारा लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म हो गया। वो लोग जिस जिस पे काम करती थी वो लोग फिर रिटर्न अपना अपना व्यवसाय शुरू कर ली, तो अकेले खुद हम करते थे, प्लस और एक मेरा सहयोग में एक स्टूडेंट थी, वो कॉलेज जाती है लेकिन कभी भी उनको बुलाते हैं वो हमेशा मेरे पीछे खड़ी रहती है। तो हमने 2 मेंबर से स्टार्ट किया, फिर काम अच्छा, ऑर्डर भी बढ़ने लगा, तो फिर एक बात रखे महिला लोग से कि आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, हम ऐसे काम करते हैं, एमएसएमई के साथ में काम करते हैं, बहुत अच्छा अच्छा ऑर्डर मिलता है, तो आप लोग सीखना चाहते हैं। किन्हीं से भी मैंने कॉस्टिंग का बात नहीं किया, उनको बोला फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पे सीख सकते हैं, तो सब जब भी टाइम मिले आप लोग मेरे यहाँ आइए, बिल्कुल सुबह मॉर्निंग 11 बजे से 7 बजे तक खुला रहता है ऑफिस, आप लोग कभी भी आके यहाँ पे ट्रेनिंग ले सकते, प्लस काम करने का आपको चार्ज भी दिया जाएगा।
1: तो आज कितनी महिलाएं आपके साथ काम कर रही हैं?
2: मेरे अंडर में 20 महिला है जो कि रेगुलर है, बाकी सब है स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट जो अपना पार्ट टाइम सब टाइम निकाल के काम करती है।
1: 20 महिलाएं आज आपके अंदर में काम कर रही हैं?
2: बिल्कुल।
1: वाह, तो तो बढ़ते कदम कार्यक्रम में आज हम अपने श्रोताओं को बताएं कि हम सपना से बात कर रहे हैं, और देखिए कैसे जब आप कुछ सोचते हैं और सच्ची लगन और ईमानदारी से मेहनत करते हैं और सरकार का सपोर्ट मिलता है तो आप कैसे अपने लक्ष्य को पाते हैं। आज सपना ने शुरुआत की और आज 20 महिलाएं सपना के साथ जुड़ी है। सपना, क्या आप लोगों से कहेंगी, क्योंकि झारखंड में हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि लोग अपना अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, अपने नए उद्योग की शुरुआत कर रहे हैं, नए बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, एमएसएमई का सहयोग ले रहे हैं, क्या लोगों को आप सजेस्ट करेंगी, क्या कहना चाहती हैं?
2: मैं तो सबसे यही कहना चाहूंगी कि आप लोग घर से बाहर निकलिए, सरकारी योजनाओं सबके बारे में जानिए, कहाँ से आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड होता है, कैसे आप एमएसएमई से जुड़ेंगे, कहाँ आपको सरकार इतना मदद कर रही है, तो आप लोग भी बाहर निकलिए ताकि रोजगार तो ऐसे है ही, लेकिन आप खुद का एक बिल्डअप तैयार करने के लिए आपको पहले ट्रेनिंग लेना होगा जो कि एमएसएमई आपको फ्री में सिखाती है, प्लस उसका स्कॉलरशिप भी देती है, लंच भी खिलाती है जो कि आपको खाली पेट रहने बिना खाली पेट आपको रहना नहीं पड़ता है, इसलिए
1: यानी आपको एक मेंटल सपोर्ट देती है कि आपको कहीं भी रुकना नहीं है, आपको थकना नहीं है।
2: हाँ, आपको थकना नहीं है, एनी टाइम आपके सपोर्ट में रहेगा, प्लस आपको सारा सामान भी प्रोवाइड करवाती है। आप जिस चीज का भी ट्रेनिंग लीजिएगा उसका आपको पूरी तरह, जब तक आपका सेटअप तैयार नहीं हो जाता तब तक वो आपके साथ भी रहेगी, सेटअप होने के बाद भी आपके सपोर्ट में रहेगी, आप बिना झिझक के आप एमएसएमई ऑफिस जा सकते हैं।
1: क्या बात है, हम अपने श्रोताओं को बता दें कि जिडको उद्योग विभाग झारखंड सरकार के द्वारा अब झारखंड एमएसएमई कनेक्ट पोर्टल की भी शुरुआत हो रही है। ये जो उद्योग की शुरुआत करना चाहते हैं, जो एमएसएमई से कनेक्ट करना चाहते हैं, उनके लिए एक ऐसा वेबसाइट, एक ऐसा पोर्टल होगा जहां पे सारी जानकारियां एक जगह पे होंगी। आप जब उस पोर्टल पे जाके आप विजिट करेंगे तो ट्रेनिंग भी आपको प्रोवाइड होगी, आप वहां से बहुत कुछ सीख सकते हैं, जो डिफरेंट स्कीम्स हैं उससे आप जुड़ सकते हैं, प्रोसेस क्या है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये सारा कुछ आपको झारखंड एमएसएमई कनेक्ट पोर्टल के माध्यम से कुछ ही दिनों में अब आपको ये इसकी जानकारी एक ही जगह पे मिलेगी। तो सरकार की, झारखंड सरकार की अपनी कोशिश है कि कैसे झारखंड में उद्योग को बढ़ावा दिया जाए, कैसे एक नए झारखंड का निर्माण किया जाए। सो सपना, क्या आगे सोच रही हैं, आगे क्या कुछ करना चाहती हैं आप?
2: आगे तो सर जो मेरा पेंटिंग है वो तो कभी मैं बंद नहीं करूंगी, क्योंकि वो मेरा पैशन है और मेरे से जुड़ी हर महिला का रोजगार है, वो तो मैं बंद नहीं करूंगी, लेकिन आगे का जितना भी सरकार से सहयोग होगा वो जरूर लेंगे और दूसरों को भी दिलाएंगे, यही मेरा सोच।
1: सपना, बहुत बहुत शुक्रिया, आप कार्यक्रम बढ़ते कदम में शामिल हुई, हमारे श्रोताओं के साथ इतनी अच्छी बातें की, और आपको आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं कि आप बिल्कुल ऐसे ही बढ़े। मैं एक आखिरी सवाल इसमें ऐड कर देता हूं, करना चाहता हूं कि आज कितना एक बदलाव आ रहा है, क्योंकि आप भी एक महिला है, आप घर भी संभाल रही है, आप बाहर भी देख रही है, महिलाओं से क्या कहना चाहती है, महिलाओं के लिए क्या कहना चाहती है?
2: देखिए घर तो सर हम लोग का घर तो हम लोग, आप शादी करिए या नहीं करिए घर तो आप ही को संभालना है। अगर आप में कुछ क्रिएटिविटी करने का है और करते भी है पार्ट टाइम या फुल टाइम, तो जरूर आप हिम्मत दिखा के आप आगे बढ़ने का कोशिश करिए, और जहाँ तक है सारे सपोर्ट के लिए आप बस एक कदम बाहर निकालिए तो पूरी दुनिया आपके साथ में है, ये मैंने लास्ट टाइम सीखा है।
1: क्या बात है,
2: कि मैं कभी रांची घूमी नहीं हूँ जबकि रांची की ही पैदाइश हूँ, रांची भी नहीं घूमी, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं हैदराबाद गई थी, बहुत लड़ झगड़ के गई थी।
1: क्यों गई थी आप हैदराबाद?
2: हैदराबाद सर कंपटीशन था, वहाँ पे इंटरनेशनल कंपटीशन था जो कि हम रांची से झारखंड को रिप्रेजेंट करने के लिए गए थे, तो वहाँ पे जितनी भी सारी महिला वेंडर आई हुई थी, तो इस चीज को देख के और भी मन में उत्साह आया कि मतलब कोई भी महिला, आपका छोटी 15 साल से लेके आपका 85 इयर्स की महिला लोग वहाँ पे आई हुई थी कॉम्पिटिटर बन के, तो ये चीज बहुत ही हिम्मत लगा कि मतलब कभी भी काम किसी के लिए रुकता नहीं है, बस हम लोग कदम एक कदम बाहर निकालने की जरूरत है।
1: तो यानी आज सपना बाहर भी निकली और आज बाहर के दुनिया में कदम से कदम भी मिला रही हैं। चलिए सपना, आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और अपने लक्ष्य को आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, और जिस तरह से आप खुद भी बढ़ी और आज आपके साथ बहुत सारी महिलाएं भी जुड़ी हैं, वो भी आगे बढ़ रही है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और कार्यक्रम बढ़ते कदम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ एक और मेहमान है। जिस तरीके से सपना से हमने बात की, देखिए जरूरी क्या होता है कि जब हम सरकार के योजनाओं की बात करते हैं तो हम और आप कितने जागरूक हैं। आप जागरूक रहेंगे, योजना का लाभ आपको मिलेगा। और आज जिस तरीके से समय आगे बढ़ रहा है, समय बदल रहा है, टेक्निक का जमाना आ रहा है, ऐसे में आपको भी खुद को तैयार करना है। आपके पास एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आप मेहनत के लिए तैयार होने चाहिए और बस एक शुरुआत कीजिए, सरकार का आपको साथ मिलेगा। आज एमएसएमई के माध्यम से किस तरीके से एक नए झारखंड का निर्माण हो रहा है, नए उद्योग आ रहे हैं, आज बहुत सारे बेकरी सेंटर्स, बहुत सारे टेक्सटाइल पे काम हो रहा है और रोजगार सृजन भी हो रहा है। अभी हमारे साथ एक महिला है, नीतू सिंह नाम इनका है, बेकरी का काम करती है और इन्होंने भी एमएसएमई के माध्यम से लोन लिया और अपने बेकरी को एक नया आयाम पहुंचाया। इनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके पास एक सपना है तो आप सपने को कैसे पूरा

0: की अगर हम बात करें, आपने भी एमएसएमई से सहयोग लिया, आपने लोन लिया, कितना एक मददगार हुआ, क्या चीजें थी जो पहले रुक जा रही थी और जब आपने लोन लिया तो वो क्या क्या सुविधाएं आपको मिल गई, किस तरीके से फिर आप आगे बढ़ी?
1: देखिए, शुरुआत में तो मेरा मन था कि किस तरह से मैं बेकरी उद्योग में जाऊं, तो शुरुआती दौर में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके लिए ओवन, मिक्सर, रेफ्रिजरेटर, बेकिंग टूल्स आदि की व्यवस्था मैं कैसे करूं, क्योंकि इन सब में काफ़ी पैसा लगने वाला था। तो एमएसएमई आपको 1 लाख से शुरू होकर के 10 लाख तक का लोन देती है, तो मैंने 10 लाख तक का लोन लिया जिसमें मुझे स्किल ट्रेनिंग भी मिला, बिजनेस लोन भी मिल गया और उसकी ब्रांडिंग और पैकेजिंग करने के लिए किस तरीके से होता है तो वो भी सरकार की तरफ से सुविधाएं दी जाती हैं, मार्गदर्शन मिल जाता है पूरे तरीके से। और मार्केटिंग इसकी आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, दुकान भी खोल के बैठ सकते हैं, बहुत सारे फेयर और मेला वगैरह भी लगते हैं, सरकार की तरफ से लगते हैं, प्राइवेट भी लगते हैं, उन सब में भी हम लोग इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका बेकरी उद्योग अगर आप प्रॉपर तरीके से शुरुआत करते हैं, एक प्लानिंग के तहत शुरुआत करते हैं, तो निश्चित रूप से आप सक्सेस हो सकते हैं।
0: यानी आज हम अपने श्रोताओं को ये भी बताएं, क्योंकि हमने कार्यक्रम में बताया कि हम एमएसएमई के माध्यम से किस तरीके से बढ़ सकते हैं, तो ये बहुत जरूरी कि पहले आपके पास एक प्रोजेक्ट हो।
1: हाँ,
0: एक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, पेपर वर्क आपको करना पड़ता है।
1: किसी भी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए जब तक आप कोई प्लानिंग नहीं करेंगे, एक प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे, उस प्रोजेक्ट में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आपको बताना कि आप कहाँ पे शुरू करेंगे, कैसे शुरू करेंगे, आपके पास कौन कौन लोग होंगे, आपके पास कैसे स्किल वाले लोग होंगे, मार्केटिंग कैसे करेंगे, उसका सामान कहाँ से लाएंगे, ये इन सब सारे चीजों का आपको पहले एक खाका तैयार करना है, एक पूरा बिल्डिंग तैयार करना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं।
0: सो ये कनेक्ट करना पड़ता है कि आप पहले प्रोजेक्ट सबमिट करते हैं, फिर बैंक से आपका टाई अप होता है, और अगर आपने एक सही प्रोजेक्ट दिया है और जिसका फ्यूचर है, तो इसके बाद एमएसएमई के माध्यम से आपको लोन प्रोवाइड भी होता है, आपको सहयोग भी मिलता है। सो आपको ट्रेनिंग भी मिला, जब बेकरी की बात हुई तो आपको ट्रेनिंग स्किल्स भी दिया गया, ट्रेनिंग में क्या क्या आपको बताया गया?
1: ट्रेनिंग मिला, उसमें यही बताया गया कि केक कैसे बनाया जाता है, केक में क्या टूल्स की व्यवस्था होती है, कैसे रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है और बेकिंग कैसे होता है, वो सारी चीजें, केक में पड़ने वाले सामान क्या क्या चीज होते हैं, उसका मटेरियल और कितना मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि केक बनाने में सबसे चीज जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए वो होता है केक का मात्रा, उसमें पड़ने वाले सामानों की मात्रा। अगर वो चीज अगर आपका सही नहीं रहेगा तो इस बेकरी उद्योग में आप सक्सेस नहीं कर सकते हैं।
0: यानी एक सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप किसी व्यवसाय के बारे में सोच रहे हैं और सरकार आपको एक तो मॉनेटरी टर्म्स से भी हेल्प कर रही है, दूसरा जैसे सपना ने बताया कि उसको टूल्स के माध्यम से हेल्प किया गया, कि वो तो पेंटिंग करती थी लेकिन फ्रेमिंग बाहर से करवाती थी, फ्रेमिंग के बारे में उसको ट्रेनिंग भी मिली, यानी स्किल भी किया गया, फिर सारे टूल्स भी दिए गए, वैसे ही नीतू जी को भी ट्रेनिंग भी दी गई और लोन भी दिया गया, यानी हर कुछ है आपके लिए, बट ये है कि आप इसके प्रति जागरूक है या नहीं, आप इसके प्रति सचेत है या नहीं, कितना एक बदलाव आ जाता है जिंदगी में जब आप एक उद्योग की शुरुआत करते हैं?
1: देखिए, आत्मविश्वास आ जाता है कि आप कोई काम कर सकते हैं। बेकरी उद्योग को करने में थोड़ा सा समय जरूर लगता है, क्योंकि जब तक आप उसकी ब्रांडिंग नहीं करते हैं, उसको लोगों तक पहुंचाते नहीं है, आपका खुद का एक टेस्ट होना चाहिए, लोगों तक पहुंचने का माध्यम भी होना चाहिए, क्योंकि आजकल डिजिटल का जमाना है, तो हमको डिजिटल के जरिए से भी लोगों तक पहुंच बनानी होती है। तो अगर आप इन सब चीजों में सक्सेस है तो डेफिनेटली आप अपने किसी भी उद्योग में, बेकरी ही नहीं, किसी भी उद्योग में आप सक्सेस हो जाएंगे, वो आपका ये 100% है कि आप सक्सेस हो जाएंगे।
0: एक चीज आप देख रहे हैं कि हम लोग हमेशा एक नए झारखंड की बात करते हैं कि आज अब झारखंड का एक नया दौर चल रहा है, ये जो उद्योग आ रहे हैं या फिर जो हम स्टार्टअप की शुरुआत कर रहे हैं या फिर हम एमएसएमई के माध्यम से आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, ये आज रोजगार सृजन का भी एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया है, जो खुद तो शुरुआत कर रहा है, कम से कम अपने साथ कोई 20 लोग, कोई 50 लोग, कोई 100 लोगों को भी रोजगार दे रहा है।
1: एमएसएमई सरकार के द्वारा शुरू किया गया वह योजना है जिसमें छोटे छोटे स्तर पर कुटीर उद्योगों को बड़े पैमाने पे सारी सुविधाएं देकर के स्टेबल किया जा रहा है। ये सरकार के तरफ से, देखिए एमएसएमई क्या है, एमएसएमई वो है जहाँ पर हर किसी को नौकरी नहीं मिल सकता, तो सरकार का कहना है कि जब हर लोगों को नौकरी नहीं प्रोवाइड किया जा सकता है तो छोटे छोटे उद्योगों को शुरू करके आप अपने आप को सशक्त कर सकते हैं। ये इम्पावरमेंट की

0: बात है, और एमएसएमई एम्पावरमेंट करता है लोगों को, एम्पावर्ड करता है लोगों को, तो ये एमएसएमई में बहुत अच्छी बात है कि लोग छोटे छोटे व्यवसाय को बड़ा बड़ा आकार दे रहे हैं।
1: यानी एक तो सबसे पहली बात कि आपको स्किल्ड करता है। आज की तारीख में ये जरूरी नहीं है कि आप एक पक्की नौकरी ही कर रहे हैं। आज की तारीख में आप अगर स्वावलंबी हैं, आप खुद को स्वावलंबी बनाएं, आपके पास बहुत सारा जरिया है। सरकार आपको स्किल्ड कर रही है, आपको ट्रेनिंग्स दे रही है, आपको लोन प्रोवाइड कर रही है। आपके पास एक आइडिया होना चाहिए। आप उस आइडिया के साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो आपके पास बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या एक मैसेज देना चाहते हैं सभी को?
0: जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं जीवन में, आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, वो लोग आत्मविश्वास के साथ एमएसएमई से जुड़ सकते हैं, उससे लोन ले सकते हैं और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं।
1: आज ये कह सकते हैं कि पहले और अब में बहुत एक बदलाव आपकी जिंदगी में भी आ गया।
0: हाँ, बहुत बदलाव आ गया। पहले मैं पूंजी के अभाव से जूझ रही थी, थोड़े स्किल की भी कमी थी, थोड़े मार्केटिंग की भी कमी थी, और ये सब इंटीग्रेटेडली मुझे एमएसएमई के माध्यम से प्राप्त हुआ और मैं अब अपने बिजनेस को पहले से अपेक्षा अब ज्यादा मजबूत स्थिति में पा रही हूँ।
1: क्या आप एक लक्ष्य रखती हैं? जब आपने एक नई चीज की शुरुआत की, अब आपने क्या देखा है? भविष्य में कहाँ तक आपको जाना है, क्या सोच रही हैं?
0: इस उद्योग को शुरू करने से पहले मैं एक दो लोगों के साथ ही अपना ये काम को आगे बढ़ाई थी, लेकिन अब चूंकि ये मेरा काम बहुत बढ़ गया है तो मैं और लोगों को भी रोजगार दे पाई हूँ। तो जो लोग मुझसे जुड़े हैं, जिन लोगों को मैंने रोजगार दिया है, उससे उनका घर परिवार सभी आर्थिक रूप से सबल हुए हैं। तो अब मैं इस चीज को थोड़ा सा और आगे भी बढ़ाना चाहती हूँ, ताकि और महिलाएं और परिवार मुझसे जुड़ सके, ताकि उनका भी भरण पोषण हो सके, वो भी समाज में एक अच्छी जिंदगी जी सके। क्योंकि नौकरी नहीं है, उद्योग, मतलब ये नौकरी चाहे उद्योग हम क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि हम अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, हम एक अच्छी जिंदगी जी सके। तो मेरा यही है कि मैं और लोगों को भी इसमें जोड़ूंगी और अपने इस बिजनेस को एक्सपेंड करूंगी, ताकि और लोग जुड़े और मेरा भी कल्याण हो और लोगों का भी कल्याण हो।
1: बहुत बहुत शुक्रिया नीतू जी, कार्यक्रम बढ़ते कदम में शामिल होने और हमारे श्रोताओं के साथ अपनी बातों को साझा करने के लिए।
0: धन्यवाद कमलेश जी, मेरा भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने कार्यक्रम में स्थान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो आज बढ़ते कदम कार्यक्रम में हमने एमएसएमई की बात की, हमने उन सपनों की बात की जो कभी अधूरे रह जाते थे, क्योंकि कभी मॉनेटरी टर्म्स प्रॉब्लम होता था, कभी आइडिया नहीं होता था, कभी सपोर्ट नहीं होता था, कभी स्किल नहीं होता था। आज सब कुछ है, एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना है, वो है हमारी झारखंड सरकार, सरकार के सारा। और दूसरी बात कि केंद्र के साथ मिलकर झारखंड सरकार बहुत सारी योजनाओं को चला रही है। जब एमएसएमई की बात करते हैं तो केंद्र के सहयोग से झारखंड में उसे बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है रैंप प्रोग्राम के माध्यम से, और इसी प्रोग्राम के माध्यम से अलग अलग राज्यों में, देश के अलग अलग राज्यों में एक पोर्टल की शुरुआत हुई है। उस पोर्टल में आप जाकर, मैंने पहले भी बताया कि आपको एक ही जगह पर एमएसएमई से जुड़ी तमाम जानकारियां मिलेंगी। सिर्फ जानकारियां ही नहीं, बल्कि अगर आपको ट्रेनिंग लेना है तो ट्रेनिंग मिलेगा, आपको किसी भी योजना की जानकारी चाहिए वो भी मिलेगा, आपको एलएमएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत सारी चीजें मिलेंगी, यानी एक जगह पे तमाम वो चीज जो आपके लिए है। बढ़ते कदम कार्यक्रम के आज के इस अंक में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ एक नई सोच, नई शुरुआत के साथ आप आगे बढ़ेंगे, सरकार के द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं का लाभ लेंगे, खुद भी लाभ लेंगे और जिन्हें जानकारी नहीं है उन्हें भी जानकारी देंगे, उन्हें भी जागरूक बनाएंगे। आपके एक प्रयास से आपकी जिंदगी बदल सकती है। कार्यक्रम की प्रस्तुति थी प्रभु शरण की। अब मुझे यानी कमलेश कुमार मिश्र को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बढ़ते कदम, प्रस्तुति थी प्रभु शरण की।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज तथा एफएम के 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब आपको

अब से कुछ ही देर में यानी 4:35 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीत संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम। शाम के 5 बजे और 6 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार। 5:02 का समय होगा युवाओं का पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम युववाणी का, जिसमें आज आप चर्चा सुनेंगे युवाओं में कौशल विकास, समय प्रबंधन, कुछ इतिहास के बारे में, कुछ रोचक तथ्य और साथ ही कुछ फिल्मी गीत संगीत आप सुनेंगे। प्रस्तुतकर्ता होंगे गौरव पांडे। 5:30 का समय होगा हमारे औद्योगिक प्रसारण का श्रमिक लोक, जिसमें आज चर्चा होगी आज की बचत कल की सुरक्षा, श्रमिकों के लिए जरूरी है वित्तीय प्रबंधन, अल्प बचत योजनाएं। प्रस्तुति होगी प्रभु शरण की।

6:02 पर आप सुनेंगे खेती बारी, जिसमें आज चर्चा होगी मिट्टी जांच की उपयोगिता के विषय में। प्रस्तुति होगी प्रभु शरण की। 6:32 का समय होगा कार्यक्रम हमारी दुनिया का, जिसमें आज चर्चा का विषय होगा घर के बुजुर्गों का सम्मान करें। आप एक हिंदी वार्ता भी सुनेंगे, राजयोग द्वारा सकारात्मक जीवन शैली और आंतरिक शांति। प्रस्तुति होगी प्रभु शरण की। शाम के 7 से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और 7:15 का समय होगा आदिवासी अखड़ा का, जिसमें आज आप सुनेंगे आदिवासी अखड़ा को आज आप सुनेंगे मुंडारी भाषा में। आज चर्चा होगी जल संरक्षण और वर्षा जल प्रबंधन के बारे में। साथ ही चर्चा आप सुनेंगे वन है तो जीवन है, वनों का संरक्षण है जरूरी। प्रस्तुति होगी गौरव कुमार पांडे की।

संध्या 7:45 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। 8 बजे का समय होगा फिल्मी गीत संगीत के कार्यक्रम रजनीगंधा का। सुर्खियों में इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे 8:30 पर। 8:45 पर हम आपको लिए चलेंगे हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुन पाएंगे समाचार।

रात के 10 बजे आप सुनेंगे नाटक और 10:30 का समय होगा शास्त्रीय संगीत का, जिसमें हमारे आज के कलाकार होंगे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। इनसे आप बांसुरी पर राग धानी में आलाप और जोड़ सुन पाएंगे। रात्रि 11 बजे से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। रात्रि के 11:10 पर हमारी आज की सभा संपन्न हो जाएगी।

श्रोताओं, ये थी शेष बचे कार्यक्रमों की कुछ मुख्य मुख्य जानकारी। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अगला कार्यक्रम सांझ सरगम बस कुछ ही देर में।

कार्यक्रम सांझ सरगम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रजनी। सांझ सरगम के इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए फिल्म सुर से ये पहला गाना महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म सुर से ही माँ लक्ष्मी अय्यर की आवाज में ये प्यारी सी पेशकश। शाम का समय दिन भर की भाग दौड़ के बाद शांति, सुकून और विचारों का पल होता है। ये वो पल होता है जो हम अपनों के साथ, अपने परिवार के साथ बिताते हैं और कोशिश करते हैं कि दिन भर की हमारी थकान जो है वो दूर हो जाए। अपनों का साथ, बच्चों की खिलखिलाहट, साथ में हो अगर चाय पकौड़ों का साथ तो मज़ा तो दुगना ही हो जाता है। शाम का समय सच में हमें बहुत ही पसंद आता है। आसमान में लाल और नारंगी रंग का यह मिश्रण कुदरत की सबसे खूबसूरत कलाकारी में से एक माना जाता है। तो चलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं सांझ सरगम कार्यक्रम का ये अगला गाना। और ये अगला गाना हमने लिया है मुकेश की आवाज में, धुन तैयार की है योगेश ने और संगीत है सलील चौधरी का। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।

0: राख के ढेर में चलते हुए शोलो को हाथ मत लगा, चल जाएगी।
1: नाम मेरा शबनम है, पर आग तो मैं भी हूं शाका।
2: दिल जले, दिल जले।

आरजू झूठ है, कहानी है, आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

बनाती हो तुम रेत के ये महल, जिनको एक रोज खुद ही मिटाओगी तुम। आज कहती हो इस दिल जले से प्यार है तुम्हें, कल मेरा नाम तक भूल जाओगी तुम।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म दिल जले से उदित नारायण और पूर्णिमा श्रेष्ठा की आवाजों में ये प्यारा सा गाना। संगीत तैयार किया था अनु मलिक ने और धुन थी जावेद अख्तर की। श्रोताओं, साँझ सरगम आप सुन रहे हैं कार्यक्रम। हमें उम्मीद है आपकी शाम भी बहुत ही अच्छे से बीत रही होगी, अपनों के साथ, अपने परिवार के साथ। सभी के जीवन में कुछ न कुछ परेशानी आती है, तो कहीं ना कहीं हम उन परेशानियों से लड़ने का हमें जज्बा भी रहता है जब हमारे पास अपनों का साथ रहता है। तो उम्मीद मत हारिए, अपनों के साथ रहिए, हमारे कार्यक्रम का लुत्फ लेते रहिए, क्योंकि हमें पूरी उम्मीद है कि हम सबकी जिंदगी में खुशियों का पल जरूर आएगा।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सांझ सरगम, और इसी गाने के साथ यह कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार। अब तक रांची सांसद संजय सेठ ने आज विधायक नवीन जायसवाल और महापौर रोशनी खलखो के साथ रांची के रातू रोड स्थित ओटीसी ग्राउंड के निकट आधुनिक ट्रैफिक पुलिस पोस्ट का लोकार्पण किया। इस दौरान नवनिर्मित ट्रैफिक पुलिस पोस्ट की चाबी पुलिस पदाधिकारियों को सौंपी गई। बोकारो जिले की पुलिस ने साइबर अपराध को अंजाम देने वाले 2 गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरफ्तार गिरोह के पास से कई सिम कार्ड, मोबाइल सहित अन्य सामान बरामद किए हैं। लोहरदगा जिले के कुड़ू प्रखंड स्थित चीरी पंचायत में कल देर शाम हाथियों ने 2 मकानों को ध्वस्त कर दिया और वहां रखा अनाज भी खा गए। इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को दे दी गई है। साहिबगंज जिले में उपायुक्त दीपक दुबे ने जिला अंतर्गत संचालित सर्वजन पेंशन योजना तथा मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों की प्रगति पर चल रहे सत्यापन कार्य की समीक्षा की। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि 3 दिनों के भीतर सत्यापन कार्य पूरा कर प्रतिवेदन समर्पित करें, ताकि विभागीय निर्देशों के अनुरूप पात्र लाभुकों को पेंशन का भुगतान शीघ्र सुनिश्चित किया जा सके। दामोदर घाटी निगम के 79वें स्थापना दिवस पर कोडरमा थर्मल पावर प्लांट को सर्वश्रेष्ठ उत्पादन स्टेशन और ग्रीन प्लांट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम में परियोजना प्रमुख संजय कुमार ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। और रामगढ़ जिले के भुरकुंडा थाना क्षेत्र में पुलिस को अवैध हथियार निर्माण के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पंचायत भवन के पीछे एक घर में संचालित मिनी गन फैक्ट्री का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने हथियार बनाने के उपकरण और अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए हैं। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5:02 हो चुके हैं। संध्याकालीन सभा में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रमों की शुरुआत करने से पहले आइए आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी ही देर में यानी संध्या के 5:05 पर आप सुनिएगा कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही गायिका लता मंगेशकर को। संध्या 5:30 पर समय होगा किसान भाई बहनों को संबोधित कार्यक्रम खेती गृहस्थी। संध्या 6:00 आप सुनेंगे मुख्य समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। संध्या 6:02 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम हो अखड़ा। संध्या 6:30 पर आप सुनेंगे महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम मनोरमा। संध्या 6:55 पर आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के रांची केंद्र जहां से प्रसारित किए जाएंगे प्रादेशिक समाचार संध्या 7:00 और उसके बाद जिले में आज कल।

संध्या 7:15 पर हम आपको सुनवाएंगे श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। रात्रि 8 बजे समय होगा फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम रजनीगंधा का। रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही आप सुनेंगे न्यूज़ एट नाइट रात्रि 9 बजे। रात्रि 9:15 पर आकाशवाणी रांची के कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाएगा। रात्रि 10 बजे हम आपको सुनवाएंगे गजलों का कार्यक्रम महफिल। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। रात्रि 11 बजे हिंदी समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार रात्रि 11:05 पर। और रात्रि 11:10 पर संपन्न होगी हमारी आज की सभा। श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गुलदस्ता। आज का गुलदस्ता हमने आपके लिए सजाया है एक ही गायिका लता मंगेशकर के द्वारा स्वरबद्ध किए कुछ फिल्मी गीतों से। तो करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और सुनवाते हैं ये पहला गीत लता मंगेशकर के स्वर में। फिल्म है लम्हे।

और अब सुनवाते हैं फिल्म बाबू का ये गीत, बोल मजरूह के और संगीत राजेश रोशन का, आवाज लता मंगेशकर की।

0: विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
0: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
0: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: इस विराम के बाद श्रोताओं कार्यक्रम गुलदस्ता में एक बार फिर से आपका स्वागत है, और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं फिल्म हीरो का ये गीत, बोल आनंद बख्शी के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म पत्थर के सनम का ये गीत, आवाज़ लता मंगेशकर की। और इसी गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम गुलदस्ता अब हम यहीं समाप्त करते हैं। अभी आपने सुना कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही गायिका लता मंगेशकर को। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब प्रस्तुत है किसान भाई बहनों को संबोधित कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को कोमल नायक का जोहार। उम्मीद करते हैं किसान भाई बहनों, आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम जैविक खाद और उसके लाभ, इस विषय पर आप सभी को जानकारी देंगे। जैविक खाद पौधों और पशुओं के अवशेषों जैसे गोबर, मूत्र, हरी पत्तियों और रसोई के कचरे को सड़ाकर बनाई जाती है। यह पूरी तरह से प्राकृतिक होती है, जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाती है। जैविक खाद मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं। गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद और हरी खाद। गोबर की खाद पशुओं के गोबर, मलमूत्र और बिछावन यानी चारे के अवशेष को सड़ाकर बनाई जाती है। यह नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का बेहतरीन स्रोत है। कंपोस्ट खाद रसोई के कचरे, सूखी पत्तियों और फसल के अवशेषों को गड्ढे में सड़ाकर तैयार की जाती है। वर्मी कंपोस्ट खाद यह केंचुआ द्वारा जैविक कचरे को खाकर निकाली गई मल से बनती है। यह मिट्टी को भुरभुरी और पोषक तत्वों से भरपूर बनती है। हरी खाद इनमें सनई, ढेंचा, तेजी से बढ़ने वाली फसल को खेत में ही उगाकर और फिर उन्हें मिट्टी में जोतकर मिला दिया जाता है। जैविक खाद बनाने के लिए घर या खेत में एक गड्ढा या प्लास्टिक का ड्रम लें, उसमें हरी पत्तियां, रसोई का कचरा यानी छिलके, गीला वाला कचरा और सूखा कचरा डालें। ऊपर से देसी गाय का गोबर व गोमूत्र का घोल डालें। नमी बनाए रखने के लिए समय समय पर पानी छिड़के। लगभग 60 से 90 दिनों में उत्तम जैविक खाद बनकर तैयार हो जाती है। इस खाद में दीमक से बचने के लिए आप नीम या प्लास की पत्तियां भी मिला सकते हैं। किसान भाई बहनों, इस खाद का इस्तेमाल करने से आपको काफ़ी लाभ प्राप्त हो सकते हैं। यह मिट्टी की जलधारण क्षमता को बढ़ाती है और इसे भुरभुरी बनाती है, जिससे जड़ों तक हवा आसानी से पहुंचती है। इसमें पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इसके इस्तेमाल से उगाई गई फसलें रासायनिक जहर से मुक्त होती है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। रासायनिक उर्वरकों के विपरीत यह पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करती और मृदा में लाभकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाती है। जैविक खाद मिट्टी में कार्बन और अच्छे जीवाणुओं की संख्या बढ़ाती है। यह जीवाणु मिट्टी को भुरभुरा बनाती है, जिससे पौधों की जड़ें गहरी रहती है। रासायनिक खादें कभी कभी पौधों को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन जैविक खाद एकदम सुरक्षित है। यह पौधों की बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाती है। इसके इस्तेमाल से रासायनिक खादों पर खर्च भी कम होता है। तो किसान भाई बहनों, अभी हमने आपको जानकारी दी जैविक खाद और उसके लाभ के बारे में। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, आनंद लेते हैं उड़िया लोकगीत का जितेंद्र प्रधान और साथी के स्वरों में।

0: जलवायु क्या है और हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जलवायु क्या होती है? जलवायु वह सामान्य मौसम है जो हम किसी जगह पर लंबे समय तक, लगभग 30 साल तक महसूस करते हैं। यह सूर्य की रोशनी, हवा, जमीन, समंदर और बर्फ से प्रभावित होती है। वैज्ञानिक विभिन्न क्षेत्रों जैसे भूगोल, महासागर विज्ञान और मौसम विज्ञान से जुड़ी जानकारियों को एक साथ लेकर अध्ययन करते हैं, ताकि हम ये समझ सकें कि हमारा ग्रह कैसे काम करता है। लेकिन आज हमारी जलवायु पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रही है। इसका सबसे बड़ा कारण मानव गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैस का निकलना है। इस वजह से गर्मी बढ़ रही है, बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है और समंदर का जलस्तर भी बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए सबसे पहला कदम इससे समझना है। इसलिए यूनेस्को जलवायु परिवर्तन की जानकारी को आसान और सरल भाषा में समझाने का समर्थन करता है, ताकि स्कूल के बच्चों से लेकर समुदाय के नेता तक सभी ये जान सकें कि धरती पर क्या हो रहा है और हम इसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। इस विषय पर एक खास प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जो आपको दिखाएगी कि जलवायु परिवर्तन हमारी दुनिया को कैसे प्रभावित कर रहा है। इसमें साफ पानी, बेहतर स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों को भी शामिल किया गया है। यह प्रदर्शनी अब कई भाषाओं में उपलब्ध है। इसे पहले से ही भारत, भूटान और श्रीलंका में साझा किया जा रहा है। इसे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है और वे अपने आप को बदलती जलवायु के लिए तैयार कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए, अधिक जानिए और बदलाव का हिस्सा बनिए। हम सभी के लिए जलवायु के बारे में जानना बेहद जरूरी है।
1: मैं राजकुमार राव, पश्चिमी सिंहभूम से। मैं धान की फसल के उगाई से कटाई तक के बारे में, कैसे रख रखाव करना है उसके बारे में बताऊंगा। तो मैं शुरू से बताना चाहता हूँ खेत किस तरह तैयारी की जाती है और उसकी बिचड़ा कैसे तैयार की जाती है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि धान की जो एक संकर नस्ल की होती है और एक देहाती जो गांव घर में करते हैं वो है। तो संकर नस्ल के बारे में बताना चाहता हूँ। तो संकर नस्ल में भी बहुत तरह के धान हैं, जैसे एडवांटा है, पाइनियर है, फिर सर बहुत तरह के हैं। तो एक मैं पाइनियर संकर धान किस्म की धान के बारे में बताना चाहता हूँ। तो उसको सबसे पहले खेत की तैयारी की जाती है। खेत में बिछड़ा पैद उगाने के लिए सबसे पहले खेत को समतल करके 1 किलो से लेकर 10 किलो तक, उससे पर जितना जिस तरह की खेती करते हैं किसान, तो उस तरह के, जैसे 1 किलो के बारे में बता रहा हूँ, तो 1 किलो बिछड़ा उगाने के लिए कम से कम 3 स्क्वायर फीट का, 3 स्क्वायर फीट का ये खेत की समतल किया जाता है। उसमें अच्छी तरह से बीज को फैलाया जाता है, मतलब फिर उसमें ये खाद दिया जाता है ऊपर से। फिर अगर रासायनिक खाद है तो वो तो ज़रूरी है, और उसमें से एक कंपोस्ट खाद होता है वो भी दिया जाता है, या तो गोबर खाद है उसको दिया जाता है ऊपर से। उसके बाद हल्की मिट्टी से उसको ढक दिया जाता है, और ढकने के बाद उसको हल्की नमी किस फुहारा से हल्का हल्का उसको सिंचाई की जाती है। सिंचाई करने के बाद उसको, उस बिचड़े को उगने में कम से कम 5 या 6 दिन लगता है। उसके बाद उसको बड़ा होने में 21 दिन का समय रखा गया है। 21 दिन के बाद उस बिचड़े को मतलब तैयार समझा जाता है, तो 21 दिन के बाद उसको किसान आसानी पूर्वक रोप सकते हैं, उसमें कुछ कीड़े भी नहीं लगेंगे ना कुछ नहीं। जब आपका जिस खेत में वो धान लगाना है तो उस खेत में सबसे पहले सिंचाई करके या तो पानी उसमें लगा करके उसको उस खेत को बनाया जाता है, समतल किया जाता है। उसमें रोपने से एक दिन पहले रासायनिक खाद दिया जाता है, और रासायनिक खाद में DAP देते हैं, DAP यूरिया, नाइट्रोजन जो होता है वो, फिर सल्फेट फास्फेट और रासायनिक खाद है उसको दिया जाता है। उसमें से फिर थोड़ा बहुत कीटनाशक दवा भी उसमें दिया जाता है, मिला करके फिर उसको खेत में डाल दिया जाता है, और डालने के बाद उसको समतल करके मतलब दूसरे दिन फिर उस बिचड़े को उखाड़ करके दूरी के हिसाब से, अंगुली बित्ता के हिसाब से, एक अंगुली बित्ता या तो उसको सेंटीमीटर में कहेंगे तो 3 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए प्रत्येक बिचड़ा की दूरी, और हर बिचड़ा को डालने से कम एक ही पौधा उसमें लगाना चाहिए। फिर वो जैसे खेत तैयार हो गया, फिर उसको उस बिचड़े को हम फैला देते हैं पूरा खेत में रोपनी के हिसाब से, मतलब उसको हल्का पानी में उसको फिर गाड़ देते हैं। गाड़ने के बाद उसको 15 दिन के अंतर या 10 दिन के अंतर में एक बार उसको नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, तो उस नाइट्रोजन को जो यूरिया है उसको डाल देते हैं। उससे पहले किसान ये भी करते हैं, जैसे जो खरपतवार जो होता है, जो घास होती है अन्यत्र मतलब ऐसे उस खेत में निकल आते हैं, उसके लिए पूर्व से रासायनिक एक एक तरह का रासायनिक दवा होता है, जो उस खरपतवार को उगने नहीं दिया जाता है, तो उसको डाल देते हैं। फिर डालने के बाद वो खरपतवार की अथी नहीं नहीं लगाना पड़ता है, नहीं उगाना पड़ता है, नहीं उग पाता है। फिर उसके बाद जैसे हम 15 दिन के बाद यूरिया तो दे दिए, मतलब फसल लग धान लगने के बाद, बिछड़ा के बाद धान लगा, तो धान लगने के बाद 10 या 15 दिन के अंतराल में एक बार यूरिया देते हैं। उसके बाद उस धान की जो कीट पतवार जो रहता है, कीट पतंग जो बैठते हैं, उसके लिए हल्की सी उसमें एंडोफिल नाम की एक दवा होती है, उसको छिड़काव किया करते हैं स्प्रे मशीन से, जिससे वो मतलब उसकी जो कीट है सो मर जाते हैं, और वो अच्छा बाली निकालते हैं। फिर उससे एक बिचड़ा से जो रोपा गया है, उस बिचड़े से बहुत सारे बाली क्या बोलते हैं उसको वो निकल आते हैं। तो इस तरह एक बिचड़े पे जैसे रोपा जाता है तो कम से कम 10 या 12 उसमें कली निकलता है, कली बोल देंगे उसको, तो एक बिचड़े पे 12-13 या अच्छा खेत रहेगा तो उसमें 20 तक भी आ जाते हैं, तो उससे 20 बाली भी उसमें आ जाएंगे। फिर से जब खेती हो ये बाली निकलने के समय हम उसमें पानी की जो मात्रा होती है उसको हम ठीक ठाक से उसको रखाव देंगे, मतलब खेत में अच्छा पानी हो, ज़्यादा पानी ना हो, मतलब शुरू से अंत तक पानी की देखभाल करनी जरूरी है। कम से कम 1 सेंटीमीटर तक पानी की आवश्यकता होती है हर खेत में, तो देना चाहिए। फिर जब खेतों में जब फसल बाली उगाएंगे तो उस समय भी कीट पतंग को बचाव के लिए कीटनाशक दवा का प्रयोग करते हैं। तो एक फसल जैसे तैयार होने में मतलब संकर नस्ल किस्म की जो धान है वो कम से कम उसकी एक मात्रा मतलब 2 या 8 के हिसाब से होता है, एक उसमें नंबर बना दिया गया है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर का जो खेत है, जो सबसे ऊंचा जगह खेत है उसको तीन नंबर में रखा गया है, उसमें उसी तरह का जो धान है संकर नस्ल का धान उसको उसमें लगाते हैं। और एक नंबर का, एक या दो नंबर का जो धान है उसमें से भी मतलब एक दो नंबर का किस्म का धान लगता है, जो सबसे बड़ा होता है, जहाँ पानी का ठहराव ज़्यादा होता है वहाँ एक नंबर का धान को लगाते हैं। जैसे पाइनियर में 23P 37 बहुबली नाम करके संकर किस्म की धान है उसको डालते हैं। तीन नंबर का खेत में एक अडबांटा का बहुत अच्छा धान है उसको वो वाला डालते हैं तीन नंबर में। इस तरह एक एक फसल को तैयार होने में कम से कम 90 से 110 दिन का बीज लगता है। जो एक नंबर का खेत है उसमें से कम 110 दिन लगेगा और तीन नंबर के खेत में 90 दिन में हो जाएगा, फसल तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप आते हैं उसमें उसको कटाव किस तरह करना चाहिए। जब बाली तैयार हो जाते हैं तो उस बाली को कब और कैसे काटा जाता है इसके बारे में बता रहा हूँ। तो उस बाली जब तैयार हो जाता है तो उसको खेत को सूखने देते हैं अच्छी तरह से। फिर बहुत से किसान हैं कि थ्रेसर मशीन से भी काटते हैं, कटवाते हैं मशीन से लगा करके, या तो फिर अपने घर किसान अपना घर परिवार के लोग काट के फिर उसको दौनी करते हैं, फिर दौनी करके फिर उसको अपना बोरा वोरा डाल करके सबको पैकेज करते हैं। जिससे कटाव होने के बाद उसको उस धान को फिर अपने जिस हिसाब से रखना है उस हिसाब से उसको बाज़ार में विक्रय भी करते हैं, रख के अच्छा खासा मिल जाता है। अगर सरकारी लैंप्स के आधार पर बेचते हैं तो सरकार के हिसाब से जो 18 से 20 रुपया प्रति केजी या तो 1800 से 1900 रुपया 2000 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से किसान को मुनाफा होता है। तो धान की खेती करने में एक पूंजी भी लगाया जाता है लगता है, लेकिन एक किसान को जैसे होना चाहिए एक अपना खेत में पैदा करता है तो कम से कम 75% उसको उस किसान को आमदनी हो जाता है। 70% या 78% बीज हुआ, खाद हुआ, बीज का प्रत्येक संकर किस्म के जो बीज का धान है वो कम से कम 200 से लेकर 350 रुपया प्रति केजी के हिसाब से मिलता है। और जब और एक सल्फेट फास्फेट जो कीटनाशक दवा है रासायनिक खाद है ये सब भी बाज़ार में अभी बहुत महंगाई हो गई है, इसलिए वो भी कम से कम प्रति हेक्टर के हिसाब से 50 केजी 60 केजी लगभग रासायनिक खाद का आवश्यकता हुई जाता है। उसके बाद फिर निकवन कोड़न कटाई छटाई मतलब 75% सुप्रे 70% तक उस किसान को आमदनी होता है, 30% आसपास उसको खर्च लग जाता है। मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि किसान भाई बहनों को कि खेती करे कुछ मन से करे लगाओ, पूंजी लगाने आवश्यकता है, ऊपर से फिर आमदनी अच्छा कर सकता है। तो यही मैं कहना चाहता हूँ इसके साथ में।

किसान भाई बहनों, अभी आप जानकारी ले रहे थे धान की खेती और देखभाल, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे राजकुमार उरांव। कार्यक्रम के अंत में सुनवा रहे हैं नागपुरी लोकगीत रुना देवी और साथी के स्वरों में।

तो किसान भाई बहनों, इस लोकगीत के साथ ही आज का हमारा खेती गृहस्थी कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम से कोमल नायक को दे विदा। जोहार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती गृहस्थी। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर। और अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे मुख्य समाचार।

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। रांची सांसद संजय सेठ ने आज विधायक नवीन जायसवाल और महापौर रोशनी खलखो के साथ रांची के रातू रोड स्थित ओटीसी ग्राउंड के निकट आधुनिक ट्रैफिक पुलिस पोस्ट का लोकार्पण किया। इस दौरान नवनिर्मित ट्रैफिक पुलिस पोस्ट की चाबी पुलिस पदाधिकारियों को सौंपी गई। बोकारो जिले की पुलिस ने साइबर अपराध को अंजाम देने वाले दो गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरफ्तार गिरोह के पास से कई सिम कार्ड, मोबाइल सहित अन्य सामान बरामद किए हैं। लोहरदगा जिले में पुलिस ने हत्याकांड के एक मामले का खुलासा करते हुए दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस निरीक्षक रत्नेश मोहन ठाकुर ने बताया कि अपराधियों ने एक व्यक्ति की हत्या कर उसके शव को बोरे में बंद कर पत्थर खदान में फेंक दिया था। साहिबगंज जिले में उपायुक्त दीपक दुबे ने जिला अंतर्गत संचालित सर्वजन पेंशन योजना तथा मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों की प्रगति पर चल रहे सत्यापन कार्य की समीक्षा की। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि 3 दिनों के भीतर सत्यापन कार्य पूरा कर प्रतिवेदन समर्पित करें, ताकि विभागीय निर्देशों के अनुरूप पात्र लाभुकों को पेंशन का भुगतान शीघ्र सुनिश्चित किया जा सके। दामोदर घाटी निगम के 79वें स्थापना दिवस पर कोडरमा थर्मल पावर प्लांट को सर्वश्रेष्ठ उत्पादन स्टेशन और ग्रीन प्लांट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम में परियोजना प्रमुख संजय कुमार ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। और रामगढ़ जिले के भुरकुंडा थाना क्षेत्र में पुलिस को अवैध हथियार निर्माण के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हथियार बनाने के उपकरण और अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए हैं। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

सभी बहनों को बसंती का जोहार, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम मनोरमा में। उम्मीद है बहनों, इस समय आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम आपकी कुशलता की कामना करते हैं। तो बहनों, इसी कामना के साथ चलिए अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और चर्चा के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करते हैं आंगनबाड़ी केंद्र से गर्भवती महिलाओं को मिलने वाले लाभ विषय पर। तो आइए जानते हैं थोड़ा विस्तार से। बहनों, आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को कई सारे लाभ प्राप्त होते हैं। इसके तहत पोषण, स्वास्थ्य सुविधाएं और आर्थिक सहायता दी जाती है और इसका मुख्य उद्देश्य जच्चा बच्चा को स्वस्थ रखना और सुरक्षित प्रसव को सुनिश्चित करना है। बहनों, गर्भावस्था के दौरान होने वाले बच्चे को कुपोषण से बचाने के लिए गर्भवती महिलाओं को राशन दिया जाता है, जिसमें पौष्टिक आहार जैसे गेहूं, दाल और तेल शामिल होते हैं और केंद्र पर स्वास्थ्य जांच भी की जाती है ANM के माध्यम से। गर्भवती महिला के वजन, रक्तचाप और हीमोग्लोबिन की नियमित जाँच की जाती है और गर्भस्थ शिशु और माँ को खतरनाक बीमारियों से बचाने के लिए TT के टीके लगाए जाते हैं। साथ ही आर्थिक सहायता के तौर पर केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पहले बच्चे के जन्म पर गर्भवती महिला को सीधे बैंक खाते में 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है और समय समय पर आंगनबाड़ी सेविका द्वारा महिलाओं को पौष्टिक आहार, स्तनपान और प्रसव पूर्व बरती जाने वाली सावधानियां की शिक्षा भी दी जाती है कि वो किस तरह इस दौरान सावधानियां रखेंगे ताकि प्रसव के दौरान कोई समस्या ना हो और साथ ही गर्भावस्था के दौरान किसी भी गंभीर समस्या जैसे खून की भारी कमी या खतरे होने पर महिलाओं को तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या हॉस्पिटल भेजा जाता है। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान उचित पोषण के प्रति जागरूक करने के लिए केंद्रों पर पारंपरिक रूप से गोद भराई की रस्म आयोजित की जाती है और पोषण किट भी दी जाती है। बहनों, आंगनबाड़ी केंद्र से जुड़ने के लिए गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के शुरुआती महीनों जैसे पहले या दूसरे तिमाही में अपने क्षेत्र की आंगनबाड़ी सेविका से संपर्क करना होगा। अपने इलाके की आंगनबाड़ी सेविका के पास जाएं और अपनी प्रेगनेंसी का रजिस्ट्रेशन करवाएं। सेविका को अपने जरूरी दस्तावेज दें। इसके बाद सेविका या ANM द्वारा आपका मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड बना दिया जाएगा, जिसमें आपके स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण का पूरा रिकॉर्ड दर्ज होगा। और बहनों, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आपका बैंक खाता आधार से लिंक और जुड़ा होना जरूरी है। पंजीकरण के लिए जो जरूरी दस्तावेज लगेंगे वो हैं आपका आधार कार्ड, जिसमें गर्भवती महिला और पति दोनों के लगेंगे, साथ ही बैंक पासबुक की फोटोकॉपी और माता एवं शिशु सुरक्षा कार्ड या डॉक्टर द्वारा दी गई जांच पर्ची, पासपोर्ट साइज फ़ोटो आदि लगेंगे। साथ ही पात्रता के लिए कोई एक दस्तावेज जैसे राशन कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड, ई श्रम कार्ड या आय प्रमाण पत्र जिसमें वार्षिक आय 8,00,000 रुपये से कम हो। तो बहनों, यदि आप में से कोई गर्भवती महिला हैं और उन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो जल्दी ही अपने नज़दीकी या अपने क्षेत्र की आंगनबाड़ी सेविका से संपर्क करें और रजिस्ट्रेशन करवाएं और सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाओं का लाभ जरूर लें। तो बहनों, अभी हम चर्चा के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर रहे थे कि गर्भवती महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा क्या क्या सुविधाएं दी जाती है और उसका लाभ हम किस तरह से ले सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं बहनों कि आपको ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। इस जानकारी के बाद आइए अब हम सुनते हैं ये जरूरी संदेश।

0: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
1: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
2: आले नवागे नेहर में ना बले नवा नुकान परिस्थिति रे बले सब उड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे ना कहेगी आम बले रुड़ तबन में आले परिवार से मतलब पूरे ये ना
3: वरना मंगलोरा एक गांव बरगड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउ का कहाँ बना है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखंड तो तुम्हें ठीक हुए है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
4: नाम है रणबला देवी कहाँ बारे हत्तो तो कहाँ तो घर आए ने हमरे घरे बहुत दुख के बात है तो कम बात हो जाए है
5: ये तुम लोग बुरंग सिंह तमसाय अनिता तमसाय भरूपा सेना करना ऐसे दुकुरा में ना आया यापा में रिया तपा में रिया वाह बेटा मिका
6: अन्य न तुम दो बुंबई कोड़ा पटन तुम दूर कोड़ा अन्य हम दो कोदमरी कोड़ा रो पटन पटन तुम कितना ही कोड़ा मैंने मैं बुरुड़ी ने बागिया तो किन्हें दुना से यार की कोलो पुलिस कोलो में लड़ाई चलाओ तमे बुरुड़म गई यहाँ तो जाए तेरे काका गुंगो उन्हें बुको को काको मेल मिया
7: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ही लेते ना लिंग सी जा हुरा रे मिनाई रो जिता हुरा रे मिनाई रो तो बुगिन हुरा ते ससन का है वो आगे बिता हुरा इनका अले आया नु तुम तेरी ना मिल आप ही लेते ना।
1: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
8: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
9: अच्छे उपचार के लिए अब नहीं रहेगा कोई लाचार। देश भर में 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं। अब 5 लाख के मुफ्त इलाज के हकदार। अब तक 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मुफ्त उपचार के लाभ दिए जा चुके हैं और स्वाभिमान और सेहत की सौगात का ये सिलसिला जारी है।
10: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी घर बैठे अपना आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
11: बहनों अभी आप सुन रहे थे कुछ जरूरी संदेश। इन संदेशों के बाद आइए अब हम मनोरंजन करते हैं इस गीत से।

नो, अभी आप आनंद ले रहे थे कयामत से कयामत तक फिल्म के इस गीत से, जिसे स्वर दिया था उदित नारायण और अलका याग्निक ने। इस गीत के बाद आइए हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि मॉनसून में पाचन तंत्र को हम दुरुस्त कैसे रखेंगे। बहनों, ये तो हम सभी जानते हैं कि बारिश की वजह से वातावरण में नमी और उमस बढ़ जाती है, साथ ही गंदगी भी बढ़ जाती है, जिससे बैक्टीरिया बड़ी तेज़ी से पनपती हैं और इन्हीं कारणों से पेट और आंतों में संक्रमण हो जाते हैं और डायरिया, फूड पॉइजनिंग, हैजा जैसी बीमारियों के मामले बढ़ जाते हैं। और बहनों, जब बारिश के बाद धूप निकलती है तो मौसम और अधिक उमस भरा और चिपचिपा हो जाता है, जिसका सीधा असर शरीर की पाचन क्रिया पर पड़ता है और भोजन पचने की जो प्रक्रिया होती है वो धीमी हो जाती है। जब पाचन तंत्र सामान्य गति से काम नहीं करता तो अपच, गैस, एसिडिटी, पेट दर्द, मरोड़ और ऐंठन जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। और इसके अलावा जब हम दूषित पानी और संक्रमित खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं तो कई जीवाणु जनित रोग फैलते हैं। तो बहनों, हमें इनसे बचने के लिए अपने आहार पर विशेष ध्यान देना होगा। बाहरी चीज़ों को खाने से बचें, अधिक तला भुना ना खाएं और बासी भोजन तो बिल्कुल भी ना करें। सबसे बड़ी बात यह है कि साफ़ सफाई पर ज़रूर ध्यान दें। फल सब्जियां अच्छी तरह से धोकर ही खाएं, हमेशा साफ पानी पिएं और हमेशा पानी को उबाल कर ठंडा करने के बाद ही पिएं। और बहनों, मानसून का आनंद हम तभी ले सकते हैं जब हमारा शरीर स्वस्थ हो, इसलिए इस मौसम में खान पान और स्वच्छता को लेकर थोड़ी अधिक सावधानी बरतनी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। तो बहनों, छोटी छोटी आदतों में सुधार करके ही हम हमेशा स्वस्थ बने रह सकते हैं। तो बहनों, उम्मीद है आपको ये जानकारी ज़रूर अच्छी लगी होगी। आइए अब हम कार्यक्रम के अंत में चलते चलते सुनते हैं एक और

बहनों, इसी गीत के साथ ही आज का हमारा मनोरमा कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अगले कार्यक्रम में पुनः आपसे मुलाकात होगी कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बसंती को दीजिए विदा। जोहार, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम मनोरमा। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रांची केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन का किया शुभारंभ। कहा, देश का औद्योगिक विकास झारखंड के योगदान के बिना अधूरा। झारखंड विधानसभा में आंतरिक संसाधन तथा केंद्रीय सहायता समिति की राजस्व कमेटी की टीम ने आज रामगढ़ का किया दौरा। अध्यक्ष विधायक रामेश्वर उरांव ने कहा, विधानसभा को समिति देगी रिपोर्ट। राज्य सरकार ने संथाल परगना की सड़क परियोजनाओं के लिए 221 करोड़ के पैकेज को दी मंजूरी। दुमका से पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा

0: तक 52 किलोमीटर की सड़क का होगा कायाकल्प। जमशेदपुर के बहुचर्चित डीडी बार हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हत्याकांड के मुख्य आरोपी ने किया न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण। और धनबाद में हुई रेल मंडल संसदीय समिति की बैठक। पलामू, चतरा और धनबाद के सांसदों ने उठाए रेलवे से जुड़े जनमुद्दे। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन 2026 का शुभारंभ किया और विकसित झारखंड का विजन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि झारखंड को केवल खनन आधारित राज्य नहीं बल्कि तकनीक, अनुसंधान, नवाचार और औद्योगिक विकास के अग्रणी केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की पहचान उसके प्राकृतिक संसाधनों के साथ साथ यहां के युवाओं की प्रतिभा, बौद्धिक क्षमता और कुशल मानव संसाधन से बनेगी तथा झारखंड की वैश्विक मंचों पर भागीदारी लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने निवेशकों से दीर्घकालिक साझेदारी का आह्वान करते हुए स्थानीय संसाधनों और परिस्थितियों के अनुरूप विकास मॉडल अपनाने तथा शोध एवं आधुनिक तकनीक पर विशेष जोर दिया।
1: झारखंड के संदर्भ में लगभग हम ये कह सकते हैं कि इस देश की अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करें तो झारखंड के बिना ये पूरा होता दिखता नहीं। आज हम झारखंड से पूरे देश को कई सारी खनिज संपदाओं के साथ ज्ञान भी दिया है। हमारे राज्य से देश दुनिया में बड़े पैमाने में ब्यूरोक्रेट्स ने भी अपनी योगदाने दी हैं, तकनीकी क्षेत्रों में भी दी हैं।
0: झारखंड विधानसभा में आंतरिक संसाधन एवं केंद्रीय सहायता समिति की राजस्व कमेटी की टीम ने आज रामगढ़ का दौरा किया। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष विधायक रामेश्वर उरांव ने बताया कि यह समिति विभिन्न विभागों के वित्तीय संबंधित चीजों की जांच कर इसकी रिपोर्ट विधानसभा को भेजेगी।
2: कमेटी का नाम है इंटरनल रिसोर्सेस एंड सेंट्रल एड। हमारा काम इतने है कि इंटरनल रिसोर्सेस कितने यहाँ से हैं, किस किस विभाग से कितना राजस्व मिलता है यहाँ से जो राज्य सरकार को जाता है, और सेंट्रल सरकार का जो सहायता मिलती है किस मद में मिला, किस हेतु मिला, वो खर्च बढ़िया से हुआ कि नहीं हुआ।
0: राज्य सरकार ने संथाल परगना की सड़क परियोजनाओं के लिए बड़े पैकेज को मंजूरी दी है। इसमें दुमका से पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा तक 52 किलोमीटर गोविंदपुर साहिबगंज स्टेट हाईवे का कायाकल्प शामिल है। इसके तहत सड़क का पुनर्निर्माण किया जाएगा तथा सड़क की चौड़ाई 7 मीटर से बढ़कर 15 मीटर की जाएगी। इस पर कुल 221 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जाएंगे। गढ़वा जिला प्रशासन एसआईआर अभियान को लेकर काफी गंभीर है और जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से इस अभियान की नियमित समीक्षा की जा रही है। इसकी जानकारी देते हुए उपायुक्त पशुपतनाथ मिश्र ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत गढ़वा जिले में मतदाता सूची को अधिक शुद्ध, अद्यतन और त्रुटि रहित बनाने का कार्य पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ जारी है। इधर गिरिडीह के उपायुक्त रामनिवास यादव ने आज जिले में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों के वितरण, संग्रहण और डिजिटाइजेशन कार्यों की समीक्षा की। मौके पर उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 61% गणना प्रपत्रों का वितरण किया जा चुका है और 10 जुलाई तक 100% गणना प्रपत्रों का वितरण सुनिश्चित कराने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची विश्वविद्यालय के वर्तमान शैक्षणिक स्थिति को लेकर राष्ट्रीय जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने आज रांची विश्वविद्यालय में समीक्षा बैठक की, उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालय की विभिन्न कमियों में सुधार करने के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
3: आज राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार के द्वारा

0: कि विश्वविद्यालय का समीक्षा बैठक रखा गया था कि बैठक में जनजाति समुदाय से संबंधित शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी से लेकर के विद्यार्थी तक की बात हम सबने किया है कि अगर बात देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रमोशन की अगर हम बात करें विशेष रूप से तो प्रमोशन सिस्टम ही यहाँ नहीं है।
1: जमशेदपुर के बहुचर्चित डीडी बार हत्याकांड में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। करणी सेना के नेता हिमांशु सिंह हत्याकांड के मुख्य नामजद आरोपी विश्वनाथ मंडल उर्फ बोदरा ने पुलिस के बढ़ते दबाव के बीच आज जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। धनबाद रेल मंडल संसदीय समिति की आज हुई बैठक में जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने संसदीय क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न रेलवे मुद्दों को उठाया। इस बैठक में नई ट्रेनों के परिचालन, ट्रेनों के ठहराव, विस्तार, फेरे बढ़ाने, यात्री सुविधाओं के विकास और लंबित रेल परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने धनबाद को रेलवे जोन बनाने की मांग को प्रमुखता से उठाया।
2: धनबाद के इस जोन से ही सबसे ज्यादा राजस्व देता है और धनबाद का जोन दूसरे प्रदेश में है, वहाँ रहे हमको कोई आपत्ति नहीं है, मगर धनबाद में भी रेलवे जोन बनना चाहिए क्योंकि पूरे भारतवर्ष में धनबाद एक कोयला का नगरी है और यहाँ पे हर तरह का ट्रेन मालगाड़ी का सबसे ज्यादा आवागमन है, यहाँ से ज्यादा माल ढुलाई भी होता है, यहाँ सवारी भी बहुत ज्यादा है।
1: बैठक में पलामू सांसद बीडी राम, चतरा सांसद कालीचरण सिंह और गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने भी अपने सुझाव दिए। हजारीबाग नगर निगम की बोर्ड बैठक में पदेन सदस्य के रूप में हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल शामिल हुए। बैठक में उन्होंने नगर निगम क्षेत्र के समग्र विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए और स्पष्ट कहा कि शहर के विकास की पहली प्राथमिकता मजबूत सड़कें, बेहतर नालियां और प्रभावी जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। लोहरदगा जिले के कुड़ू थाना क्षेत्र स्थित सलगी पंचायत के रोचो महुआ टोली में संचालित संवसीरा हायर सेकेंडरी स्कूल के आवासीय परिसर में कल रात कमरे में सो रही चार छात्राओं को सांप ने काट लिया। इलाज के दौरान एक बच्ची की मौत हो गई जबकि एक को बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर किया गया है। साथ ही दो का इलाज सदर अस्पताल लोहरदगा में चल रहा है। रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर प्रत्येक बुधवार आयोजित होने वाले जन शिकायत समाधान कार्यक्रम के तहत डोरंडा थाना परिसर में लोगों की शिकायतें सुनी गईं। थाना प्रभारी दीपिका प्रसाद ने कई मामलों का मौके पर ही निष्पादन किया। मौसम। राज्य में मॉनसून सक्रिय होने से मौसम केंद्र रांची ने आज छह जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। धनबाद, बोकारो और हजारीबाग समेत अन्य प्रभावित इलाकों में बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की आशंका है। प्रशासन ने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन का किया शुभारंभ। कहा, देश का औद्योगिक विकास झारखंड के योगदान के बिना अधूरा। झारखंड विधानसभा में आंतरिक संसाधन तथा केंद्रीय सहायता समिति की राजस्व कमेटी की टीम ने आज रामगढ़ का किया दौरा। अध्यक्ष विधायक रामेश्वर उरांव ने कहा, विधानसभा को समिति देगी रिपोर्ट। राज्य सरकार ने संथाल परगना की सड़क परियोजनाओं के लिए 221 करोड़ के पैकेज को दी मंजूरी। दुमका से पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा तक 52 किलोमीटर की सड़क का होगा कायाकल्प। जमशेदपुर के बहुचर्चित डीडी बार हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हत्याकांड के मुख्य आरोपी ने किया न्यायालय में आत्मसमर्पण। और धनबाद में हुई रेल मंडल संसदीय समिति की बैठक, पलामू, चतरा और धनबाद के सांसदों ने उठाए रेलवे से जुड़े जनमुद्दे। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ज तथा एफएम के 100.5 मेगाहर्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं आइए सुनते हैं जिले में आजकल।
1: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे धनबाद जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे धनबाद संवाददाता।
1: धनबाद के केंदुआडी क्षेत्र में लगातार हो रहे भूधसान और गैस रिसाव की समस्या के समाधान को लेकर जिला प्रशासन ने कल बैठक की। इस दौरान पिछले 6-7 महीनों से बंद धनबाद बोकारो मुख्य सड़क को दोबारा खोलने से पहले अब उसके नीचे वैज्ञानिक तरीके से खुदाई कर वास्तविक स्थिति का पता लगाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए BCCL 10 जुलाई तक SOP तैयार करेगा। खुदाई के दौरान प्रभावित परिवारों को राहत शिविर में शिफ्ट किया जाएगा। वहीं उपायुक्त ने भविष्य में सरकारी संपत्ति के पास बिना NOC खनन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।
2: विस्तृत रूप से चर्चा हुई, किंतु जो वहाँ घटना है, ये भूदशान की या गैस निकलने की, ये बहुत पुरानी घटना है। 1980 से बता रहे हैं, लगातार हो रही है। 2005 में भी एक बड़ी घटना हुई थी, तो इसमें कोई मिडिल पाथ निकलना चाहिए। तो हम लोग यही निर्णय लिए हैं कि जो टेक्निकल एजेंसीज हैं, DGMS है, ITISM है, सिम्फर है, एक प्राइवेट संस्था भी है जो अच्छा काम करती है इसमें, उनके भी एक्सपर्ट थे। तो हम लोगों ने सबने मिलकर एक ओपिनियन दिया है कि हम लोग एक SOP देंगे, जिस SOP के तहत BCCL और जिला प्रशासन मिलकर उस जगह को चेक करेगा और वो प्रॉपर डिगिंग, बोरवेल जैसे बनता है, हम लोग बोरिंग करते हैं, ऐसे बोरिंग करके पूरा चेक किया जाएगा उस पूरे पैच को। और अगर कोई मेजर हताहत की अगर सूचना नहीं रहेगी, अगर आशंका नहीं रहेगी, तो हम लोग रूट चालू करेंगे।
1: धनबाद शहर की रिंग रोड परियोजना से अग्नि प्रभावित झरिया क्षेत्र के विकास की उम्मीदें भी काफी बढ़ गई हैं। जिले के उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि कोयला मंत्रालय की सहमति से झरिया अग्नि प्रभावित क्षेत्र को चारों ओर से जोड़ने वाली रिंग रोड परियोजना पर काम आगे बढ़ रहा है।
2: एक बड़ा प्रोजेक्ट रिंग रोड जैसा पूरे झरिया को सर्कल करते हुए 4 लेन, 2 लेन, मिक्स लेन करके बनने का प्लान है और भारत सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ कोल द्वारा भी उसके लिए सहमति दी गई है और साथ साथ NH द्वारा उसका सर्वे भी किया जा रहा है। तो अगर वो एक परमानेंट सोल्यूशन है, अगर हम लोग पूरे जो अग्नि प्रभावित क्षेत्र है उसके चारों तरफ अगर हम लोग एक चौड़ी सड़क बना सकते, तो पूरा नया शहर उधर बसेगा और ये जो लगातार बार बार ये घटना वर्षों से नहीं दशकों से चलती आ रही है वो।
1: धनबाद सांसद ढुल्लू महतो और निरसा विधायक अरूप चटर्जी के बीच जुबानी जंग तेज है। लगातार दोनों जनप्रतिनिधि प्रेस वार्ता कर एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप मढ़ रहे। सांसद ढुल्लू महतो ने कल फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निरसा विधायक पर इस फरार अपराधी से संबंध रखने का आरोप लगाया है।
3: इसमें हम आप लोग से आग्रह करना चाहेंगे कि ऐसे लोग जो अपने आप को फौज सेवा सदस्य का प्रमाण मेरे पास लिखा भी, अब वो बतावे कि मोइज खान और प्रिंस खान कौन है, उसका रिश्ता क्या है। और जब इतना सरकार ताबड़तोड़ कर रही है, प्रशासन करे, तो क्यों नहीं जांच करवा रहा है इसका मोबाइल नंबर, अरूप चटर्जी जी का, रिजवान का, मोइज खान का, दूध का दूध पानी के पानी, मेन संरक्षक प्रिंस खान का यही है अरूप चटर्जी जी, अपने आप को राजा हरिश्चंद्र कहने वाले, ईमानदार कहने वाले, अगर पर इसको कोर्ट जाएंगे हम जानते हैं कि वो फिर मैनेज कर लेगा, उसका तो मैनेज करने का धंधा है ना। दो मर्डर किया और दोनों में मैनेज कर लिया, ताकि PIL करेंगे और इसका जांच करवाएंगे।
1: गौरतलब है कि इससे पहले निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने सांसद ढुल्लू महतो पर रंगदारी वसूलने और अपराधी प्रिंस खान को संरक्षण देने का आरोप लगाया था। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद।
0: अभी आप सुन रहे थे धनबाद जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। अभी आप सुन रहे थे जिले में आजकल आकाशवाणी के रांची केंद्र से। और अब प्रस्तुत है श्रोताओं की पसंद पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद।

कार्यक्रम आपकी पसंद में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और लेते हैं ये पहला खत जो हमें भेजा है फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर पांधा, गोलू काकू, जी एस रामगढ़िया, चांडिल ग्राम हारूडी से तुलसीदास महतो, कल्पना महतो, मनोरमा, मनमोहिनी महतो और दीनबंधु महतो, बड़ी बाजार चाईबासा से मौजम बिहारी, समीमा सनम, जिम्मी बिट्टू, किरण, रोशनी मुस्कान, परी नबीहा, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हृदया खान, आसमा सालिया, सोएब खान, राउफ भाई, साहिद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, खरसावां झारखंड से सुकरा नायक, मंजू नायक, गौरव नायक, जलेश्वर नायक और भाई एस देहुरी। आप सबों की पसंद पर सुनवाते हैं फिल्म पीके का ये गीत, आवाज़ शान और श्रेया घोषाल की।

0: और अब सुनवाते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में फिल्म प्रेम कहानी का ये गीत, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत को सुनना चाहा है छोटा निमडी चाईबासा से बाबू राम, शांति देवी, रोहन कुमार, कोमल कुमारी, ऋतिक कुमार। गांव चांदपुर पोटका से संतोष कुमार भगत, श्रीमती बासंती भगत, मृणाल कांति भगत, चांदनी भगत, मास्टर आयुष भगत, राजकुमार भगत। कॉलेज रोड घाटशिला से सोना, रूपा, मोनिका, शिवम, मौसमी और संतोष आनंद। बड़ा बाम्बो सुपाईसाई से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा तांती, प्रकाश तांती, ललित प्रधान, उग्रसेन प्रधान, सुदर्शन प्रमाणिक, सुशीला, श्यामदेव नायक और सीमा। ग्राम गेलिया लोहर से कोमल बेसरा, बासंती, रमेश, अन्नू बनमाली और सिद्ध कुमारी। तालुका ग्राम मोहद मध्य प्रदेश से भैया तड़वी, रीना तड़वी, सनी बाबू, रोजूबाई तड़वी, परु, मुबारक बारेकर, मनोहर ठाकुर, तैमूर बारेकर, अरशद तरवी, आरिस अरसलान, यूनुस तरवी, सदाबहार रेडियो श्रोता संघ से मुशर्रफ खां तरवी, जरीना तरवी, मुबारक तरवी, परवेज तरवी, बिटिया रोजमिन तरवी, तैमूर तरवी और समस्त तरवी परिवार। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश।
1: मैं तुझे प्यार कर

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म पुलिस और मुजरिम का ये गीत। आवाज़ उदित नारायण, अनुराधा पौडवाल और साथियों की, बोल अनजान के और संगीत बप्पी लहरी का। इस गीत को सुनना चाहा था महुलडिया सोनुआ से नंदकिशोर महतो, राधामणि महतो, रवि वारी, बंदनी संतोषी, दीपक संतोष, राहुल अन्नु तन्नु भाई नंदू महतो। मेन रोड सोनुआ से गुरुचरण नायक, अनुसुईया नायक, सागरिका नायक, देवाशीष नायक, गुलशन नायक, किशोर महतो। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया, पप्पी भाटिया। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, करनाल से जग्गी दुआ। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। शेरपुरा कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, और अब सुनते हैं ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
4: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: స్వయం ఇది భారతీయ సేన.
1: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ.
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है. नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है. इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गयी है.
3: ನಾಳೆ ಒಡ ಪರಿವಾರ ಜೊತೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟ ಕ್ರಾಂತಿ ಬೇಸರ ಅಲ್ಲೆ ನಮಗೆ ನೆಹರು ಮೆನ ಬಲೆ ನಮ್ಕನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲೆ ಸೊಪ್ಪ ಒಡ ವಾಪಸ್ ರುಗಡಕ್ಕೆ ಆಮ ಬಲೆ ರುಗಡಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ಮೆ ಅಲ್ಲೆ ಪರಿವಾರ ಸೆ ಮತ್ತೆ ಪೂರ
4: ಏನೂರಾಯ್ಕಿ ಥಾನಾ तो वो जंगल गया है तो आउ का कहाँ बना है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
5: नाम है रंगबला देवी कहाँ बारे भक्तो तो कहाँ तो घर आए ने हमरे घर है बहुत दुख के बात है तो अखन बात हो जा है
6: नितुम लो बुरा मिसिंग काम सोए ಅನಿತಾ ತಾಮಸಾಯ ಬರುಪಾ ಸಿನಕನ ಎಸು ದುಕುರೆ ಮಿನಾಣ್ಯ ಯಾಪಾ ಮೇರಿಯ ತಪಾ ಮೇರಿಯ ವಾ ಬಿಟಾನಿಕ
7: ಅಣ್ಣ ತುಂಬ ಬುಂಬೈ ಕೂಡ ಪಟನ ತುಂಬ ಗುಂಡ್ರೆ ಕೂಡ ಅಣ್ಣ ಹೊಂದು ಕೊದಮಣಿ ಕೂಡ ಪಟನ ಪಟನ ತುಂಬ ಕಿತಮೈ ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಉಡಿ ಉಡಿನ ಬಾಗೆ ಆತೋಟ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಕೊಲೋ ಪೊಲೀಸ್ ಕೊಲೋ ಎಮ್ಮಿ ಲಡೈ ಚಲಾವ ತನ ಮುರುರಂ ಗೊಯ್ಯಾಂ ತಬ ಜೈ ತೈರೆ ಕಾಕಾ ಗುಂಗ್ ಹೋ ಉಡಿ ಬುಕೋ ಕೋ ಕಾಕೋ ಮೇಲ್ ಮಿಯ
8: ಅಲಿಂಗ್ ಮುನಿಸುರಂ ತೈತೆ ಅಪಿಲೆ ತನ ಲಿಂಗ್ ಸಿ ಜಾ ಹುರಾರೆ ಮಿನೈರೊ ಜಿತಾ ಹುರಾರೆ ಮಿನೈರೊ ತೊ ಬುಗಿನ್ ಹುರಾತೆ ಸೆಸೆನ್ ಕಾಯೆ ಉವಾಗೆ ಬಿಟಾ ಹುರೆನ್ ಕಾ ಅಲಿ ಅಯಾನು ತುಂ ತೈನ ಮಿನಲ್ ಅಪಿಲೆ ತನ.
2: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी. साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है. आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं. हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें. इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं.
9: इन संदेशों के बाद श्रोताओं कार्यक्रम आपकी पसंद में एक बार फिर से आपका स्वागत है. और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत. सुनने के ख्वाहिशमंद श्रोता हैं सेंटोला चाईबासा से भोला राम मधुर, बेबी देवी नतासा, बड़ी बाजार चाईबासा से विनोद कुमार, पवन मीना पवन. कुचाई बिदरी से केपी सोए, सरिता, दुर्गामती, रेशमी, राजकुमारी, विशाल मुन्ना और सन्नी सोए. ग्राम सुराबेरा से बासी सरदार, कमल सरदार, बीरू सरदार और अंशु सरदार. अमला टोला चाईबासा से रविंद्र कुमार सिन्हा, हर्षराज सिन्हा, पूनम नारायण. अस्तुपुरा जिला मऊ यूपी से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, सादिक और साजिद. बहादुरगंज गाजीपुर उत्तर प्रदेश से आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आज़ाद. तुरी टोला चाईबासा से मदन ठाकुर, पुष्पा देवी, रोहित ठाकुर, संगीता देवी, लाडो हरी, खुशी, रिया और अर्पिता कुमारी. आप सब सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म प्रेम रोग का ये गीत. गीतकार संतोष आनंद और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल.

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं किशोर कुमार के स्वर में फिल्म प्रेम पुजारी का ये गीत। इस गीत को सुनना चाहा है रेलवे रोड गंज डुंडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश, गौतम एम फारूक शेख, अब्दुल सत्तार अंसारी, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, अमला टोला चाईबासा से गोरख प्रसाद गुप्ता, फुलवंती गुप्ता, अभिषेक गुप्ता और अक्षत प्रसाद, तांबो चौक चाईबासा से दुर्गा चरण सवैया, लेबिया बोदरा, सुखलाल बोदरा, कुचाई ग्रामी चाहतु से गोलाराम लोवादा, लुदरी लोवादा, सोमनाथ, पूर्णिमा, लालमुनी बिंजना लोवादा और समस्त लोवादा परिवार, ग्राम लोसोदिकी से कोमल महतो, पेमी महतो, गोविंद, जीतू, साईमान और पूरा महतो परिवार। और इसी गीत के साथ ही श्रोताओं, आज का कार्यक्रम आपकी पसंद अब हम यहीं समाप्त करते हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब प्रस्तुत है फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा।

कार्यक्रम रजनीगंधा में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। फरमाइशी गीतों के सिलसिले को शुरू करते हैं और सुनवाते हैं। ये पहला गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, फिल्म का नाम है पिया का घर। गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत के फरमाइश करता हैं ग्राम पोंडा काटा से नरसी महली, सावन महली, रॉकी महली, कविता महली, हरसमनी महली, पार्वती महली, सुहानी महली, संजय सोरेन, नंदनी महली, साजीव सोरेन और एनएस महली। सरायकेला पारापुर देशावली ग्राम पहाड़पुर से शिवम, शिवाजी मुंडरी, सुरुमानी मुंडरी, हीरामानी मुंडरी, हिमांती मुंडरी, डोबरो मुंडरी, साजन मुंडरी, सिद्धेश्वर पारापुर, डोबरो मुकेश, कुशल मुंडरी, जानुम सिंह मुंडरी, सिद्धि बोस, सोना बाबू और एफएम शिवा मुंडरी। बरानिमडी चाईबासा से तुलसी पथिक, मीरा देवी, बजरंगी ठाकुर, मितु रंजन, राजीव रंजन, मौलिक रंजन, अमित कुमार, सुमित कुमार, शुभम कुमार। नाज मंजिल सीतामढ़ी बिहार से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, बहू रुबीना वशीम, नवासा अरहान बाबू, हमजा बाबू, मुजम्मिल बाबू, हुमैरा नाज, सुमैरा नाज, अबीहा नाज, नाजिया, नूरी नाज, साहिन नाज।

जिया बच्चू सैख चीना सैख कोकिलवारा और आई जिला मुजफ्फरपुर से मोहम्मद फैजल सैख नुजहत जहानाज कांति निकेतन राजनगर से कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता रुद्र गुप्ता बेरडी से राजेश सोनी कंचन सोनी गायत्री ढोमने वैष्णवी ढोमने चंचल ढोमने अर्जुन गवनेकर और धीरज सवासेरे आप सबों की फरमाइश पर सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में फिल्म पिया का घर का ये गाना।

0: अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार के स्वर में फिल्म पवित्र पापी का ये गीत। इस गीत को सुनना चाहा था सरायकेला गांव कीता से। राधा कृष्णा गोप, सुनीता गोप, उमा गोप, गीता देवी, रीता देवी, सरस्वती गोप, आराध्या गोप, अमित गोप, सुमित गोप, अंकित गोप, अभिषेक गोप, आशीष गोप, विकी गोप, शुभम गोप, विनोद गोप, राजू गोप, राजन गोप, माहिर गोप, यादव मोहल्ला सनावद मध्य प्रदेश से, दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार, धर्मेंद्र और जितेंद्र, दुर्गाई सैलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता परभनी से सी आर कुलकर्णी, भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा, दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, जुनेद अब्बासी, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दंतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी और लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू। आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा, और अब सुनते हैं ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: इस संदेश के बाद श्रोताओं, कार्यक्रम रजनीगंधा में एक बार फिर से आपका स्वागत है, और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनवाते हैं फिल्म सिकंदर ए आज़म का ये देशभक्ति गीत, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और साथियों की।

और अब सुनवाते हैं मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में फिल्म पहचान का ये फरमाइशी गीत। फरमाइश आप सबों की है अमरावती महाराष्ट्र से, मुकेश कांस लेकर, दिनकर विमल विशाखा कांस लेकर, मलोट कैंप पंजाब से, सतीश मिगलानी, सीमा साइना, विशाल मिगलानी, सुपरिया अनमोल धर्मपाल और रमेश मिगलानी, शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता आदित्य कुमार और क्रिस श्रीवास्तव, अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव, छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, बठिंडा रोड डबवाले से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में फिल्म पहचान का ये गीत, और अब सुनवाते हैं किशोर कुमार के स्वर में फिल्म प्यार का मौसम का ये गाना, बोल मजरू के और संगीत आरडी बर्मन का। फरमाइश आप सबों की है पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आरजू जाजोरिया।

डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिस्का और तन्मय गजभिये। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, सौरभ शर्मा। ग्राम परजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र चंसौलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक और आराध्या चंसौलिया। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनी गंधा। और अब सुनवाते हैं किशोर कुमार के स्वर में फिल्म प्यार का मौसम का ये गीत।

श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे फिल्म ज्योति का ये गीत, आवाज लता मंगेशकर और साथियों की, बोलानंद बख्शी की और संगीत बप्पी लहरी का। इस गीत को सुनना चाहा था राजनांदगांव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा, इरफान आसमा, जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी, आदिबा तिवारी, औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश, दंतरेंगी छत्तीसगढ़ से भागवत वर्मा, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रेयांश ठाकुर, छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा। और इन्हीं फरमाइशी गीतों के साथ ही श्रोताओं, आज का रजनीगंधा कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्ट्यूक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओ'नील ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। दोनों वाद्य यंत्रों की सुर

अस्पताल ने भारत और ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक साझेदारी को सजीव रूप में प्रस्तुत किया। इसके बाद मेलबर्न की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना संचिता ओबरोल के नेतृत्व में कथक नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्याकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा भी लिया। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक आतंकवाद की स्थिति पर विचार विमर्श किया और कट्टरपंथ आतंकवाद के वित्त पोषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने आज ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। रॉकेट का परीक्षण निर्धारित न्यूनतम 60 किलोमीटर की दूरी के लिए किया गया। पिनाका को आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से डिजाइन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, सेना और उद्योग जगत को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट के स्वदेशी डिजाइन और विकास क्षमता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में ये घटकर 24% रह गई है।
3: जुलाई की अच्छी बारिश से बोनी की संभावनाएं बढ़ गई है। अब बोनी और तेजी से होगी। कल तक 350,85,000 हेक्टर में बोनी हुई है। मानसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन और कपास पर थोड़ा प्रतिकूल बोनी पर प्रभाव पड़ा है। अब किसानों को यह सलाह दी जा रही है कि इनकी जगह मक्का, बाजरा और मूंग जैसी फसल जो कम समय में आ जाती है, उनकी बुआई को प्राथमिकता दें।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से बातचीत की। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में आगे बढ़ जाने की संभावना है।
4: मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार शुक्रवार तक कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी ऐसी स्थिति बनी रहने की संभावना है। आज दिल्ली NCR में हुई हल्की बारिश से गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। विभाग के अनुसार राजधानी में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय है और आने वाले दिनों में भी बारिश होने की संभावना है। विभाग ने कल तक दिल्ली के लिए बिजली गरजने के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। ऋषु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मुंबई से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है।
5: नासिक और इगतपुरी के कैचमेंट एरियाज में भारी बारिश जारी है, जहां पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। भरे हुए डैम से पानी छोड़े जाने के बाद गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में भी भारी बारिश हुई है, जिससे कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। पालघर जिले में पिछले 8 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है, इसके चलते डैम से सूर्या नदी में पानी छोड़ा गया, जिससे नदी किनारे के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं सांगली जिले में शाम के वक्त तेज बारिश शुरू हुई, जबकि कृष्णा और वरना नदियां फिलहाल पूरी कैपेसिटी के साथ बह रही है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ EPFO खातों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत IT सक्षम सेवा CITES प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। ये मामला वित्तीय लेनदेन और संदिग्ध धन की हेराफेरी से संबंधित है। जांच में पता चला है कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच पार्टी के बैंक खातों से लगभग 160 करोड़ रुपए एक निजी कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई में स्थानांतरित किए गए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा कर दी है। तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे ईरान के साथ बातचीत में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। हालांकि उन्होंने कहा कि अमरीकी प्रतिनिधि वार्ता जारी रख सकते हैं, लेकिन इसके सफल होने को लेकर उन्होंने संदेह जताया।
6: मुझे लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। मैं अब उनसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। उनका नेतृत्व बीमार मानसिकता वाले लोग कर रहे हैं। वे क्रूर और हिंसक लोग हैं, और अगर उनके पास परमाणु हथियार होता तो वो लोग उसका इस्तेमाल कर देते।
1: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
7: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 517 अंक फिसलकर 23,882 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 60 पैसे कमजोर होकर 95 रुपए और 56 पैसे पर बंद हुआ।
1: खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज घोषणा की कि तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। श्री मांडविया ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। पिछले वर्ष मई में बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोत्सुक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टेंस और यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युको ने जस्मीन पाओलिनी को हरा दिया। पुरुष सिंगल्स में टेलर फ्रिट्स का सामना अलेक्जेंडर ज्वेरेव से और फ्लेवियो कोबोली का मुकाबला आर्थर फेरी से जारी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहले क्वार्टर फाइनल में शुक्रवार तड़के 1:30 बजे फ्रांस और मोरक्को आमने सामने होंगे। दूसरे क्वार्टर फाइनल में शनिवार तड़के 12:30 बजे स्पेन का सामना बेल्जियम से और तीसरे क्वार्टर फाइनल में रविवार तड़के 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला होगा इंग्लैंड से। अंतिम क्वार्टर फाइनल में रविवार सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। भारत के वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय क्षेत्र के ऊपरी आयनमंडल का सटीक तैयार जमीन और अंतरिक्ष से प्राप्त आंकड़ों को जोड़कर विकसित की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि इससे उपग्रह संचालन, संचार प्रणाली और नेविगेशन सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की। और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
8: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Melbourne to take part in the third India-Australia annual summit. India and Russia reaffirm commitment to strengthen counter-terrorism cooperation at multilateral fora. DRDO conducts successful flight test of Pinaka long-range guided rocket at Chandipur in Odisha. Monsoon recovery brings relief. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan expresses confidence that rainfall to gain further momentum this month, leading to acceleration in Kharif sowing. Centre assures all possible assistance to flood-affected states. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is over. And in Wimbledon tennis, Marta Kostyuk of Ukraine and Czech player Linda Noskova enter women's singles semi-finals. Prime Minister Narendra Modi arrived at Melbourne in Australia this evening on the second leg of his three-nation tour after concluding his successful visit to Indonesia. Upon arrival in Melbourne, Mr. Modi was warmly received by Australian Minister for Housing, Minister for Homelessness and Minister for Cities, Claire O'Neill. Our correspondent covering the Prime Minister's Australia visit has filed this report.
9: The air in Melbourne buzzed with immense enthusiasm today as the Indian diaspora turned out in full force to welcome Prime Minister Narendra Modi. The high-profile reception was punctuated by a magnificent cultural showcase that beautifully illustrated the deepening cross-continental friendship through the universal language of music and dance. Before the stage came alive with the performances, the Prime Minister briefly interacted with the community members, sharing warm greetings with the gathered diaspora. Following this heartfelt interaction, the evening commenced with an extraordinary symbolic duet between the didgeridoo, an ancient indigenous Australian wind instrument traditionally crafted from hollow eucalyptus trees, and the Indian tabla. This was followed by a captivating Kathak recital led by renowned Melbourne-based dancer Miss Sanchita Abrol. The artistic showcase concluded with a powerful performance by the 10-piece Australia-India Orchestra, who delivered a stirring symphony rendition of A.R. Rahman's iconic anthem, Ma Tujhe Salaam, deeply moving the gathered audience. Suhas Ram, Akashwani News, Melbourne.
8: During his three-day visit, Mr. Modi will participate in the third India-Australia Annual Summit. He will also participate in the India-Australia CEOs Forum, where he will address a gathering of top business leaders from both countries. The Prime Minister's social media post said he is looking forward to talks with his Australian counterpart, Anthony Albanese. Earlier in the day, Prime Minister Modi visited the UNESCO World Heritage Site of Prambanan Temple in Yogyakarta, along with Indonesian President Prabowo Subianto. The two leaders toured the 9th century temple complex. In a joint press statement at the temple premises, Prime Minister Modi described the visit as a deeply spiritual and memorable experience.
2: योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स में अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है मुझे पूरा विश्वास है आज के बाद भारत के यात्री तो यहाँ जरूर आएंगे दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं
8: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today called on Crown Prince Sheikh Sabah Al Khalid Al Sabah of Kuwait. In a social media post, the minister shared that he conveyed the greetings of Prime Minister Narendra Modi to the Crown Prince. Dr. Jaishankar appreciated the Crown Prince's commitment to take forward the bilateral cooperation of India and Kuwait. The External Affairs Minister also called on Prime Minister of Kuwait, Sheikh Ahmed Abdullah Al Ahmed Al Sabah. Dr. Jaishankar thanked him for support to the Indian community's welfare and well-being. In a social media post, the External Affairs Minister welcomed the vision of Mr. Al Sabah for stronger and mutually beneficial India-Kuwait cooperation. Dr. Jaishankar also met Defence Minister Abdullah Ali Abdullah Al Salem Al Sabah and discussed about defence industry cooperation and maritime security. India and Russia today reaffirmed their commitment to strengthen counter-terrorism cooperation at multilateral fora, including at the UN, BRICS, EAG and SCO. The Ministry of External Affairs said the 14th meeting of the India-Russia Joint Working Group on Counterterrorism was held in New Delhi. Secretary West, Ministry of External Affairs Sibi George, and Deputy Foreign Minister of Russia Dmitry Lubinsky co-chaired the meeting. Both sides condemned terrorism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism, and called for concerted action against terrorists, terrorist groups, and their proxies and affiliates. Defence Research and Development Organisation DRDO today conducted a successful flight test of Pinaka Long Range Guided Rocket LRGR at the Integrated Test Range Chandipur in Odisha. The Defence Ministry said the rocket was tested for a user-defined minimum range of 60 kilometres. The Pinaka LRGR rocket is designed by Armament Research and Development Establishment in association with High Energy Materials Research Laboratory with support from Defence Research and Development Laboratory and Research Centre, Imarat. Defence Minister Rajnath Singh has congratulated DRDO, the Indian Army and the industry on the successful flight test. The minister described it as a major milestone in indigenous design and development capability for long-range guided rockets. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today said that several parts of the country have received good rainfall in recent days, reducing the number of rainfall deficient districts from 262 to 178. The minister said this while chairing a high-level review meeting in New Delhi over the possible impact of El Niño. He expressed confidence that rainfall will gain further momentum during July, leading to an acceleration in kharif sowing.
10: The number of districts facing deficient rainfall has declined from 262 to 178 due to good rainfall in several districts of the country during the last few days. We continue to closely monitor these 178 districts. Better rainfall in July has improved sowing prospects, which is expected to pick up further. As of yesterday, sowing has been completed on over 350 lakh hectares. The delayed monsoon has slightly affected the sowing of tur, soybean and cotton. Farmers are being advised to prioritize sowing of short duration crops such as maize, spear millet and green gram.
8: Mr. Chauhan said the center is closely monitoring the situation in Maharashtra, Madhya Pradesh, Gujarat, Uttar Pradesh, Rajasthan, Karnataka, Bihar, Jharkhand, Telangana, Andhra Pradesh, Punjab, West Bengal and Odisha. The Indian Meteorological Department has said that conditions are favorable for further advance of southwest monsoon into remaining parts of North Arabian Sea, Rajasthan, Haryana and Punjab during the next 2 to 3 days. IMD has forecast heavy to very heavy rainfall over parts of Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Bihar, East Rajasthan, Madhya Pradesh, Sub-Himalayan, West Bengal, Sikkim and West Uttar Pradesh tomorrow. A report from our correspondent.
4: The Met Department has predicted heavy rainfall over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, East Uttar Pradesh, Gujarat, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Goa and Madhya Maharashtra over the next 2 days. Similar conditions are likely to prevail over Karnataka, Kerala, Mahe, Konkan, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal till Friday. Delhi NCR today witnessed a brief spell of rain which brought relief to the people of the national capital after warm and humid conditions. It transformed the city's weather into a pleasant and refreshing experience. With Rushu Jaiswal, Akshit Vedyan, Akashwani News, Delhi.
8: Union Home Minister Amit Shah today spoke to the chief ministers of several states affected by heavy rainfall, flood-like situation and landslides and assured them of all possible assistance from the centre. Mr. Shah spoke to Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis, Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel and Keralam Chief Minister V.D. Satishan. Meanwhile, Nasik, Raigarh and Palghar districts continue to witness incessant rainfall while heavy showers persist across the Ghat regions of Maharashtra. IMD has issued a red alert for Palghar and Raigarh districts and Ghat areas of Nashik, Pune and Satara. More from our correspondent.
5: Heavy rainfall continued across Nasik and Igatpuri catchment areas, with several locations recording more than 300 mm of rainfall in last 24 hours. Authorities issued advisories for residents along Godavari River following water discharge from filled reservoirs. Raigarh and Ratnagiri district also received heavy rainfall, which resulted in flooding of residential areas. Palghar district has been witnessing very heavy rainfall over the past 8 days, prompting release of dam water into Surya River, leading to flooding of nearby low-lying areas.
8: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. You're with us on the news at 9. Benchmark domestic equity indices witnessed a sharp sell-off today, with both the Sensex and the Nifty plunging more than 2%. Spike in crude oil prices, weak global cues and renewed geopolitical tensions weighed heavily on the markets. We have a report.
11: Sensex tumbled 1,677 points to close at 76,504. The Nifty also dipped 517 points to settle at 23,882. In the broader market on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index fell over 1.5%, while the Small-Cap 100 Index lost more than 2.2%. Earlier markets opened on a negative note amid geopolitical concerns. Sentiment weakened further during the latter half of the session after U.S. President Donald Trump said that the memorandum of understanding signed with Iran to end the conflict was over, adding that he did not want to engage with Tehran. With Ayushi's report, Gaurav Dhamalal for Akashwani News.
8: Speaking to reporters at the North Atlantic Treaty Organization NATO summit in Ankara, U.S. President Trump said he does not want to waste his time negotiating with Iran.
12: I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're led by sick people. They're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. I'll speak to our negotiators. They want to negotiate. They're good people. Steve Witkoff, Jared Kushner. But they have to come back to me. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. We make a deal. Everyone's agreed. No nuclear weapon. They go outside, talk to the press. They say, we never even talked about it. I'll let our wonderful negotiators keep talking if they want, but I don't like these people.
8: Trump's statement comes hours after the U.S. carried out a new round of military strikes against Iran, targeting more than 80 sites. The U.S. said the strikes were in response to Tehran's attacks on commercial ships in the Strait of Hormuz. Announcing the operation, U.S. Central Command CENTCOM said the strikes were conducted using precision-guided munitions and were aimed at degrading Iran's ability to threaten international maritime commerce. The Iranian military said coastal bases and civilian facilities were struck in the provinces of Hormozgan and Mahshahr. According to the Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, strikes also hit Bandar Mashahar in southwest Iran. IRGC said it had responded to the strikes by targeting U.S. assets in neighboring countries as sirens went off in Bahrain and Kuwait. India is holding on to its crown as the world's fastest-growing major economy, with the International Monetary Fund IMF projecting it to grow at 7% during the current calendar year. IMF's flagship biannual report, the World Economic Outlook Update, released today, projected India's gross domestic product to moderate in the next calendar year to 6.4%. In sports, the 8th Khelo India Youth Games 2026 will be hosted by Telangana. Union Youth Affairs and Sports Minister Dr. Mansukh Mandavia made the announcement today. In tennis, Ukraine's Marta Kostyuk and Czech Republic's Linda Noskova have advanced to the women's singles semi-finals in Wimbledon. 12th seed Marta Kostyuk reached her first Wimbledon semi-final with a commanding 6-3, 6-2 win over Italy's Jasmine Paolini on centre court today. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi arrives in Melbourne to take part in the third India-Australia annual summit. India and Russia reaffirm commitment to strengthen counter-terrorism cooperation at multilateral fora. DRDO conducts successful flight test of Pinaka long-range guided rocket at Chandipur in Odisha. Monsoon recovery brings relief. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan expresses confidence rainfall to gain further momentum this month. Possible assistance to flood-affected states. U.S. President Donald Trump says ceasefire with Iran is over. And in Wimbledon tennis, Marta Kostyuk of Ukraine and Czech player Linda Noskova enter women's singles semifinals. That is all.
13: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी तीसरी भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना समिट में शिरकत के लिए मेलबर्न पहुंच गए हैं। भारत और रूस ने कसीर रुखी प्लेटफॉर्म पर इनजदादे दहशतगर्दी के सिलसिले में इश्तराक को मुस्तकम करने के अपने अज्म का इरादा किया। दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में तवील दूरी के गाइड की है। मॉनसून में बेहतरी से राहत मिली है। ज़राअत के वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने एतमाद जाहिर किया है कि इस महीने बारिश में मजीद बेहतरी आएगी, जिससे खरीफ की बुआई में भी तेजी आएगी। मरकज ने सैलाब से मुतासिरा रियासतों को हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्तियुक और चेक जमहूरिया की लिंडा नोस्कोवा ख्वातीन सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी तीन मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले के तहत आज शाम ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंच गए हैं। मकानात, बेघर अफराद और शहरों की ऑस्ट्रेलिया की वजीर क्लेयर ओनील ने उनका वहां पहुंचने पर पुरजोश इस्तकबाल किया। वजीर आजम ने कहा कि उनके इस दौरे से भारत ऑस्ट्रेलिया जामे कलीदी शराकतदारी को मजीद तकवीत मिलेगी। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि वो ऑस्ट्रेलिया के अपने हम मनसब एंथनी एल्बनीज के साथ बातचीत के मुंतजिर हैं। वजीर आजम ने कहा कि उन्हें वहां आबाद भारतीय बिरादरी से बातचीत का भी मौका मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया शराकतदारी की अहम बुनियाद है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
14: आज मेलबर्न की पूरी फजा जोशो खरोश से भर गई जब حل کے لیے بڑی تعداد میں جمع ہوئی. اس پروقار تقریب میں ایک شاندار ثقافتی پروگرام پیش کیا گیا جس میں موسیقی اور رقص کے ذریعے بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان بڑھتی ہوئی دوستی کو بڑی خوبصورتی سے اجاگر کیا گیا. ثقافتی پروگرام کے آغاز سے قبل وزیر اعظم نے بھارتی برادری کے افراد سے مختصر ملاقات کی اور ان کے ساتھ گفتگو بھی کی. تقریب کا آغاز ایک منفرد اور علامتی موسیقی سے ہوا. اس کے بعد میلبورن میں مقیم معروف کتھک ڈانسر سنچیتا ایبرول نے دلکش کتھک رقص پیش کیا جسے حاضرین نے خوب سراہا. تقریب کا اختتام آسٹریلیا انڈیا آرکیسٹرا کے 10 رکنی گروپ کی شاندار موسیقی سے ہوا جس نے اے آر رحمان کے معروف نغمے ماں تجھے سلام کو شاندار انداز میں پیش کیا جس سے وہاں موجود تمام لوگ جذبات سے سرشار ہو گئے. میلبورن سے سہاس رام کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے مہتاب عالم.
13: اپنے دورے کے دوران جناب مودی تیسری بھارت آسٹریلیا سالانہ سمٹ میں شرکت کریں گے. وہ بھارت آسٹریلیا کے سی ای اوز کے فورم میں بھی شرکت کریں گے جہاں وہ دونوں ملکوں کے سرکردہ کاروباریوں کے اجتماع سے خطاب کریں گے. اس سے قبل دن میں وزیر اعظم مودی نے انڈونیشیا کے صدر پربوو سوبیانتو کے ساتھ یوگیاکارتا میں یونیسکو کے عالمی ورثے کے مقام پرمبانن مندر کا دورہ کیا. دونوں رہنما نویں صدی کے مندر گئے جہاں وزیر اعظم مودی نے اصل شیو مندر میں پوجا ارچنا کی. مندر کے احاطے میں ایک مشترکہ پریس بیان میں انڈونیشیا کے صدر حیا میں بھارت کی مدد کے لیے تشکر کا اظہار کیا. اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے تجربہ قرار دیا.
2: یوگیہ کارتا کے اس بھوے مندر کمپلیکس اب جب ہم پنرنرمان کا کام کرنے جا رہے ہیں اور یہ یونیسکو کا ورلڈ ہیریٹیج ہے, دنیا کے دور دور کھیتروں میں کہیں پر بھی جائیں ہمیں کہیں نہ کہیں بھارت کی سانسکرتک وراثت کے درشن ہوتے ہیں. یہ پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا دوسرا سب سے بڑا ہماری وراثت کی پہچان ہے.
13: بھارت اور روس نے آج اقوام متحدہ برکس ای اے جی اور شانگھائی تعاون تنظیم سمیت مختلف کثیر جہتی فورمز پر دہشت گردی کی روک تھام کے لیے تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا. بھارت روس مشترکہ ورکنگ گروپ کی 14th میٹنگ نئی دلی میں منعقد ہوئی. میٹنگ کی مشترکہ صدارت وزارت خارجہ میں مغربی امور کے سیکرٹری سیبی جارج اور روس کے نائب وزیر خارجہ دیمتری لیوبنسکی نے کی. دونوں ممالک نے ہر قسم کی دہشت گردی اور اس کی تمام شکلوں خاص طور پر سرحد پار دہشت گردی کی سخت مذمت کی. انہوں نے دہشت گردوں, دہشت گرد تنظیموں, ان کے درپردہ گروپوں اور نیٹ ورکس کے خلاف ٹھوس کاروائی پر زور دیا. طرفین نے علاقائی اور عالمی دہشت گردی کی صورتحال پر اپنے خیالات کا تبادلہ کیا اور انتہا پسندی, دہشت گردی کی مالی معاونت اور دہشت گردی کے مقاصد کے لیے نئی اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے غلط استعمال جیسے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا. وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے آج کویت کے ولی عہد شیخ صباح الخالد الحمد الصباح سے ملاقات کی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے ولی عہد کو نیک تمنائیں پہنچائیں. ڈاکٹر جے شنکر نے بھارت اور کویت کے درمیان دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ولی عہد کے عزم کو سراہا. انہوں نے خلیجی خطے کے تازہ حالات و واقعات سے آگاہ کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا. دفاعی تحقیق و ترقی کے مضبوط آزمائشی رینج سے طویل فاصلے کے گائیڈڈ راکٹ پناکا کا کامیاب تجربہ کیا. وزارت دفاع نے کہا کہ راکٹ کا کامیاب تجربہ صارف کی جانب سے مقرر کردہ 60 کلومیٹر کی کم از کم رینج پر کیا گیا. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے اس کامیاب آزمائش پر ڈی آر ڈی او, بھارتی فوج اور دفاعی پیداواری صنعت کو مبارکباد دی. انہوں نے اسے گھریلو سطح پر طویل فاصلے تک مار کرنے والے گائیڈڈ راکٹوں کے ڈیزائن اور تیاری کی صلاحیت میں ایک اہم سنگ میل قرار دیا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ حالیہ دنوں میں ملک کے کئی حصوں میں اچھی بارش ہوئی ہے جس کے باعث بارش کی کمی والے اضلاع کی تعداد 262 سے کم ہو میں النینو کے ممکنہ اثرات پر منعقدہ اعلی سطحی جائزہ میٹنگ کی صدارت کرتے

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है अल नीनो के प्रभाव से निपटने के लिए कृषि और जलवायु को। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा और कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: जब आसमान से आग बरसती है और नदियां रास्ता भूल जाती हैं, जब धरती की छाती प्यास से चटकने लगती है और समंदर की लहरों का मिजाज पूरी दुनिया का भूगोल बदलने लगता है, तब जन्म लेता है एक नाम, एल नीनो। ये सिर्फ मौसम का एक चक्र नहीं है, ये इम्तहान है हमारी धरती का, हमारी फसलों का और हमारी थाली का। आज जब ग्लोबल वार्मिंग के साए में खेती का भविष्य धुंधला रहा है, तब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारे अन्नदाता किसान इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं? क्या हमारी कृषि प्रणाली में वो लचीलापन, वो क्लाइमेट रेजिलियंस है जो इस महासंकट का सामना कर सके? इन्हीं सवालों पर आधारित है आज आकाशवाणी का विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है। और हमारे साथ स्टूडियो में हैं दो बड़े विशेषज्ञ, मौसम के हर परिवर्तन पर पैनी नजर रखने वाले मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक आनंद शर्मा और देश की मिट्टी और किसानों की नब्ज पहचानने वाले जाने माने कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह जी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार,
3: धन्यवाद।
1: आनंद जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं और हमारे श्रोताओं और किसानों के लिए आसान भाषा में अगर आप समझाएं कि एल नीनो वास्तव में होता क्या है और प्रशांत महासागर में होने वाली ये हलचल भारत के मॉनसून को किस तरह प्रभावित करती है।
2: एल नीनो का बेसिकली क्या है कि जो आपका पेरू है, पेरू के जो तट है वहां पर सामान्यतः जो सी का, जो समुद्र का तापमान होता है सरफेस का, वो सामान्यतः ठंडा रहता है। बट कई बार ऐसा होता है कि जो आपके ट्रेड विंड्स होती हैं, जो कि यहाँ के जो सरफेस वाटर को पेरू के तट से दूर धकेलती हैं और उसके चलते जो नीचे से पानी आता है समुद्र का, वो इसको ठंडा बनाए रखता है सतह को, और वो नॉर्मल कंडीशंस कहलाती हैं। जब ठंडा है सी सरफेस टेम्परेचर, ला नीना कंडीशंस। बट कई बार ऐसा देखा गया है कि ये जो ट्रेड विंड्स है ये स्लैकन कर जाती है, वीक पड़ जाती है। जब ये वीक हो जाती है तो क्या होता है, जो पानी था वहां जो उसका सी सरफेस टेम्परेचर था थोड़ा ज्यादा था, वो हटा नहीं पाती और वो वहीं खट्टा रह जाता है। तो सामान्यतः जहां समुद्र का सतह का तापमान कम होना चाहिए था वो बढ़ जाता है। तो इसको कहते हैं एबनॉर्मल वार्मिंग ऑफ पैसिफिक सी ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू, यानी सामान्य से ज्यादा हो जाना सी सरफेस का टेम्परेचर का। और जब ये ऐसा होता है तो ये काफी सारे बदलाव लेके आता है कि जहां कहीं बारिश होती है पहले वहां सूखा पड़ने लगता है और जहां सूखा पड़ता है वहां बारिश होने लग जाती है, तो पूरे पैटर्न को। और दूसरी बात है ये तरह का टेली कनेक्शन है। टेली कनेक्शन का मतलब है कि किसी तरह की समुद्र में या वायुमंडल में होने वाली हलचल एक जगह पे बहुत दूर, हजार किलोमीटर दूर के मौसम को और वहां की प्रेशर को, टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करती है। तो एक तरह का ये टेली कनेक्शन है और 4 से 5 साल के बीच में आता है, पहले भी आ चुके हैं। और जब जब ये आता है तो जैसे जैसे अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में तो वाइल्ड फायर्स हो जाती हैं, हमारे यहाँ पे भी कभी कभार ये मौसम को, मतलब ये मानसून को प्रभावित कर देता है। क्योंकि ऐसे साल भी हुए हैं कि जब एल नीनो था मानसून खराब हुआ, और ऐसे साल भी हैं कि एल नीनो था और मानसून फिर भी ठीक था। और इस बार चर्चा हो रही है कि भाई ये जो है सुपर एल नीनो होने वाला है। हालांकि अभी जो है जितने ज्यादा तापमान नहीं बढ़े, 1 डिग्री के आसपास ही है तो ये ठीक है, मगर बोला जा रहा है, ऐसा प्रिडिक्शन किया जा रहा है कि शायद ये 3 डिग्री तक पार कर जाए। तो ऐसा होता तो ये सुपर एल नीनो होगा, और जब ऐसा हुआ तो शायद ये उसके नेगेटिव इम्पैक्ट मानसून पे ज्यादा होंगे। और इस सबको मौसम विभाग ने, एक बड़ी अच्छी बात है कि क्योंकि आजकल ये सारी प्रेडिक्शंस ग्लोबल स्तर पे होती हैं, WMO इसको, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट करता है, तो ये सब सिग्नल पहले से दे दिए गए थे और मौसम विभाग ने भी इसको फैक्टर इन करा। और उसी को देखते हुए उनकी जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, उन्होंने इस बार कहा कि जो हमारा मॉनसून सीजन में हमें करीब करीब 115 सेंटीमीटर जो वर्षा मिलती है, लॉन्ग टर्म नॉर्मल जिसे कहते हैं, वो उसका सिर्फ 90% हमें मिलने वाला है, यानी कि 10% की कोई कमी जो है मौसम विभाग ने इसको फैक्टर इन कर लिया। इसको देखते हुए ने देखा भी कि थोड़ा सा, हालांकि केरल में 1 तारीख को, जून को आता है मानसून, ये 4 तारीख को आया। हाँ, मुंबई और महाराष्ट्र में और जो आसपास के इलाके हैं वहां इसकी मानसून ऑनसेट की थोड़ी देरी जरूर हुई, और शायद उसने कुछ एरियाज में सोइंग को प्रभावित किया होगा।
1: हरवीर जी, जब मौसम वैज्ञानिक एलनीनो की चेतावनी देते हैं तो एक आम किसान के खेत में इसका सीधा असर किस रूप में देखने को मिलता है? और आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि एलनीनो की चेतावनी के बाद वो कौन कौन सी फसलें होती हैं जिन पर सबसे ज्यादा खतरा मंडराने लगता है?
2: असल में देखिए, जो खरीफ सीजन है वो हमारे एग्रीकल्चर का एक तो पहला सीजन होता है, जब कृषि का साल शुरुआत हम मानते हैं, खरीफ दन रबी। खरीफ का मानसून पर बहुत बड़ी निर्भरता है। हमारे देश में बहुत बड़ा क्षेत्रफल ऐसा है जो एक फसली है खेती जहाँ होती है, और वो इसलिए क्यों, जो वर्षा सिंचित जो क्षेत्र हैं वो भी खरीफ में कवर होते हैं, वो रबी में वहाँ बहुत जगह ऐसी होती है खेती नहीं होती है। और अब भी हमारा ये देखिए कि करीब 50% के आसपास ही हमारा जो हम कहते हैं कि अश्योर इरिगेशन कवरेज जो है, जहां पर निश्चित रूप से सिंचाई की सुविधाएं जहां पर हैं अस्थायी रूप से, कि बारिश हो या ना हो पानी का इंतजाम फसल के लिए हो जाएगा। ऐसे में करीब करीब 50% जो हिस्सा है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल इसमें है। और ये भी है कि जब इसके बारे में चर्चाएं इस बार शुरू हो गई, पहले से तैयारियां मीटिंग्स हो रही हैं मिनिस्ट्री में, एग्रीकल्चर में एनडीएमए की मीटिंग हो रही है और मिनिस्ट्री में भी हो रही है, तो वो चिन्हित किए गए कौन से ऐसे जिले हैं जहां डिस्ट्रेस बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि वो जो किसान इंतजार कर रहे थे कि हमें फसल बोनी है जब बारिश होगी, तो उनको इसके लिए दिक्कत हुई। और उसका नतीजा ये है कि देखिए, जून में जैसे शर्मा जी ने बताया कि मानसून थोड़ा डिले आया, और उसके बाद फिर जब वेस्ट कोस्ट की तरफ आता है तो वो बहुत ही स्लो उसका प्रेशर था, तो बेसिकली वीक जिसे हम कहते हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, और बीच में बहुत बड़ा गैप आ गया था, एक ब्रेक जिसे कहते हैं वो आ गया। अब उसमें जब ये सब हिस्से आपके जो वेस्टर्न पार्ट है हमारा और इवन कुछ सेंट्रल है, वहां पर ये जो बारिश पर आधारित जो खेती है उसका काफी बड़ा हिस्सा है, तो अब नतीजा ये हुआ कि वहां पर जो किसान समझता था कि मुझे बुआई करनी है तो वो डिले हो। अभी जो लेटेस्ट डाटा अभी 5 तारीख तक के आए हैं, उसमें खरीफ में जो एवरेज हमारा जो सोन एरिया होता है वो करीब 21% से पिछड़ा हुआ है, और इसमें जो मार पड़ी है उन फसलों पर पड़ी है जो थोड़ा सा, जिनको मार्जिनल क्रॉप बोलते हैं, कि जो एश्योर्ड इरिगेशन में फार्मर उनको नहीं बोता और ये लगता है कि बारिश होगी तो बो देंगे, जिसमें दालें हैं, तिलहन बड़े पैमाने पर है, तो ये जो नुकसान है हमें ये बड़ा है। इसकी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अलग तरीके से देखेगी, एग्रीकल्चर अलग तरीके से देखेगा, रिजर्व बैंक अलग तरीके से देखेगा। एक तो पहला तो स्टेप यही है कि एडवाइजरी जो जारी है कि भाई किस तरीके से कौन सा फसल आपको अभी उगानी चाहिए, क्या शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप पे जाना चाहिए, क्या आपको जो कम अवधि की जो फसलें हैं थोड़ा देर से आप बोएं, जून में नहीं बो पाए, जुलाई 15 तक नहीं बो पाए, लेकिन फिर भी आप इस वैरायटी का इस्तेमाल करेंगे तो आप अच्छी उपज ले सकते हैं, या फिर आप फसल चक्र बदल दीजिए, ये फसल इसमें कम बारिश में हो सकती है। तो ये इस तरह की एडवाइजरीज पहले स्तर पर किसानों तक पहुंचती है, वो जो समाचार माध्यम है या सरकारी जो माध्यम है उनके जरिए जाता है, आपके जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनके जरिए जाता है, तो वो सब एडवाइजरीज उस तरीके से, अब तो तमाम सारा प्राइवेट सेक्टर भी एक्टिव है एग्रीकल्चर में, उनके जरिए भी जाता है। तो ये तो एक तरीके से किसान को सूचना पहुंचाने का काम है कि आप अपना फैसला आप ले सकते हैं इस परिस्थिति में, आपको के लिए क्या उचित फैसला है, तो ये किसान के स्तर पर है और ये सरकार दोनों के बीच में ये एक तरीके का इंफॉर्मेशन का एक जो फ्लो है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि उस पे हमारा कोई अधिकार नहीं है, मतलब बारिश नहीं होगी कम होगी तो उसको तो नहीं कर सकते। हाँ, उसको मिटिगेट करने के लिए और कई सारे स्टेप्स जो है जो सरकार लेती है या जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज लेती है, वो फिर अगले कदम इसके बाद नेक्स्ट जो अगले स्टेज में शुरू होते हैं।
1: आनंद जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे और देश के बहुत सारे श्रोता और किसान भी समझना चाहेंगे कि क्या क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, जो दो फैक्टर पिछले 20-25 वर्षों में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं, क्या उनका भी एलनीनो की घटनाओं से सीधा संबंध है? जो डेटा है वो इस बारे में क्या कहानी कहता है?
2: ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज भी है, पर एक चीज पे हमें और ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी है वो इतनी ज्यादा है, और ये जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है ये थोड़ा एडेड प्रेशर है। मैं ये कहूंगा कि सारा नहीं, जो लोग मानते हैं सारा क्लाइमेट चेंज नहीं, 95% तो आपकी क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, और क्लाइमेट वेरिएबिलिटी इतनी है, मैंने जैसे बताया कि 2002 में कितनी जबरदस्त पूरा जून में बारिश ही नहीं मिली आपको, सो नेचुरल वेरिएबिलिटी हमारी बहुत ज्यादा है, और ऊपर से ये अब एक्स्ट्रा प्रेशर हमारे ऊपर आ गया है। और लोगों का मानना है कि भाई जिस तरह से कि मतलब एटमॉस्फेयर की वार्मिंग हो रही है, हीट वेव्स हो रही है, वैसे ओशन भी वार्म कर रहे हैं, सो नेचुरली वहां पे भी वार्मिंग होगी तो शायद और एलनीनो स्ट्रांग हो जाए, वो उनका मानना है। बट मेरा फिर भी मानना है कि हमने इससे भी वर्स्ट सिचुएशन को झेला है, तो हमारी यदि तैयारी अच्छी होगी, हमारी वार्निंग अच्छी होगी, जिसे हम कहते हैं ना फोर वॉर्न्ड इज फोर आर्म्ड, आपने वार्निंग पहले से दे दी और आपने तयारी करी है कंटीजेंसी प्लान की, आप भाविर जी बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है। हमारी यदि कंट्री 200 डिस्ट्रिक्ट जो है हमने चिन्हित कर दिए हैं जो कि एग्रीकल्चरली स्ट्रेस प्रोन है,
1: प्रभावित होंगे
2: वो पहले से चिन्हित है। ICAR के बाद निकरा प्रोजेक्ट है, न्यू इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, वो हमारे पहले से तैयार ही है। 2,500 के करीब हम लोगों के पास कहते हैं ड्राउट स्ट्रेस रिलेटेड जो है, फ्लड रिलेटेड जो है वेराइटीज हैं जो फ्लड में भी काम कर जाएंगी, ड्राउट हुआ तो ड्राउट में काम कर जाएंगी। और एल नीनो में जरूरी नहीं कि ड्राउट ही होगा, एक्सट्रीम वेदर भी हो जाता है और फ्लडिंग भी हो जाएगी, तो उसकी सब वेराइटीज तैयार हैं। आपने बड़े अच्छा बताया महावीर जी ने, यदि थोड़ा डिले हो जाएगा, इतना ज्यादा भी डिले नहीं हुआ, और डिले हो गया जहाँ तो आप 4 महीने की जगह छोटी क्रॉप लगाइए, शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप चले जाइए, और क्रॉप्स भी ऐसी हों जो कि मिलेट टाइप की होती हैं, जिनको कि मतलब कि आपको कहने के बाद पानी कम चाहिए, यदि 3 हफ्ते ड्राई स्पेल रही तो वो सर्वाइव कर जाती है। और मजे की बात यह है कि आज की डेट में क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप बना हुआ है कृषि मंत्रालय में, और मैं उसका पार्ट था, IMD को काफी सालों मैंने रिप्रेजेंट किया, तो वहां हम लोग यही डिस्कशन होता है कि भाई पिछले हफ्ते ऐसा मौसम रहा, अगले हफ्ते ऐसा होने वाला है, लॉन्ग रेंज फोरकास्ट ये है, तो अब सारे एक्सपर्ट बताएंगे फर्टिलाइजर अवेलेबल है, शॉर्ट ड्यूरेशन यदि बोना है तो क्या उसके बीज भी उपलब्ध है कि नहीं है, तो ये सब तैयारी रहती है, फर्टिलाइजर पेस्टिस सब कुछ सबकी तैयारी, पानी है रिजर्वायर में कितना है। एक समय आ गया था कि मुंबई में पीने का पानी की किल्लत होने वाली थी, मगर वो और एक डेफिसिट 20-21% पहुंच गया था मानसून का, वो शायद अब 10 के आसपास आ गया है, तो वो भी काफी कवरेज तो हुई है। तो मगर मेरा कहने मतलब है कि तैयारी सरकार की अच्छी है, आपके पास हर तरह की वैरायटी है, और साथ साथ जो मौसम पे आधारित खेती करनी है, जो हमारे क्रॉपिंग पैटर्न हो वो हमेशा ऐसे होने चाहिए कि जहाँ का एग्रो क्लाइमेट है अकॉर्डिंग नहीं है, ऐसा ना हो जैसे कि शुगर केन महाराष्ट्र लगा रहा है सेमी एरिड एरिया
1: जी,
2: पैडी लगा रहा है कौन पंजाब सेमी एरिड एरिया, ये क्रॉप ह्यूमिड एरिया की क्रॉप है क्योंकि वहां पानी फ्री मिल रहा है उनको, बिजली फ्री है तो वो इसलिए वो लगा रहे हैं और उसको प्राइस अच्छा मिलता है, मगर ऐसी जगहों पे लगाने हैं मिलेट्स एक चीज। और दूसरी बात जो मौसम विभाग समय समय पे बताता है आपको, गुड वेदर प्रैक्टिसेस एंड बैड वेदर प्रैक्टिसेस, यदि आपका पानी बरस रहा है तो भैया इस समय हार्वेस्टिंग कर लो ना, बरसात से पहले से आपके सारे तालाब वालाब साफ करके उसकी कैपेसिटी बढ़ानी है हमको
1: जी।
2: तो वो करके तैयारी रखें अपनी। अच्छा फिर उसके साथ ये भी करें, बैड वेदर है जब मतलब कि भाई एलिनो है, इस बार मॉनसून थोड़ा खराब होने का चांसेस है, तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए।
1: बिल्कुल,
2: तो ये गुड वेदर कोड बैड वेदर कोड बिल्कुल बनी पड़ी है, तो उसके लिए कृषि मंत्रालय मौसम विभाग NDA में सारे जो हैं बिल्कुल आपस में उसमें रहते हैं, और समय समय पर क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप मीटिंग्स होके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से और सबको ये जानकारी दी जा रही है इस समय क्या करना है आपको। और सबसे बड़ी उसमें बात मैं कहूँगा कि सरकारों को थोड़ा सा ये मेरे को और स्ट्रेस ये देना पड़ेगा, हमें इरीगेशन जो है ना कैनाल इरीगेशन और दूसरे इरीगेशन को और बढ़ाना है। देखिए जो स्टेट्स पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी जिनमें इरीगेशन फैसिलिटी है या फिर ग्राउंड वाटर उनको मिल जाता है, वहाँ कभी फसल नहीं खराब होती। आप देख लीजिए वहां पे यदि बारिश कम हो जाए ना बल्कि फसल और अच्छी होती है, क्योंकि धूप अच्छी मिल रही है, बीमारी नहीं होती वहां पर, फंगस नहीं आती है, और पानी जब चाहिए वो निकाल के सोई कर देते हैं। और ये भी ध्यान रख लीजिए क्रॉप को जैसे मान लीजिए 4 महीने की है तो 4 महीने पानी नहीं चाहिए
1: जी,
2: सिर्फ 4 और 5 क्रिटिकल स्टेजेस होती है, उन 5 क्रिटिकल स्टेजेस पे ही पानी चाहिए। और कई बार ऐसा भी देखा गया है वर्षा तो सामान्य है, सामान्य से ज्यादा है, और वो क्या हुआ कि महीने के शुरू में मिल गई, एंड में मिल गई, और बीच में 3 हफ्ते नहीं मिली
1: जब जरूरत थी तो नहीं मिली
2: नहीं मिली। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब मौसम विभाग आज की इसमें आपको फोरकास्ट तो दे रहा है कि भाई मानसून की वर्षा कम होगी, मगर मेरा ये मानना है ऐसा भी तो हो सकता है कि 90% के 85 भी हो गई, और 85 भी इतनी है कि आपकी जो फसलें ज्यादातर जो धान और शुगरकेन को छोड़ दीजिए, बाकी को सिर्फ 500 मिलीमीटर वर्षा चाहिए, और यदि आपके समय समय पर मिल गई ये वर्षा तो आपकी फसल निकल जाएगी। मगर उसके साथ साथ किसानों को क्या करना है, किसान क्या कर रहा है, उसके पास एक लाइफ सेविंग इरीगेशन भी नहीं है तो वो तो जुआ खेल रहा है, एटलीस्ट 1 या 2 लाइफ सेविंग इरीगेशन तो रखे, जैसे ही 3 हफ्ते का पीरियड आया नहीं मिली वर्षा तो एक लाइफ सेविंग इरीगेशन यूज कर लिया, थोड़ी देर बाद उसको जरूर वर्षा मिलेगी। कभी ऐसा नहीं होता कि आपको 5 हफ्ते वर्षा मिलेगी, नहीं ऐसा नहीं होता कभी भी। तो ये तैयारी हमारी होगी तो हम किसी भी सिचुएशन को झेल सकते हैं, आज इससे भी वर्स्ट सिचुएशन हमने झेल ली है और इसको भी हम अच्छे से झेलेंगे।
1: हरवीर जी, जलवायु अनुकूलन क्षमता यानी क्लाइमेट रेजिलियंस की बात करते हैं, और आज जो हमारा चर्चा का विषय का टॉपिक है वो भी इसी पर आधारित है। सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहेंगे ये होता क्या है, और व्यवहारिक रूप से किसान अपने खेत को जलवायु अनुकूल कैसे बना सकता है।
3: जो वेदर का जो एक पैटर्न है और क्लाइमेट, वो उसमें बड़े तेजी से बदलाव आ रहे हैं। एक तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बहुत बढ़ गए हैं, एक्सट्रीम हीट, सडनली वेरी हैवी रेनफॉल और ड्राई स्पेल, तो ये जो इंसिडेंट्स है ये सीधा क्लाइमेट चेंज का इंडिकेशन है, और उसी से ये होता है जब अनयूजुअल इस तरह की घटनाएं होती हैं। अब इसमें एक तो पक्ष ये है कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो काम कर रहे हैं कि हम क्लाइमेट रिजिलियंट क्रॉप, यानी कि ऐसी प्रजातियां जिसमें ऐसा लचीलापन है सर्वाइव करने के लिए कि अगर दोनों चीजों में, फ्लड में भी सर्वाइव कर जाए उस तरह की भी किस्में, और अगर उसको स्ट्रेस आता है उसमें भी वो सर्वाइव कर जाए कम पानी में, कम न्यूट्रिशन में। ये इस तरह की प्रजातियां वैसे तो बहुत बड़े पैमाने पर ICAR और हमारे जो एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने डेवलप की है, बट इसमें अभी ये देखना पड़ेगा कि वो किसानों की पहुंच में कितना है। आप कहें कि हमने 2200 वैरायटी रिलीज कर दी, बट अगर किसान को यही नहीं पता कि इनमें से कौन सी वैरायटी ऐसी है जो आज की परिस्थिति में मेरे लिए उपयोगी है, और उससे भी आगे क्या उसका सीड उसे अवेलेबल है, वो कहाँ से अवेलेबल है, वो क्या किसी पब्लिक सिस्टम का जो सीड डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है वो नेशनल सीड कॉरपोरेशन हो या कुछ कोऑपरेटिव के संस्थान है वो हो या फिर प्राइवेट जो कंपनीज है उनके जरिए या उस तरीके से उपलब्ध है क्या, और उसका एग्जैक्टली देखिए होता क्या है कि अभी भी ये टेंडेंसी है, और इसमें क्योंकि जब आप इनकम पैरिटी की बात करते हैं क्रॉप की, अल्टीमेटली वट इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इज ऑल्सो बिजनेस, किसान के लिए वो एक व्यवसाय है अपने सर्वाइवल का, अपने वेलबींग का। शर्मा जी कह रहे हैं कि पंजाब में जो है आपको धान बहुत ज्यादा नहीं उगाना चाहिए, बासमती उगाना चाहिए, गैर बासमती में हाई वैल्यू क्रॉप है, गैर बासमती आप ईस्टर्न इंडिया के लिए छोड़ दीजिए, वहां बहुत पानी है। लेकिन अब क्या है कि अगर वो वहां पर कॉटन ग्रो करता है, कॉटन में कम पानी चाहिए, लेकिन क्या है कि पिछले 10 साल 15 साल से हम लोग देख रहे हैं कि कॉटन की क्रॉप बहुत वल्नरेबल हो गई है पेस्ट एंड डिजीज के लिए। हम नई किस्में नहीं ला पा रहे हैं जो किसान को एश्योर करे कि इस बार इसको लगाइए, पानी भी बचेगा, आपकी आमदनी भी ज्यादा होगी। तो जब तक आप उसको एक कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं देंगे फार्मर को, और उसका पहला प्रायोरिटी है मेरी आमदनी कैसे हो, जैसे मिलेट्स की बात कही है, अगर आप मिलेट ग्रो करेंगे और उसके लिए मार्केट नहीं होगा, उसके लिए प्रोक्यूरमेंट का सिस्टम नहीं होगा, हमारे जो कंज्यूम करने वाले लोग हैं बड़े पैमाने पर उसको कंज्यूम नहीं करेंगे, तो फिर वो मिलेट के लिए उसको दाम कैसे मिलेगा। ये मल्टीपल चीज, जैसे मैंने कहा दालों का प्रॉब्लम है बट फिर भी नहीं ग्रो कर पा रहे फार्मर्स, तो यहाँ पर बहुत बड़ा रोल टेक्नोलॉजी का आता है। और बहुत सारी ऐसी क्रॉप हमारी है जहां पर अभी तक हमें टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू नहीं मिल पा रहा है डिस्पाइट वर्ल्ड्स मोस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट रिसर्च सिस्टम इन एग्रीकल्चर। तो अब उसमें हमारे साइंटिस्ट की भी जिम्मेदारी बनती है, देखिए किसान साइंटिस्ट नहीं हो सकता। दूसरे हमारा जो एक्सटेंशन सिस्टम है, एक्सटेंशन का जो बड़ा रोल है वो बहुत बड़ा रोल है, एक्सटेंशन सिस्टम को लगातार रिफॉर्म करने की बात हो रही है। इस बजट में भी विस्तार की बात आई है, AI की बात हम लोग कर रहे हैं कि कैसे किसानों को बेहतर, ये सारा एक्सटेंशन वर्क है, उसको कैसे एक बेहतर जानकारी उपलब्ध हो, और ये राज्यों का विषय ज्यादा है एग्रीकल्चर, तो जो राज्य सरकारें हैं उनकी भूमिका इसमें बहुत ज्यादा हो जाती है, और वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर है या जो बाकी जो लोग हैं जो एक्सटेंशन में काम करते हैं उनको मेरे ख्याल से ज्यादा सशक्त करने की और उनका नंबर बढ़ाने की जरूरत है। तो ये तैयारियां तभी किसान समझ पाएगा। दूसरे क्या है कि जैसे हमारा रेनफेड एरिया अथॉरिटी है वो

0: वाटर शेड सिस्टम चलाता है और उसके लिए एक अच्छा खासा बजट है हमारा जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसमें वाटर शेड के लिए। तो ये उन इलाकों के लिए है जो ये ड्राउट प्रोन इलाके हैं, जैसे आपने कहा कि अगर बारिश नहीं हुई और एक सिंचाई भी उस वक्त उसको मिल गई तो क्रॉप सर्वाइव कर जाएगी। तो वहां पर जो वाटर बॉडीज हैं या पॉन्ड्स हैं या लेक्स हैं उनमें चेक डैम बना के और पानी को रोका जाता है और फिर वो इक्विटेबली जो फार्मर्स हैं वहां के, बहुत जगह तो क्या है कि फार्मर्स के अपने कलेक्टिव्स और यूनियंस बनी हुई है, ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं, वो आपस में तय कर लेते हैं प्रायोरिटी के आधार पर कब हमें इसका इस्तेमाल करना है। तो जो इस तरह के जो स्टेप्स हैं वो जिस तरह की परिस्थिति ड्राउट के टाइम पे आती है उसमें बहुत कारगर होते हैं, क्योंकि आपकी फसल को एक पानी चाहिए और आपके पास ऐसा ट्यूबवेल नहीं है, बोरवेल नहीं है कि आप इमीडिएटली सिंचाई कर सके। आप छोटे किसान हैं, हमारे 89% जो फार्मर हैं वो मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स हैं, उनका जो इन्वेस्टमेंट की जो कैपेसिटी है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में वो बहुत सीमित है, तो ऐसे में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए काम कर रहा है। हाँ, ये है कि पिछले कुछ वर्षों में कई चीजें हुई हैं, जैसे कि सोलर पंप का हुआ है, फिर हमने माइक्रो इरिगेशन पे फोकस किया है, माइनर इरिगेशन पे फोकस किया, वो सब इस तरीके के इलाकों के लिए है। और आप जो है कि कम पानी में टेक्नोलॉजी का जब इस्तेमाल करते हैं, जो ड्रिप है या स्प्रिंकलर इरिगेशन है, राजस्थान में बड़े पैमाने पर स्प्रिंकलर का इस्तेमाल होता है, फ्लड इरिगेशन नहीं होता हरियाणा पंजाब वेस्टर्न यूपी की तरह, क्योंकि उनको पता है कि पानी की एक एक बूंद की वैल्यू क्या है। तो ये जो चीजें हैं ये सारा सिस्टम आपको इस तरह की परिस्थिति से लड़ने में मदद करता है। और इसमें ये भी बात है कि जैसे मैंने कहा कि किसानों को सही जानकारी, प्रशिक्षण और जो अवेलेबिलिटी है, वो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी है, फर्टिलाइजर की जब हम बात करते हैं, या बीमारी आ जाए तो जो एग्रोकेमिकल्स हैं उनकी हम बात करते हैं, और पानी। लेकिन पानी सबसे किसी भी फसल को आगे तक ले जाने के लिए, उसको तैयारी और उसके उत्पादन के लिए, वाटर इज द फर्स्ट रिसोर्स और फॉरमोस्ट, सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स है वो पानी है।
1: आनंद जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, अगर हम आकाशवाणी की बात करें तो आकाशवाणी की लोकप्रियता इसलिए भी है क्योंकि जहां सुविधाएं नहीं है वहां लोग आकाशवाणी को सुनते हैं। मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, जो एआई के थ्रू ऐप को भी समझते हैं, मौसम वैज्ञानिक जो सूचनाएं देते हैं वो भी उन तक पहुंच रही है। जैसा कि हरवीर जी ने कहा कि 89% के आसपास छोटे किसान हैं और उसमें एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो अब भी तकनीक से दूर है, वहां तक मौसम विभाग मौसम की चेतावनी जानकारी पहुंचाने के लिए क्या कुछ नए कार्यक्रम शुरू कर रहा है या किया है, उसके बारे में थोड़े हमारे श्रोताओं को जानकारी दें।
2: बिल्कुल, इसमें हमारे मौसम विभाग ने एक ऐप बनाया है मेघदूत। उस मेघदूत में जो है मौसम की पूर्वानुमान होता है और मौसम पे आधारित कृषि सलाह होती है, क्योंकि देखिए दो तरह की सलाह होती है, एक होता है पैकेज एंड प्रैक्टिस ऑफ खरीफ क्रॉप, रवि क्रॉप, कि इतनी खाद लगाना है, इतना इरिगेशन लगाना है, वो एक नॉर्मल एडवाइजरी है। पर हम जो देते हैं एडवाइजरी वो है वेदर बेस्ड एडवाइजरी, मौसम पे आधारित, यानी कि बारिश आने वाली है तो भैया इरिगेशन पोस्टपोन कर दीजिए, आपका पानी बच जाएगा, बिजली बच गई। मान लीजिए आपकी फसल में बीमारी लगी है, आपको कहते हैं स्प्रे करना है केमिकल, बारिश आने वाली है, मैं कहूंगा नहीं अभी पोस्टपोन करिए, बारिश के बाद करना, नहीं तो आपका केमिकल बह जाएगा और आपका पैसा भी बेच जाएगा और वो जाके ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करेगा या आपके पॉन्ड को करेगा, फिश में जाएगा, आप फिश खाओगे, आपकी हेल्थ को कैंसर होगा, एनवायरमेंट को खराब करेगा। तो वो एक बड़ी अच्छी बात होगी। तो इसमें मेघदूत एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ हमारे पास वेबसाइट है, वेबसाइट पे भी सारी जानकारी रहती है। और आपने कहा फोन, फोन उससे भी मिलता है और उसमें भी आजकल ऐसा है कि आप यदि पढ़ नहीं सकते हैं तो आप सुन सकते हैं उसको, वॉइस में ला सकते हैं। और उसके और इंपॉर्टेंट बड़ी चीज है कि आप हर जैसे कि विलेज के कह लीजिए पंचायत लेवल पर कियोस्क खोल दें, जहां पे भाई एक एक्सपर्ट रहेगा, उसके पास कंप्यूटर है, वो आप कंप्यूटर पे किसान वहां चले जाएगा, वो देख के फटाफट उसको बता देगा जी मेरे यहाँ का वेदर क्या है, बता दीजिए फटा देख देख के, वो एक्सेस करके उसको सिंपल भाषा में बता देगा, कौन सी फसल एडवाइस करेगी वो भी बता देगा, कहाँ अच्छे दाम मिलेंगे वो भी बता देगा। तो ये जो एक्सटेंशन कियोस्क है ये मुझे लगता है कि जिसे कहते हैं ना, जैसे कि एक एक सेंटर जरूर रहने चाहिए इन एरिया में जहां पे किसान आके ये सब चीजों को वो कर ले एक। और उसके अलावा हमें और क्या करना है कि जो भी मौसम की जानकारी है और सलाह है वो हर गांव के अंदर एक जो वहां का सरपंच होता है उसको जरूर भेजें, जीते हुए को, और एक हारा हुआ सरपंच उसको भी भेज दे, क्योंकि जीता वो अपने बंदों को देगा, दूसरे को ना दे तो उसको भी दे दीजिए। तो इन दो के पास पहुंच गया तो सोच लिया आपके गांव के सब लोगों के तो जानकारी पहुंच गई। तो यदि ये हम करते हैं, वेबसाइट भी है, रेडियो टीवी अखबार भी है, और साथ साथ ऐप भी है, वेबसाइट भी है, फोन भी है, और ये कियोस्क भी है। और सबसे बड़ा रोल जो है मैं आज जो मानता वो है रेडियो का। एक समय ऐसा था जब हम बचपन में बड़े हो रहे थे तो रेडियो बहुत पॉपुलर था, टीवी अभी आया नहीं था, या आया भी था तो किसी के पास होता नहीं था, और फिर जब टीवी आया तो रेडियो की इंपॉर्टेंस कम हो गई। मगर मैं अब ये कह रहा हूं ये अब ये युग है जो रेडियो का युग है, कम्युनिटी रेडियो, तो छोटे छोटे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खोलने होंगे पूरे हमें हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बल्कि अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विलेज लेवल पे यूनिवर्सिटी लेवल पे अलाउ कर दिया है, तो कम्युनिटी रेडियो खोलिए। और रेडियो भी कैसे आ गए हैं आज की डेट में, जिसमें बिजली नहीं चाहिए, बैटरी नहीं चाहिए, हैंड वाइंडिंग है, आप पीछे हैंडल लगाए 60 बार घुमाइए एक घंटा चलेगा, और उसमें टोन अलर्ट भी है, यदि मौसम विभाग ने कोई वार्निंग दी है तो वो वार्निंग भी वो टू की आवाज करेगा कि भाई इसको ऑन करना है। तो इस तरह की जो आज का आ गई, तो मुझे लगता है कम्युनिटी रेडियो को पॉपुलराइज कराना है, लोगों को सरकारें फ्री बांटे रेडियो इनको, जिसमें बिजली नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, ऑल वेदर कम्युनिकेशन हो जाएगा आपका, कोई भी डिजास्टर हो उस समय भी ये रेडियो आपके काम आएंगे। तो मुझे लगता है ये सब चीजें हम करें तो हमें जो लास्ट माइल, मतलब आखिरी आदमी तक हमें पहुंचना है, वो तो एक है ही है, उसके साथ साथ है क्रूशियल माइल कनेक्टिविटी। यानी कि इस समय यदि डिले हुआ मानसून तो कहाँ हुआ, महाराष्ट्र वाले इलाके में, आसपास के इलाकों में, तो उनको पहले से सूचित करना भाई मानसून आपके यहाँ डिले है और इतने दिन का डिले होने वाला है, तो आप अभी रुक जाइए थोड़ा, एकदम स्विंग पे मत जाइए, या फिर वर्षा अभी थोड़ी सी मिली है तो कई बार क्या होता है कि मॉइस्चर आया पर इतना नहीं है कि आपको वो सर्वाइव करेगा लॉन्ग पीरियड में, आपने सोइंग तो कर दी और बाद में एक हफ्ते में उड़ गया वो मॉइस्चर, तो आपका जर्मिनेशन प्रभावित हो जाएगा। तो सोइंग रेन कब होंगी, तो वो भी मौसम विभाग बताते हैं, जो हम मौसम आधारित एडवाइजरी देते हैं, व्हेन टू सो, व्हेन टू हार्वेस्ट, व्हेन टू इरिगेट, हाउ मच टू इरिगेट, व्हेन टू स्प्रे केमिकल्स, ये सारी चीजें मौसम आधारित जो कृषि सलाह दी जाती है मौसम विभाग और कृषि मंत्रालय दोनों से मिलकर, वो बहुत पॉपुलर हो रही है। तो मुझे लगता है वो सरकार को इसमें पूरा जोर देना चाहिए और इस सर्विस को हमें हर किसान तक पहुंचाना है, कैसे भी पहुंचाना है, और यदि हम ये पहुंचाते हैं तो डेफिनेटली हम प्रिपेयर होंगे, किसान प्रिपेयर है, और जैसा आपने कहा एक उसके लिए पूरा एक इकोसिस्टम तैयार करना है, एक्सटेंशन सर्विस बेहतरीन होनी चाहिए, कहाँ से फर्टिलाइजर मिलेगा, कहाँ से केमिकल मिलेंगी, कहाँ से सीड मिलेगा, कहीं वो डुप्लीकेट तो नहीं ले जा रहा, उसको गलत बीज तो नहीं मिल रहा, कहीं वो सुनिश्चित करना होगा, और उसके प्राइस भी ऐसा करना, ये ना हो किसी वो ऐसे दुकानदार से ले परसेंट रेट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एश्योर्ड इरिगेशन, और वो चार नहीं पांच नहीं, एटलीस्ट एक या दो भी आपके पास लाइफ सेविंग इरिगेशन होंगे तो फसल आपके निकल जाएगी।
1: हरवीर जी, कार्यक्रम के अंत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कुछ व्यवहारिक सवाल पर चर्चा कर लेते हैं। एलनीनो की बात हम कर रहे हैं, अगर एलनीनो के कारण भारत के कुछ हिस्सों में मॉनसून से कम वर्षा होती है तो आपकी क्या सलाह है किसानों को कि वो सिंचाई के किन वैकल्पिक माध्यमों को अपनाएं, अगर कुछ राज्यवार आप बता सकें तो।
0: देखिए, जो आपका जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है उसमें राजस्थान को आप छोड़ दें, पंजाब है, हरियाणा है, यूपी का बड़ा हिस्सा है, सिर्फ वेस्टर्न यूपी नहीं, अब ईस्टर्न यूपी और उधर भी कैनाल इरिगेशन है, मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर इरिगेशन में काम हुआ है, और हमारा जो ईस्टर्न इंडिया है वहां पर बोरवेल्स जो है, तो अब ये देखना पड़ेगा कि वो जो आपके सिंचाई के जो संसाधन है वो दुरुस्त हो, जब भी जरूरत हो आप उसका इस्तेमाल कर सकें, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। दूसरे देखिए क्या है कि ऐसी परिस्थिति में सरकारें किसानों की मदद करती रही हैं, उसमें ये है कि क्या अगर इवन आपका जो पावर सप्लाई है उसका कंस्ट्रेन भी है तो भी आप इरिगेशन के लिए एक्स्ट्रा पावर उपलब्ध कराते हैं और उसका एलोकेशन किया जाए, पहले से प्लानिंग करके रखना चाहिए। उसी तरीके से कई जगह जहां कमजोर किसान है वो सरकार देखे किस तरीके से उसका उनको डिसीजन लेना है, लेकिन जब अगर बारिश कम होगी तो किसान की लागत बढ़ती है क्योंकि उसको सिंचाई के ऊपर अधिक खर्च करना पड़ता है, तो ऐसे में क्या उनको सिंचाई के लिए कुछ आर्थिक मदद स्पेशली उस टाइम के लिए दी जा सकती है, पहले भी दी जाती रही है, डीजल वगैरह के ऊपर सब्सिडी दी जाती रही है, और मेरा मानना है कि सरकार ने अब समझ लिया है और काफी कुछ निर्भर करेगा, जैसे शर्मा जी ने बताया कि मॉनसून का क्या होता है कि मॉनसून अगर 10% कम भी रहता है उसकी अहमियत क्या है कि उसका जो हमारा मॉनसून का पीरियड है जून टू सितंबर उस पूरी अवधि में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा है और ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा है। अगर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है तो कोई मुश्किल नहीं है, और अगर पता लगा आपको जुलाई में बहुत बारिश हो गई उसके बाद अगस्त में आपके पास बारिश नहीं है, तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी और समय के हिसाब से जो हमारा विभाग है, कृषि विभाग है या सरकारों के जो सिंचाई विभाग है और जो ये तमाम सारे इन सबको विभागों को आपस में तालमेल बैठा कर कि किसान को कहाँ जरूरत है वहाँ उसको मदद करने की जरूरत है। और किसान भी अब ऐसा नहीं है, बहुत सारे अब बहुत चीजें बदली हैं, बदलाव कृषि में भी आया है, वो समझदार हैं, पढ़े लिखे भी हैं, चीजों को समझते हैं, टेक्नोलॉजी को भी समझते हैं और फैसले भी बेहतर तरीके से ले सकते हैं, तो एक अच्छा तालमेल बैठा है तो इस मुश्किल को पार कर सकते हैं।
1: जी हाँ, मौसम बदलेगा, चुनौतियां आएंगी और एलनीनो जैसी महाशक्तियां हमारी तैयारियों को परखेंगी भी, लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत के किसान ने कभी हारना नहीं सीखा। विज्ञान की सटीक भविष्यवाणियां और कृषि के आधुनिक तौर तरीके अगर हमारे अनुभव के साथ मिल जाएं तो सूखी मिट्टी से भी सोना उपजाया जा सकता है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम मौसम के बदलावों से डरे नहीं, बल्कि अपनी रणनीति से उसे मात दें। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए हरवीर जी आपका, आनंद जी आपका बहुत बहुत आभार।
2: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: हम अपने तमाम श्रोताओं से बस यही कहना चाहते हैं कि बदलते दौर में सजग रहिए, वैज्ञानिक सलाह अपनाइए और अपनी खेती को सुरक्षित बनाइए। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे अल नीनो के प्रभाव से निपटने के लिए कृषि और जलवायु को लेकर सुरक्षात्मक उपायों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा और कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है गजलों का कार्यक्रम महफिल। कार्यक्रम महफिल में सुनवाते हैं चंद गजलें गुलाम अली के स्वर में।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी के चाई भाषा केंद्र से आप सुन रहे हैं गजलों के कार्यक्रम महफिल में गुलाम अली को, और अब सुनते हैं ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: इस विराम के बाद श्रोताओं, कार्यक्रम महफिल में एक बार फिर से आपका स्वागत है, और अब सुनवाते हैं ये गजल।

0: इसी गज़ल के साथ ही श्रोताओं, आज का कार्यक्रम महफिल अब हम यहीं समाप्त करते हैं।
1: ये तो बतला दो।
0: ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है FM के 101.7 MHz पर।

और अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। कार्यक्रम सुरों के रंग में सुनवाते हैं ये पहला सुर किशोर कुमार का। फिल्म है मंजिल, संगीतकार आर डी बर्मन।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म मनपसंद का ये गीत, आवाज़ किशोर कुमार की, बोल आनंद बख्शी की और संगीत राजेश रोशन का। आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग, और अब सुनते हैं ये संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: इस संदेश के बाद श्रोताओं, कार्यक्रम सुरों के रंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है, और अब सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी के स्वर में फिल्म मर्यादा का ये गाना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म मेला का ये गीत, आवाज़ मुकेश की। और इसी गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम सुरों के रंग अब हम यहीं समाप्त करते हैं। अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। और अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओनिल ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारतीय ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबावो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति प्राबावो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सभा अल खालिद अल सभा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रमों पर अपने विचार साझा किए। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में किसानों के हितों की रक्षा के लिए खोपरा और तोतापुरी आम की खरीद को मंजूरी दे दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा खरीदने को मंजूरी दी है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आम की खरीद भी की जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इस निर्णय से किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश की कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकती है। उन्होंने कहा कि एआई के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रुपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में आज 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। उन्होंने सरकार, उद्योग, अनुसंधान संस्थानों और किसानों के बीच बेहतर सहयोग पर बल दिया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट की महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्ता कोस्त्युक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टिन्स को और यूक्रेन की मार्ता कोस्त्युक ने जैस्मिन पावलिनी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।